मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान

0: इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति से संगीत का कार्यक्रम आराधना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम का जीवन हमें त्याग, प्रेम, सत्य और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। जब मन अशांत हो तो राम नाम का सिमरन भवसागर पार कराने का एकमात्र सहारा है। प्रभु राम की शरण में सच्चा सुख और परम शांति है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

मुरली मनोहर की बंसी जब भी मन में गूंजती है तो जीवन की हर उलझन सुलझ जाती है। कान्हा की इस प्यारी सी धुन में ही मेरी सच्ची भक्ति और शांति बसती है। श्रोताओं लीजिए सुनिए पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अपनी रेडियो सेट के रहिएगा करीब।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सुर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे, सुर कहे श्याम शरण हो तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब की बार। श्रोताओं लीजिए सुनिए किशोरी अमोनकर के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

जहाँ प्रभु की भक्ति है वहीं सच्चा सुकून है। ईश्वर की शरण में बिताया गया हर पल जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। हे प्रभु, हमें आपकी वाणी सुनने और आपके दिखाए मार्ग पर चलने की शक्ति दें। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। श्रोताओं, लीजिए सुनिए साधना सरगम के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

अपना कर्म करते चलिए, ईश्वर आपकी मनचाहे मुराद अपने वक्त पर पूरा करेंगे। श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना वक्त अब समाप्त होता है। आप बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: श्रोताओं सुबह के छिप कर 30 मिनट हो रहे हैं, लीजिए सुनिए गौरव ग्रंथ से पाठ। गौरव ग्रंथ से ऋग्वेद से पाठ सुनिएगा श्रोताओं, क्षमा कीजिएगा।
1: भारतीय धार्मिक जगत में अग्नि का विशेष तथा आदरणीय स्थान है। विवाह आदि के अनेक धार्मिक कार्य अग्नि के साक्ष्य में ही किए जाते हैं। प्राचीनतम भारतीय साहित्य ऋग्वेद में सर्वप्रथम जिस देवता की स्तुति की गई है वह अग्नि ही है। भारतीय मान्यता है कि देवी संसार और मानवीय जगत के बीच मध्यस्थता और संपर्क सूत्र का कार्य अग्नि के द्वारा ही किया जाता है। ऋग्वेद के इस अग्नि सूक्त में अग्निदेव की विविध विशेषणों से स्तुति की गई है। अग्नि मानवों का सखा व रक्षक है, वह महान दानी है और मानव के गृहस्थ जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। सूक्त में ऋषि मधुचंदा ने अग्निदेव से प्रार्थना की है कि वह पिता की भांति उसका कल्याण करता रहे।

श्रोताओं, आप गौरव ग्रंथ का कार्यक्रम में ऋग्वेद से पाठ सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

महात्मा गांधी ने कहा है, किसी भी कार्य को कल पर न टालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो भी करना है आज करें। महात्मा गांधी। श्रोताओं लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे पशु आहार में पोषक तत्वों का प्रयोग, और इस विषय पर बातचीत किया है डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे से अवधेश मिश्रा ने।
1: देखा अपन पशुपालक भैया बहनी हैं, तरह तरह के पशु पाले हैं और यह पशु से उनके लाभ भी मिलत है, जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है या और तमाम प्रकार के पशु हैं, जौने से भाई कि उन्हें दूध भी मिलत है, और जो श्रम वाले पशु हैं जैसे बैल है तो उसे भाई खेत के जुताई कई के भी लाभ लेते हैं। तो पशुओं में अगर पौष्टिक तत्व दिया जाए चारा में या ऊपर से दिया जाए तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रही हैं और भाई वो दिनों दिन पशुपालक खाती लाभदायक रहे। तो पशुओं के स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे तो एका खाती उन्हें पोषक तत्व के आवश्यकता पड़त है। तो पशुओं में पोषक तत्व के का महत्व बाट है, यही के बारे में जानकारी देव खाती आज भैया हम अपने बीच में आमंत्रित किए हैं डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे जी के। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहब कि पशुओं में पोषक तत्व के का महत्व।
2: देखें, पशुओं के लिए, पशु से चाहे उनसे दूध लेना हो, अंडा लेना हो या मांस, जो भी आप प्राप्त कर रहे हो या श्रम कार्य कर रहे हो
1: जी,
2: तो इनका उत्पादन मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये होती है कि उनका आनुवंशिक गुण कैसा है।
1: बिल्कुल
2: 50% मतलब आधा

0: जिम्मेदारी तो आनुवंशिक गुण पे जाता है, लेकिन आधी जिम्मेदारी जो है वो उनके पोषक तत्वों पर होता है कि कैसी उनकी खिलाई पिलाई की जा रही है। तो पशु से चाहे आप दूध प्राप्त करना चाह रहे हों या मांस प्राप्त करना चाह रहे हों, अंडा हो या प्रजनन, भी तरीके से आप उनका उत्पादन, उनसे उत्पादन चाह रहे हैं,
1: जी
0: तो उनकी अच्छी खिलाई पिलाई करना बहुत आवश्यक है। इसको साधारण भाषा में मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, पशुपालक भाई समझें, कि एटीएम से पैसा निकालने के लिए वो अपने खाते में उनको पैसे बराबर डालते रहना पड़ता है।
1: बिल्कुल भैया।
0: जी
1: तो भाई जब अगर खिया पिया रहा बात तो बढ़िया तरीके से दूध ले सकबा
0: जी
1: है।
0: जी
1: अगर
0: जी
1: बढ़िया तरीके से खिया पिया है तो भाई जब बैल है तो खेते में बढ़िया से खेत जोताई कर सकता है।
0: जी जी
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहब कि जौन पशु के शरीर में भाई जल का महत्व होता है, समय समय उन्हें जल पियाओ जाता है, तो भाई जल के भी अपन एक महत्वपूर्ण स्थान है पशुन खाती, तो जल का क्या महत्व बाटे?
0: देखिए, बहुत ही सही जानकारी आपने मांगी है पशुपालकों के लिए।
1: जी
0: आप ये समझें कि एक पशु के शरीर में 60 से 70% जो हिस्सा होता है वो जल का होता है। मतलब
1: बिल्कुल
0: एक पशु शरीर में 60 से 70% भाग जो है वो जल का है। तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पशुओं के लिए, ना सिर्फ उनके शरीर के लिए, बल्कि आप ये सोचें कि जैसे अगर उनसे दूध उत्पादन हो रहा है तो दूध में भी 86% भाग पानी का ही होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अंडा है या मांस है, जो कुछ भी उनसे उत्पादन हो रहा है उसमें जल का एक आवश्यक भाग होता है। उसके अलावा भी पशु का तापक्रम बनाए रखने के लिए, पशु में जो भोजन खा रहा है वो आसानी से पच जाए, पच के अवशोषित हो जाए, इसके लिए जल का बहुत जरूरी है। पशु शरीर में जो भी कुछ तो बनते हैं तो उनको उत्सर्जन के द्वारा, उनके गोबर के द्वारा या उनके मूत्र के द्वारा बाहर हो जाए, उसमें भी जल का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जैसे अभी ले लें कि एक ठंडी का मौसम है तो तापक्रम 15 डिग्री 12 डिग्री चल रहा है, ऐसे में पशु शरीर का तापक्रम 38 39 डिग्री बना रहे सेंटीग्रेड, उसमें भी जल का एक अपना अहम रोल होता
1: बिल्कुल, जैसे जल का
0: है।
1: भाई महत्वपूर्ण स्थान बाय पशुओं में, वैसे भाई और तमाम खनिज लवण और प्रोटीन के भी आवश्यकता पड़त है। तो प्रोटीन कौन मात्रा में दिया जाए, कहाँ है आवश्यक बा, एक बारे में बताऊँ थोड़ा सा।
0: देखें, प्रोटीन भी पोषक तत्वों के एक आवश्यक माना जाता है। पशु शरीर में 16 17% भाग प्रोटीन का पहुंच जाता है,
1: जी
0: और कोई भी नया टिश्यू या सेल जो उनमें कोशिका या ऊतक बननी है तो उसमें प्रोटीन का अहम भाग होता है। या पशु शरीर में हार्मोन एंजाइम का जो निर्माण होता है या उनके बाल का निर्माण होता है, इसमें भी प्रोटीन का अहम भूमिका होता है। इसके अलावा जो पशु से उत्पादन प्राप्त हो रहा है, चाहे वो दूध हो, अंडा हो या मांस हो,
1: जी
0: उसमें भी प्रोटीन एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के रूप में रह जाता है। पशु के शरीर में भ्रूण या नवजात बच्चा अगर पल रहा है मादा पशु के पेट में, तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता और हो जाती है। कभी कभी पशु शरीर में अगर टूट फूट या कहीं चोट हो जाती है, घाव वगैरह लग जाते हैं, उसके भी दुरुस्त होने में, दुरुस्तीकरण में प्रोटीन का अपना एक महत्व होता है।
1: अच्छा, खनिज लवण का जरूरत पड़ा था पशुओं
0: देखें,
1: का।
0: खनिज लवण बहुत कम मात्रा में पशु शरीर की आवश्यकता होती है,
1: जी
0: लेकिन इनकी अनुपस्थिति में पशुओं के शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं।
1: जी
0: तो पशुओं में उन कोई रोग न उत्पन्न होने पाए तथा पशु के शरीर का विकास जो है, चाहे वो विकास जो है, चाहे वो हड्डी हो, दांत हो, खुर हो, सिंग हो,
1: जी
0: इसके निर्माण में खनिज तत्वों की जरूरत होती है। जो उनका पशु शरीर में जो रक्त है वो रक्त में अम्लत्व और क्षारत्व का संतुलन बनाए रखने में खनिज पदार्थों का योगदान है। साथ ही साथ पशु शरीर में जो अन्य हार्मोन या एंजाइम बनते हैं उनमें उनका अपना योगदान होता है, और अलग अलग खनिज तत्वों की अलग अलग विशेष कार्य होते हैं, इसलिए पशुओं को खनिज पदार्थों की उचित मात्रा समय समय पर देते रहना चाहिए।
1: एक बात और है कि भाई देखें विटामिन भी जरूरी होते शरीर खाती, तो विटामिन कौन रूप में पशु उनके दिया जा सकता है?
0: देखें, विटामिन तो देखिए दो तरह से, एक तो वसा घुलनशील और फिर पानी घुलनशील जो है विटामिनें होती हैं।
1: जी

0: पशुओं को जो भी पानी घुलनशील हैं वो तो उनके पेट में उनके निर्माण हो जाता है,
1: जी
0: लेकिन जो वसा घुलनशील हैं उनका निर्माण थोड़ा कम होता है, तो उनको अलग से पशु शरीर में देने की आवश्यकता पड़ती है। पशु स्वस्थ बना रहे और अच्छा उससे उत्पादन होता रहे, इसके लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, उसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन वही मात्रा अगर कम हो जाए तो भी नाना प्रकार की बीमारियां, जैसे कि पशुओं में बाझपन, आँखों से कम दिखाई देना, या बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाना, या पशु का बार बार गर्भपात हो जाना, या समय पे गर्म न होना, इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं, या कभी कभी हार्मोन्स और एंजाइम्स में भी उनके निर्माण में दिक्कत होने लगती है। इसलिए पशु शरीर को विटामिन्स जो उनकी आवश्यकता है उस अनुपात में देते रहना चाहिए।
1: मान ला कोनो पशुपालक भैया बहनी हैं जो उनकी भाई उचित मात्रा में पोषक तत्व तो अपने पशुओं को ना दे पावत हैं, तो एकर का प्रभाव पशुओं पे पड़ता है?
0: देखें, इसीलिए पशुपालक भाइयों को ध्यान देने की बात होती है। जैसे कि हम ही आप अगर कोई चीज़ आहार खाते हैं तो सिर्फ अगर पेट भरने के लिए आहार सिर्फ नमक रोटी खाएं तो इससे बात नहीं बनती है, कमजोरी आ जाती है।
1: जी
0: ऐसे ही पशुओं को भी सिर्फ भूसा या पुआल और थोड़े हरे चारे पे रखने पे पशु धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो पशु को संतुलित आहार दिया जाता रहे, जो भी उनके शरीर की 24 घंटे की आवश्यकता है, जिन भी तत्वों की 24 घंटे की जो आवश्यकता पड़ती है उनके आहार से वो उनको मिल जाए, ऐसा आहार हमें देना चाहिए और सदैव संतुलित आहार ही पशुओं को देना चाहिए।
1: चलत चलाओत हम जाने चाहब कि तत्व तो देवे में सावधानी का बरतें।
0: देखें, यही सावधानी विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि पशुओं की जो आवश्यकता है, जो भी 6 पोषक तत्व तो अभी हमने आपको बताया, ये
1: जी
0: सारे पोषक तत्व तो उचित मात्रा में पशु के आहार में उपलब्ध हों। अगर ये उपलब्ध हैं तो पशु स्वस्थ रहेगा और पशुपालक जो है लाभ प्राप्त करेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे भैया, आप आयन और इतना बढ़िया जानकारी दी है कि पशुओं में पोषक तत्व के का महत्व है, कौन मात्रा में देवे के चाहिए, कहाँ देवे के चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे जो पशुपालक भैया बहनी हैं, अगर यह मात्रा में पशुओं के पशु आहार दे हैं तो ओकर लाभ उन्हें मिली। तो भैया आप आए और बढ़िया जानकारी दी हैं, एक बताओ बदे बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे से अवधेश मिश्रा की बातचीत। बातचीत का विषय था पशुओं में पोषक तत्वों का महत्व। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुनेंगे डॉक्टर शशांक शेखर त्रिपाठी की वार्ता योगासन और हमारा स्वास्थ्य।
1: सुखी और सफल जीवन जीने के लिए उत्तम स्वास्थ्य एक बड़ी जरूरत है। उत्तम स्वास्थ्य से मतलब हमारे उन तीनों स्तरों में बैलेंस या जुड़ाव से है जिससे जीवन चलता है। ये तीनों स्तर हैं शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और भावनात्मक स्तर। इनका आपस में सुंदर जोड़ ही उत्तम स्वास्थ्य है, या यूं कह लें कि मजबूत दोष रहित शरीर, सकारात्मक मन और संतुलित भावनाएं, ये तीनों जिसके पास है वही उत्तम स्वास्थ्य का धनी है। योगासन ऐसे ही स्वास्थ्य को पाने के लिए एक पुरानी भारतीय विद्या है जो महर्षि पतंजलि ने आज से हजारों साल पहले दी थी। आज योगासन ही योग के रूप में ज़्यादा फैलता जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये तो योग के 8 अंगों में से ही एक अंग है जिसका उपयोग विशेष रूप से शरीर शुद्धि व शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। पहली बात, कुशल शिक्षक या ट्रेनर की देखरेख में अभ्यास करना जिससे गलती की गुंजाइश ना रहे। दूसरा, खाली पेट अभ्यास करना। और तीसरी बात, उचित खान पान का ध्यान रखना। जब हम योगासन करते हैं

0: तो अपने शरीर को अलग अलग स्थिति और मुद्राओं में रखते हैं। ये सारी स्थितियां ध्यान से देखेंगे तो पशु पक्षियों और प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले प्रकृति के बहुत पास रहने के कारण सीखा। ऐसा माना गया है कि जितने जीव जंतु हैं उतने आसन हैं, लेकिन सुविधा और अभ्यास के लिए हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला सामान्य अभ्यास, जिसे सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। दूसरा विशेष अभ्यास, जिसे एक निश्चित उम्र के लोग अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से करते हैं। और तीसरा भाग है रोग मुक्ति के लिए अभ्यास, जिसे योग शिक्षक की देखरेख में निश्चित समय तक एक कोर्स की तरह करते हैं। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग आसनों की एक श्रृंखला होती है, जैसे याददाश्त और एकाग्रता के लिए ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्ण चंद्रासन कर सकते हैं। कब्ज के लिए कटिचक्रासन, नौका आसन, पवन मुक्तासन बहुत उपयोगी होता है। बाल झड़ते हों तो चक्रासन, अनिद्रा हो तो सिंहासन, सर्वांगासन और शीर्षासन करने पर लाभ होता है। उच्च रक्तचाप के लिए शलभासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन लाभकारी होता है। ऐसे ही अलग अलग समस्या और रोगों के लिए योगासनों का एक पूरा कोर्स होता है, जिसमें योग के अन्य अंगों को जोड़ दिया जाए, जैसे प्राणायाम और ध्यान, तो योगासन बहुत जल्दी लाभ देता है। योगासन के बाद विश्राम बहुत जरूरी होता है, इसी विश्राम से हमें नई ऊर्जा और ताजगी मिलती है। आज की भागती दौड़ती जीवन शैली में समय की कमी के कारण लोग कम समय में अधिक लाभ लेना चाहते हैं। सूर्य नमस्कार ऐसा ही योगासन है। इसमें प्राणायाम और सात योगासनों का समूह है, जो कम समय में ही चमत्कारिक लाभ देता है। वैज्ञानिकों ने इसे मधुमेह, मोटापा, एकाग्रता, रक्त शुद्धि और सुडौल शरीर पाने के लिए सबसे अच्छा योगासन माना है। आज भारत समेत पूरी दुनिया में योगासनों पर वैज्ञानिकों और बड़ी बड़ी चिकित्सा संस्थाओं ने अपनी मुहर लगाई है। एम्स जैसे संस्थान ने इसे कैंसर और एड्स जैसे रोगों के लिए लाभकारी माना है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम योगासन करते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जमा टॉक्सिन और कार्टिसल हार्मोन, जो कि तनाव का मुख्य कारण है, वह अपने आप ही शरीर से बाहर निकल जाता है। योगासन से हमारे लिए घातक कोलेस्ट्रॉल LDL की शरीर में कमी या समाप्ति ही हो जाती है और फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल HDL की मात्रा बढ़ जाती है। योगासन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे हर समय हम नई स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करते हैं। आज पूरी दुनिया योगासनों के महत्व को समझ रही है। हम भी योगासन को अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली में अपनाकर खुद को स्वस्थ रखते हुए एक आदर्श स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर शशांक शेखर त्रिपाठी की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था योगासन और हमारा स्वास्थ्य। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रेडियो प्रसारण मन की बात दिन में 11 बजे सुनिएगा और रात 10 बजे रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम सुनिएगा। दोनों कार्यक्रम का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण लखनऊ केंद्र से किया जाएगा। और अब लीजिए सुनिए प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुनेगा सुबह 7 बजे और 7:10 पर फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। सुबह 7:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भास्कर दास का बांसुरी वादन सुनिएगा और दोपहर 12:15 रघुनाथ सेठ का। सुबह 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की होगी और सुबह 9 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम का आज आप आनंद लेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर अंजू मुखर्जी के स्वर में गई गजलों का आज आप आनंद लीजिएगा। सुबह 10:05 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं कौशल्या देवी और शैल कुमारी। दोपहर 2:30 लोकगीत कार्यक्रम में मुंशी राम बहादुर, सावित्री श्रीवास्तव और धम शंकर दीक्षित के स्वर में गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम होगा लोकगीत। हेलो अनुरोध कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 1:15 बजे किया जाएगा। प्रस्तुति मधु कुमार की है।

शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी, तंबाकू कोई पौष्टिक वस्तु नहीं है। प्रेरणा पुंज में बात होगी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 बजे चर्चा होगी, गर्मी में खाद का प्रयोग सावधानी से करें और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। लोकगीत सुनिएगा पन्नालाल यादव और साथियों के स्वर में। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चिट्ठी आई है। रात 8:30 बजे सुनिएगा आज इतवार है। आज इतवार कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभिलाष नारायण की लिखी झलकी पासपोर्ट साइज फोटो, प्रस्तुति मोहम्मद शमीम की है। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य की महिमा का बखान करते हुए लवकुश के जन्म तथा उनके पराक्रम का उल्लेख किया है। भारतीय जीवन में राम राज्य प्रजा के सुख शांति तथा नियम संयम के आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। श्री राम के राज्य में चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, सूर्य उतना ही तपता है जितने की आवश्यकता होती है तथा मेघ मांगने से जब जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। भगवान शिव जग जननी उमा को राम राज्य की महिमा बताते हुए कहते हैं, सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित हैं। श्री राम सभी भाइयों पर प्रेम की वर्षा करते हुए उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रीराम चरित मानस से। संगीत में पांच गायक कलाकार थे सुधा मल्होत्रा और संगीत यह था सतीश भाटिया ने। और अब लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं आशा फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है नरेंद्र चंचल और मोहम्मद रफ़ी ने। रचना है आनंद बख्शी की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत बद्ध किया है। तो आनंद लीजिए इस भजन का।

दरबार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब बराबर है। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी भजन, जिसे हम लेकर आए हैं गंगा की लहरें फिल्म से। और इस भजन को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त ने संगीतबद्ध किया है। तो आनंद लीजिए इस भजन का।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पहलू में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बन रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के CG सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहाँ पर लखनऊ में DRDO की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से

0: 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
1: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित ये परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को स्थापित किया गया है। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_JKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट इक्विटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में कल अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
4: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा।

0: और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करें।
1: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एवं पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 72 जिलों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा चलने और वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, फर्रुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक के बीच बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अब लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे भास्कर दास का बांसुरी वादन और राग है अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत किया है विनोद कुमार मिश्रा ने।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप भास्कर दास का बांसुरी वादन सुन रहे थे। राग था अहिर भैरव और आपके साथ तबले पर संगीत किया था विनोद कुमार मिश्रा ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज के इंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप देश गान सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

0: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडर

0: वर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की

0: प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डूब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces

0: U.S. Defense Secretary Pete Hegseth describes India as a critical anchor in Indo-Pacific region. Financial Express headlines, India helps maintain balance of power, while the Sunday Express says no China hegemony. Hegseth flags co-production of Javelin anti-tank missile with India. The Tribune informs Vinesh fails to make Asian Games cut, promises to return to the mat. Economic Times says EV sales in fast lane, but Motor Town treads the middle path. Less than half of new launches likely to be electric, as car makers unsure of transition best with multi-powertrain portfolio. Times of India cites Google fined for misdirecting searches to rivals' products. And finally, Times of India in a photo caption, Dhool Andar sweeps Rajasthan. Reports on the massive dust storm that barreled through several parts of Rajasthan, plunging several towns into darkness around 2 p.m. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a five-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग हलैंग अपने पांच रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बहरे अरब में भारतीय बहरिया को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए।
3: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी

0: आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग यिलांग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने देरीना दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राब्तों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों की ईंधन की बरामदात पर आयात होने वाले महसूलात पर नजरसानी की है। इस कदम का मकसद मगरबी एशिया के बहरान की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खातिरख्वाह घरेलू दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
2: वजारत मालियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की बरामद पर 1.5 रुपया फी लीटर और डीजल की बरामद पर 13.5 रुपये फी लीटर की ड्यूटी आयद होगी। हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदाती ड्यूटी 9.5 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत मालियात ने वाजे किया कि खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सड़क बुनियादी ढांचा सेस पर मुश्तमिल बरामदाती लेवीज, जिन्हें इस साल 27 मार्च को मुतारिफ कराया गया था, का खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की औसत बैन अल-अक़वामी कीमतों की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद जायजा लिया जाता है। ताहम हुकूमत ने वाज़े किया कि घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नजरसानीशुदा ड्यूटीज का कल से इतलाक होगा, जो अगले 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। नई दिल्ली से विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आरजी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है, तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, एमएसएमई इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को इतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबिकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के तई बेदारी पैदा करना है। यह दिन तंबाकू के इस्तेमाल के खात्मे के लिए आलमी इदारे सेहत WHO की आलमी पहल है। इस साल के तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन का उन्वान है निकोटीन और तंबाकू की लत से निमटना। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन मनाए जाने के हिस्से के तौर पर मरकजी सेहत सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जुमे के रोज नई दिल्ली में तंबाकू से पाक तालीमी इदारों टॉफी ऐप का पायलट वर्जन लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुखालिफ जाब्तों की निगरानी और निफाज को मुस्तहकम करना है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा श्रीवास्तव ने कहा कि मुल्क भर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष इदारों और दीगर सेहत देखभाल मराकज में 2000 से ज्यादा तंबाकू नोशी मुखालिफ मराकज कायम किए गए हैं। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम नस्ब किए जाने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसे जदीद मौसमियाती निजाम कोहरे और खराब मौसमी हालात के दौरान परवाजों की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर के मजीद हवाई अड्डों तक तौसी दी जाएगी, जिससे मुसाफिरों के सफरी तजर्बे को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा और सेफ्टी में इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने के सानेहे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। मरने वालों में 7 अफराद का ताल्लुक पुणे शहर से और 14 अफराद का ताल्लुक पेचरी, चिंचोड़ और उर्वली कंचन इलाकों से है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी गई है। इस मामले में बड़ी इंतजामी कार्रवाई करते हुए 22 अहलकारों को अपने फराइज के अंजामदही में मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने पर मौतल कर दिया गया है। मौतल किए गए अहलकारों में 9 पुलिस अहलकार और रियासती आबकारी महकमे के 13 अफसरान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की वजीर सकीना इट्टू ने जम्मू डिवीजन के समर जोन के तहत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 1 जून से 15 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। मोहतरमा इट्टू ने कहा कि जारी मौसम गर्मा के तनाजुर में यह फैसला लिया गया है ताकि तलबा तदरीसी अमले और कॉलेज अमले की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मेल हासिल किया गया है। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि एक मरबूत मुश्तरका तरीकेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निजाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा है कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रेयासिस ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद कर देने वाले ममालिक से इन इकदाम पर दोबारा गौर करने की अपील की है। जनाब गेब्रेयासिस का कहना है कि इस तरह के इकदाम बीमारी से निमटने की कोशिशों में रुकावट बन सकते हैं। मशरकी कांगो के बुनिया में इजहार ख्याल करते हुए जनाब गेब्रेयासिस ने कहा कि बुनिया के उनके दौरे का मकसद मुतासर बरादरियों के साथ सीधे तौर पर मसरूफ अमल होना है और सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में बीमारी से निमटने की कोशिशों को मुस्तहकम करने में मदद करना है। जमहूरिया कांगो के सेहत हुकाम ने 900 से ज्यादा मुश्तबा इबोला मामलों में 200 से ज्यादा मुश्तबा अमवात रिपोर्ट की हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा ने राजधानी कंपाला में नए इन्फेक्शन समेत मजमुई तौर पर 9 मामलों की तस्दीक की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ मकाम पर आज छींटे पड़ने के साथ झालाबारी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ मकाम पर कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी चलने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियाती एजेंसी ने अगले 2 दिन के दौरान राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की भी पेशगोई की है। केरलम में शदीद बारिश के इम्कान के तहत 6 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं शदीद बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। अलबत्ता केरलम में बाजाब्ता तौर पर मानसून की आमद का ऐलान नहीं किया गया है। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 सीजन के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच खेला जाएगा। RCB ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और 3 दिन के वक्फे के बाद फाइनल में दाखिल हो रही है। टूर्नामेंट की मजबूत तरीन उनकी बल्लेबाजी रही है जिसमें विराट कोहली की कारकर्दगी नुमाया रही है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड नई गेंद के साथ टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। दूसरी जानिब शुभमन गिल की क्यादत में गुजरात टाइटंस ने लीग मरहले में टॉप 2 में जगह हासिल की और क्वालिफायर 1 में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इन्हिसार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। खातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल्कौमी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा।

0: फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से शिकस्त देकर यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने ज़राअत और किसानों की फलाह और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुर्खी के साथ पेश किया है कि मुल्क भर में खेत बचाओ मुहिम 1 जून से चलाई जाएगी। जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के इस बयान को पहले सफ़े पर जगह दी है कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 मुल्क के हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत की मीशत मजबूत मगर एहतियात जरूरी। वजारत खजाना के इस बयान के साथ रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि वजारत खजाना ने मुख्तलिफ माशी इशारों की बुनियाद पर भारत की मीशत के करीबी मुस्तकबिल को मजबूत करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ओंगलियांग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा
2: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साथ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं को नमस्कार, मैं आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। श्रोताओं आज है 31 मई और ये वो दिन है जब पूरा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहा है। चंद लाइनें आप सभी श्रोताओं को समर्पित करती हूँ। छूना नहीं यारों चाहे कोई नशा हो, छूना नहीं यारों चाहे कोई नशा हो, मुक्ति मुश्किल है जो नशे में फंसा हो। नशाबाज जब ले रहा कश है, नशाबाज जब ले रहा कश है, पूरी मानवता को वो डस रहा है। जी हाँ श्रोताओं, नशा किसी भी तरह का अच्छा नहीं है। हर साल 31 मई को दुनिया भर में लाखों लोग एक ऐसे भयावह संकट को याद करने के लिए रुकते हैं जो सालाना 80 लाख से अधिक लोगों की जान ले रहा है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं है, ये इस बात की याद दिलाता है कि तंबाकू का सेवन आज भी दुनिया भर में मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है। तंबाकू सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, ये आसपास के लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से लोग नशा करते ही नहीं हैं, फिर भी वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक हृदय रोग, स्ट्रोक, बहुत सारी बीमारियां। और इस नशे की लत से आपका पूरा परिवार भी सफर कर रहा है। भारत की चुनौतियों को विशिष्ट रूप से जटिल बनाने वाले कारक गुटखा, खैनी और पान जैसे धुआं रहित तंबाकू उत्पादनों का व्यापक उपयोग है, जो विभिन्न आयु वर्गों और क्षेत्रों में सांस्कृतिक और सामाजिक आदतों में गहराई से समाहित है। कई उप

0: उपयोगकर्ता इन उत्पादकों को सिगरेट के समान खतरों से नहीं जोड़ते हैं। फिर भी आपको बता दें दोस्तों कि इससे मुंह के कैंसर, हृदय रोग, गंभीर निकोटीन निर्भरता का खतरा उतना ही होता है जितना कि एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति से। कुछ मामलों में तो ये उससे भी अधिक है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है तो मैंने इसे गुटखा या पान खैनी खा लिया है। अब उनसे ये पूछा जाए कि क्या इन नशों को प्रयोग से आपका टेंशन कम हो गया? पूछिए कभी जो गुटखा पान खैनी खा रहे हैं तो उनसे ये बात आप ज़रूर पूछिएगा कि जब आपने एक पैकेट खोला और मुंह में डाला, क्या वो टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गया? तो दोस्तों वो कहेंगे कि नहीं, इस नशे के उपयोग से हमारा टेंशन तो नहीं ख़त्म हुआ बल्कि उन्होंने बहुत सारी बीमारियों को दावत दे दी है। भाई बातें तो बहुत हो गई, अब रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अपनी रेडियो सेट के करीब रहिएगा। हम बस अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आज हम मना रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो भाई विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन एक गीत भी हम आपको सुनवा देते हैं। जिंदगी नशे के लिए नहीं बनी है, जिंदगी बनी है प्यार करने के लिए। जिंदगी बनी है कुछ कर गुजरने के लिए।

0: श्रोताओं, नशा करना अच्छी बात नहीं है, अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, हमारा युवा वर्ग जो है ना, इस नशे की लत में बहुत फंसता जा रहा है। आपको बताऊं, गुटखा या पान खैनी जो कुछ भी है वो खा करके बहुत फक्र महसूस करते हैं। भाई क्यों? आप युवा हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप में पूरा भविष्य लोग देख रहे हैं। तो इस नशे की लत को छोड़िए। इन सारी चीजों पर रोक लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने वर्ष 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया। दोस्तों, आपको बता दूं कि तंबाकू के सेवन की जगह सकारात्मक गतिविधियों को अपनाइए। तनाव कम करने के लिए गहरी सांस लें, व्यायाम करें, ध्यान करना सीखें और हर परिस्थिति में खुद को संयमित रखना सीखें और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें। श्रोताओं, अंत में यही कहना चाहती हूं कि किसी चीज को छोड़ना एक यात्रा है, कोई एक बार की घटना नहीं। अपनी असफलताओं से सीख लें, ना कि नशे की लत को अपनाएं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं यदि हम ठान लें। और अब चंद पंक्तियां आप सबको समर्पित करती हूं कि खुद से खुद को प्यार करें, खुद से खुद को प्यार करें।

0: श्रोताओं, चले आइएगा सुबह 8:45 पर अपने रेडियो सेट के करीब, क्योंकि ये वक्त होता है आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की थी, नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। और हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं अमृत फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है किशोर कुमार ने। आनंद बख्श की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आनंद लीजिए इस गीत।

एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे।

0: भी आठवीं मंजिल पर रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं। उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा, हुजूर

लतीफ़े के तौर पर लेते रहेंगे तो अपनी हर परिस्थिति हर मुश्किल से निकल पाएंगे। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हम लेकर आए हैं बजरंगी भाईजान फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है जुबिन नौटियाल ने। नीलेश मिश्रा की रचना है, प्रीतम का संगीत है, और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

कुछ तो बात रही होगी उसकी निगाहों में, उसने कुछ तो कहा होगा जाते जाते, जिंदगी तू बता।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: एहसास की धूप छाँव में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
3: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
2: एहसास की धूप छाँव में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।

सपने वो नहीं जो हमें सुलाते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें जगाते हैं और कुछ नया करने को प्रेरित करते हैं। APJ अब्दुल कलाम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आप हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विशेष परिचर्चा है केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं, जब लगातार तीसरी बार भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। इन 12 वर्षों में भारत का कितना विकास हुआ है, सामाजिक आर्थिक स्तर में कितना परिवर्तन आया है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और इन 12 वर्षों में उन्हें कैसे हासिल करने का प्रयास किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सुशील जी।
2: जो 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, लगातार तीसरा कार्यकाल है ये नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसको आप भारत के विकास में किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला, ये 12 वर्ष किस तरीके से भारत के इतिहास में याद रखे जाएंगे?
3: नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आपने देखा दो बहुत ही माइलस्टोन चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी जो लेकर आई 2017 में, बहुत पहले से ये पेंडिंग पड़ा था, पिछली सरकारें लाना चाहती थी लेकिन किसी वजह से नहीं ले पाई। दूसरा एक वैश्विक एक कोरोना काल आपने देखा। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की आप बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, तो इन दोनों चीजों को आपको परिपेक्ष में रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एक जीएसटी का जो पूरा एक रिफॉर्म था बिजनेस को और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे पुश देना है, कैसे उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह यूज करना है, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा था उसको लेके आना, और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पर, जैसे मैंने कहा कोविड-19 की जो एक काल था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जो विकसित देश भी हैं, यूरोप के हों चाहे यूएस हों चाहे इधर जापान को देख लें, वो भी किस तरह से स्पीका को झेला और किस तरह से वो अपने को आगे लेके चले, और भारत ने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस दौरान भी किस तरह से आपके जो लोकल इकोनॉमी थी, जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसको कैसे नेविगेट करके सक्सेसफुली ले जाने का काम किया है। 12 सालों में आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल

पे, जैसे क्वाड बना है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस का जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के पूरे पैराडाइम को देखते हुए बनाया गया, खासतौर से चाइना को कैसे कंटेन करना है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, उसको कैसे लेके जाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को कैसे उसमें यील्ड बढ़ा के कैसे एक्सपोर्ट से उसको मार्केट को, जिसमें फार्म टू फोर्क में जैसे एक लिंकेजेस की जो बात पहले से चली आ रही थी उसको कैसे चरितार्थ किया है। एमएसएमई सेक्टर हो, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर को लेके, कोल को लेके, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हुआ करती थी हमेशा, भारत कहीं ना कहीं टेंटर हुक्स पे रहता था, उसको लेके बहुत ही सुदृढ़ता से लेके चला है। अभी आपने देखा वेस्ट एशिया पे जिस तरीके का एक ऑयल क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान भी कैसे नेविगेट किया गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे तो दूर पे चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इसराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र सरकार है, वो उसने किस तरह से

0: चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इसराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र सरकार है वो उसने किस तरह से नेविगेट किया है जिससे हमारी इकोनॉमी हो, हमारी जो सिक्योरिटी को लेके जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आगे जाके जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह की बात है, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ना केवल कंप्यूटर तक सीमित रह गया है लेकिन सिक्योरिटी मिलिट्री वेयर में यूज हो रहा है। बहुत सारे युद्ध अभी जो आपने देखा ग्लोबल जो चल रहे हैं उसमें एआई का किस तरह से यूज हो रहा है, उस परिपेक्ष में किस तरह से हम अपने को ना केवल सुदृढ़ रखें, अपने को सुरक्षित रखें, बल्कि एक नेक्स्ट लीप लेके जाएं, क्योंकि एआई से जो है जॉब का एक पूरा लिंकेज है, जॉब जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन स्किलिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन है उसको कैसे आगे लेके जाना है, और ना केवल डोमेस्टिक, क्योंकि अब जो वर्क फोर्स है वो केवल एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। तो जो हमारा वर्क फोर्स निकल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन स्टेट है इंडिया का और करीब 10% के आसपास का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सारे जो मिलके जिस तरह से एआई को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जिससे ना केवल हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको संरक्षित किया जा सके, बल्कि उसको जॉब के साथ कैसे अलाइन करना है। तो जब आप सारी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो देखेंगे जो केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया है।
1: जी, हम कुछ खास सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम युवाओं के लिए 12 सालों में कितनी स्थितियां बदली हैं, रोजगार से लेकर के, आपने एआई की बात की, पढ़ाई को लेकर के, ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लगभग 500 के आसपास जो है नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए हैं जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों विश्वविद्यालय हैं, एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में वहां तक दूर दराज तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके इनके लिए काम हो रहा है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे की। किस तरीके से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया वो एक स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एक्सप्रेस वे की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है, मुंबई में दिल्ली मुंबई कनेक्टिविटी, खासतौर पर सीमा के क्षेत्रों में जिन चुनौतियों की आपने चर्चा की उसमें बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि करगिल युद्ध के बाद पहली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले गलवान हुआ था, तो इस नाते सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती। 12 सालों में आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं?
0: देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है, और वो इकोसिस्टम ना केवल आप, जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई है, वहां पे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कितनी जल्दी से मिलिट्री वेयर और हमारी आर्मी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ता से बना रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ना केवल मिलिट्री के लिए लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी आता है। तो आपने जैसे अभी आपने कई चीजें मेंशन करी है, एक्सप्रेसवेज की बात आप कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, चाहे ना केवल एक्सप्रेसवेज बल्कि जो टर्शरी रोड्स हैं जो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी बनती है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार लोन से लेके एक एक्सपर्ट जो एक इनपुट होता है उसको लेके, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे आपने देखा कि लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेसवे है वो NHAI बना रहा है, अभी कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा, तो ये जब आप पूरा देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मोदी सरकार है वो पहले से भी काफी बुलिश रही है और उसने उस चीज को चरितार्थ किया है, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि भारत ने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी नए नए आयाम गढ़े हैं। बहुत सारे आपने देखा एप्पल का प्लांट इंडिया में आया है, सैमसंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है आपके नोएडा में लगा हुआ है, इसी तरीके के अन्य क्षेत्रों में एआई को लेके भारत की जो कंपनियां अग्रणी कंपनियां हैं विदेशी कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं होगा अच्छा तब तक इन्वेस्टर जो है किसी भी उसको बाईपास कर देता है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी बुलिश रही है और काफी अच्छा काम हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम हो।
1: और अगर हम 12 सालों का जो एक तरीके से लेखा जोखा जब आदमी करने बैठता है, जब आप तरीके से देखते हैं कि क्या बड़ी चीजें हुई, तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कोरोना काल से शुरू हुई जो योजना थी वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन पूरे महीने नसीब हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों से अन्न मिल रहा है, और स्वच्छता अभियान एक मिशन की तरह से शुरू हुआ, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट उसके अंदर जो है वो बन चुके हैं, हर घर जल की अगर बात करें 15 करोड़ से ज्यादा देश भर में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो एक बहुत गेम चेंजर योजना थी वो पीएम आवास योजना भी, 4 करोड़ से ज्यादा घर उसके तहत जो है वो पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं, मुद्रा योजना के तहत जो है 50 करोड़ से ऊपर का लोन दिया जा चुका है, तो ये सारी चीजें तो है ही। लेकिन अंत में जो मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि देश के युवा को नेशनल एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी नई आई सरकार ने।

0: बदलाव करने की कोशिश की। युवाओं के लिए अगर आप देखें तो बहुत छोटे से संक्षेप में मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे कि इसमें क्या 12 साल में युवाओं के लिए इस सरकार से उम्मीद रही और क्या कितना मिला?
1: देखिए, किसी भी देश का जो पूरा डेस्टिनी होती है वो युवाओं के हाथ में होती है, और इस समय इंडिया और इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूथ वर्कफोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप को लेके, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक जो जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, ना केवल जॉब मार्केट, सारे भी डोमेन्स को डिसरप्ट कर रहा है। खासतौर से हमारे युवा जो डिग्री लेके निकल रहा है उसको कैसे जॉब के साथ जुड़ना है, ना केवल सैलरीड जॉब बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है, आपने देखा कि अपने मन की बात में स्टार्टअप को लेकर बहुत ही बुलिश रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करने का है। और युवा भी इस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ना केवल वो नौकरी की तरफ जाएं बल्कि खुद स्वयं का उद्यम करें। उसको लेके बैंक से जो लोन का पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी डेवलप किया गया, बहुत सारी स्कीम्स है एमएसएमई को लेके कि कोलैटरल लोन कैसे देना है। स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती है, क्योंकि महिलाएं, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन की है और युवा हमारे कल के भविष्य हैं। तो इन दोनों को जो है सुदृढ़ कैसे करना है, क्योंकि जब ये सुदृढ़ रहेंगे, ये जब स्ट्रांग रहेंगे, तभी हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, हमारा जो आगे का पूरी डेस्टिनी है वो भी एक सही पाथ पे चलेगी।
0: जी वीरेन जी, आपने 12 साल के सरकार के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशगान, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा शायर बशीर बद्र को आकाशवाणी लखनऊ की जानिब से खिराज अकीदत। आवाज रेखा मिश्रा की है। इसके अलावा आप सुनेंगे खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। सदाकार हैं शाजिया खान और सुरेंद्र राजेश्वरी।
1: मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इन शेरों के खालिक मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र साहब 28 मई 2026 को इस जहाने फानी से कूच कर गए। आज के इस उर्दू कार्यक्रम में हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी अदबी, इल्मी और शायरी की खिदमात को सलाम करते हैं। बशीर बद्र साहब का कलाम मोहब्बत, इंसानियत और जिंदगी के नाजुक एहसास का आईना रहा है। उनकी यादें और उनकी शायरी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।
2: सामीन, आज हम उर्दू प्रोग्राम की महफिल सुखन में बात करेंगे पद्मश्री एवार्ड याफ्ता, सत्या एकेडमी इनाम याफ्ता, बा कमाल व जमाल शख्सियत, इकाई, इमेज, आमद, आस, आसमान और आहट जैसे शेरी मजमुओं के तख्लीककार, जदीद उर्दू गज़लियात के अलमबरदार, अपने मुनफरिद लबो लहजे के अजीमुल मर्तबत शायर, उर्दू शायरी के चश्मो चराग जनाब बशीर बद्र साहब की, जिन्होंने अपनी शायरी के चराग से अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर दिया और जिनकी गजलों ने दिल के कोने कोने में जाकर उजाला कर दिया। इसी मौके पर बशीर साहब फरमाते हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, मैं खुद भी एहतियातन उस तरफ से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए, समंदर के सफर में इस तरह आवाज दे मुझको, हवाएं तेज हों और कश्तियों में शाम हो जाए। सामीन, बशीर बद्र साहब सिर्फ शायर नहीं बल्कि आशिक़ सुखन हैं। बिलाशुबा उनकी गजलों ने उर्दू शायरी को नई सांसें अता की हैं। जरा ये शेर समाज फरमाए, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बशीर बद्र साहब की गजलें जब मुशायरों में पढ़ी जाती तो लोग दीवानावार दाद देते, वो महफिल में आते तो लफ्जों की खुशबू बिखर जाती। ये अशार इसके बखूबी मिसदाक हैं। दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता,

0: दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। गम है आवारा अकेले में भटक जाता है, गम है आवारा अकेले में भटक जाता है, जिस जगह रहिए वहां मिलते मिलाते रहिए, जाने कब चांद बिखर जाए घने जंगल में, जाने कब चांद बिखर जाए घने जंगल में, अपने घर के दरो दीवार सजाते रहिए। इतना ही नहीं, बद्र साहब की लिखी हुई गजलों को फिल्मी दुनिया के बहुत से गुलकार हजरात ने अपनी आवाज देकर उसे हर दिल का गुनगुनाता हुआ नगमा भी बना दिया है। ऐसे ही एक गजल न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। सामीन, बशीर बद्र साहब की शायरी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो आम जिंदगी की छोटी छोटी बातों को बड़े सादे मगर असर अंगेज अल्फाज में कहे जाते हैं। उनके मिसरे रोजमर्रा के जुमलों की तरह दिल में उतर जाते हैं। इस पसे मंजर में वो फरमाते हैं, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र साहब का कमाल यही है कि उनकी शायरी में दिल की धड़कन सुनाई देती है। मोहब्बत हो या जुदाई, उम्मीद हो या मायूसी, हर जज्बा उनके यहाँ अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। इस पर वो कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है।
1: आदाब सामेईन, एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खत के लिए शुक्रिया। मैं आपकी मेजबान शाजिया खान और मेरे साथ इस सफर में साथ दे रहे हैं सुरेंद्र राजेश्वरी।
2: सभी सुनने वालों को राजेश्वरी का आदाब और शाजिया खान साहिबा आपको भी बहुत बहुत आदाब। लगभग एक महीने के बाद मुलाकात का मौका फराहम हुआ है सुनने वालों के साथ में
1: जी।
2: ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। मैं समझता हूँ कि तमाम हमारे जितने भी सुनने वाले हैं बहुत खुश होंगे और सेहतमंद होंगे।
1: बिल्कुल, तो बिला किसी ताखीर के मैं आज का पहला खत लूं राजेश्वरी जी।
2: जी बिल्कुल,
1: तो आज का पहला खत जो हमारे पास आया है वो बहुत दूर से आया है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर से, और उसे भेजा है शैलजा खाती साहिबा ने, जो लिखती हैं हमारे प्रोग्राम सुखन के आईने के मुतालिक, और लिखती हैं, मैं ये खत एम्स्टर्डम से लिख रही हूँ। आपके उर्दू प्रोग्राम मैं अक्सर यूट्यूब के जरिए सुनती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट सुना जिसमें शाजिया खान की प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर से खास बातचीत सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिससे उर्दू को लेकर मेरी जानकारी में भी काफी इजाफा हुआ। आकाशवाणी लखनऊ की इस पहल को मैं दिल से सराहती हूँ।
2: शैलजा खाती साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, शुक्रिया भी अदा करते हैं आपकी समातों का। जिस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया है, प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर साहब मौजूद थे स्टूडियो में, सुखन के आईने में जो प्रोग्राम आपने सुना। प्रोफेसर नैयर साहब हिंदुस्तान के बहुत नामवर हस्ती हैं, सुखनवर हैं और बेहतरीन अदीब हैं और बड़ा मकबूल नाम है हिंदुस्तान में।
1: शायर भी हैं,
2: शायर भी बहुत बेहतर हैं। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने उस प्रोग्राम को सुना, उस पॉडकास्ट को हमने सराहा है। कोशिश कीजिएगा कि और भी प्रोग्राम हमारे जो पॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट जब आप तक पहुँच रहे, इतनी दूर से आपने ईमेल किया है, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा जी।
1: हमारा अगला खत हमें मौसूल हुआ है कानपुर से गुलेजर अदीबा का, जो लिखती हैं हमारे प्रोग्राम अफसाना दुनिया के नक्शे में आदमी के मुतालिक। ये लिखती हैं बहुत उम्दा, यूं तो पूरा प्रोग्राम ही समात के लुत्फ को दुबाला कर रहा था, लेकिन जनाब शाहिद अख्तर साहब का अफसाना दुनिया के नक्शे में आदमी सुनकर वाकईतन आंखों में आंसू भर आए। अफसाने के तमाम तर अजजाए तरकीबी अफसाना के आला होने का सबूत पेश कर रहे थे। अहम बात यह है कि अफसाना सिर्फ एक अफसाना नहीं बल्कि माशरे के हर तबके के लिए नसीहत आमेज भी था। इसके अलावा इस अफसाने के मुतालिक मोहतरम जनाब उमैर साहब की तमहीदी गुफ्तगु भी पुरअसर रही। आप दोनों मेरी जानिब से मुबारकबाद कबूल फरमाएं। मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए प्रोग्राम के पेशकार जनाब आसिफ इकबाल साहब को भी कलबी मुबारकबाद पेश करती हूँ।
2: गुलेजर अदीबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। और शाजिया जी, ये अफसाना का जब मसला होता है आप ये देखें कि कहने ही क्या। गुलेजर अदीबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अफसाना जो कि दुनिया के नक्शे में आदमी के मौजू पर था, उस उनवान से आपने ये अफसाने को सुना, बहुत शुक्रिया। आप कीमती वक्त देती हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमारे

0: ये प्रोग्राम की खूबसूरती में वो बात नहीं होती
1: जी,
0: कितना
1: चांद न लग पाते,
0: कितना तफसील से सारे प्रोग्राम को सुनना, पहले खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम, महफिल शायरी, अफसाना इन्होंने सुना, दुनिया के नक्शे में आदमी। भाई हाफिज मसूद साहब कैसे शुक्रिया अदा करें कि इतना कीमती वक्त आप आकाशवाणी के इस उर्दू प्रोग्राम को देते हैं, और जो हमारी कोशिश है आप तक पहुंचने की, तो ये अंदाजा होता है आपके खतों को पढ़ करके देख करके कि कितना मुश्किल होता है किसी के लिए जरा से भी वक्त निकालना, और आपने वो भी बल्कि 9:30 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, ऑफिस के जाने का भी वक्त होता है, कहीं बाहर काम जाने का भी वक्त होता है, लेकिन बावजूद इसके कि आप न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए या घर में होते हैं तो रेडियो सेट के जरिए हमारे सारे प्रोग्राम को आप सुनते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हम कैसे शुक्रिया अदा करें आपका, लेकिन फिर भी रिवायतन ये कहना तो गई कि आपकी समातों का बेहद शुक्रिया हाफिज मसूद साहब।
1: ये रहने वाली हैं सिदरा, जो बैंगलोर से लिख रही हैं, और ये लिखती हैं, मुझे आपके सारे उर्दू प्रोग्राम बेहद पसंद हैं, जो बेहद मालूमाती और नए तर्ज बयान पर मुश्तमिल होते हैं।
0: शाजिया जी, आपने जिस मोहब्बत से, जितने प्यार से इस खत को पढ़ा है, हम कैसे शुक्रिया अदा करें आपका।
1: तो इसी के साथ आज का हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम खत के लिए शुक्रिया यही इख्तिताम पजीर होता है,
0: लेकिन इससे कबल की रुख्सत हो शाजिया खान साहब, पहले एड्रेस भी जरूर बता दें।
1: बिल्कुल, आप हमें ईमेल के जरिए अपने खत भेज सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है kklsurdu@gmail.com। साथ ही अब हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए पेश खिदमत है, और वो है 7991778157।
0: इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं राजेश्वरी,
1: मैं शाजिया खान
0: आपसे इजाजत लेते हैं।
1: आदाब।
2: उर्दू कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान, पेशकश आसिफ इकबाल की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से पेश किया जा रहा था।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे अंजू मुखर्जी के स्वर में गाए गजलों को। तो आइए सुनते हैं अंजू मुखर्जी के स्वर में गाई ये गजल।

अंजू मुखर्जी के स्वर में गए इसी गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
0: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। श्री लाइन व्यापारिक मंच को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंट तथा अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये

0: प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होगा और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। वे कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद सी सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए आदर और सम्मान के साथ याद करता है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 10:05 हो रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए लोकगीतों से सजा कार्यक्रम लोकमाद्री। लोकमाद्री कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं कौशल्या देवी और साथी शैल कुमारी। इनके स्वरों में गाए लोकगीतों को हम आपको सुनवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कौशल्या देवी और साथियों के स्वर में गाया ये देवी गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीतों से सजा कार्यक्रम लोक माद्री, और अब हम आपको सुनवाते हैं शैल कुमारी के स्वर में गाया ये गंगा गीत।

0: शैल कुमारी के स्वर में गाए इस झूमर गीत के साथ लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। चलिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज करते हैं कुछ नए अंदाज में। तुम्हें तो याद है हमारी मुलाकात का वो पहला लम्हा, पर मुझे तो याद है जब तुम नहीं आए थे हमारे जीवन में। तुम ना होकर भी मेरे जीवन के हर पल में शामिल थे। तुम शामिल थे मेरे लिखे हुए अल्फाजों में, मेरे गीतों में, मेरी हंसी में, मेरी खुशी में। तुम तब भी शामिल थे मेरे हर उस लम्हे में जब तुम नहीं आए थे मेरे जीवन में। श्रोताओं, मैं हूं आपके रेडियो हमराह नीलम श्रीवास्तव। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे हम लेकर आए हैं देव फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है करीना कपूर ने। निदा फाजली की खूबसूरत सी रचना है और आदेश श्रीवास्तव ने संगीत दिया है।
1: सुनो तुम,
0: ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।
1: एक रास्ता है, मैं तुमसे गुजर कर ही तुम तक पहुंचने की रफ्तार हूं। मेरा आगाज तुम, मेरा अंजाम तुम। तुम्हें देखकर मैं तुम्हें सोचता हूं, तुम्हें पाके ही मैं तुम्हें खोजता हूं। तुम अपने बदन के समंदर में बरसों से पोशीदा एक ख्वाब हो।

हाँ, मेरे जीवन के हर लम्हे में तुम शामिल थे। तुम बने हो मेरे लिए, मैं बनी हूँ तुम्हारे लिए। जाने क्यों हर पल ये एहसास होता था कि तुम हो तो हम हैं और हम हैं तो सब हैं। ये प्यार है, ये संसार है, सब कुछ तुमसे ही तो है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम लेकर आए हैं देशवासी फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश ने। आनंद बख्शी जी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, गीतों का ये सफर तय कर रहे हैं आप अपनी रेडियो हमराह नीलम श्रीवास्तव के साथ। तुम कब जान से प्यारे हो गए पता ही नहीं चला, कब तुम समा गए इन सांसों में, मेरी रूह में, मेरे जीवन में। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हम लेकर आए हैं देशद्रोही फिल्म से, और इस गीत को अपने स्वर से सजाया है जुबिन नौटियाल और श्वेता पंडित ने, और रचना है, रचना हम आपको बताते हैं, कमाल की रचना है और निखिल ने संगीत दिया है, और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

जब दो लोग मिलते हैं और जान से प्यारे हो जाते हैं और उनकी निगाहें एक दूसरे की भाषा पढ़ने लगती हैं, कब निगाहें उठती हैं तो उसने क्या कहा होगा, उसकी निगाहें झुकी होंगी तो उसने क्या कहा होगा। श्रोताओं लीजिए सुनिए धनवान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में, और इस गीत की रचना की है समीर ने, आनंद मिलिंद का संगीत है और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर।

जी हाँ श्रोताओं, उनकी निगाहों में इस कदर डूब जाती हैं ये निगाहें कि बिल्कुल भूल जाती हैं कि क्या हो रहा है। श्रोताओं, इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये सफ़र आपने तय किया अपने रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को, नीलम श्रीवास्तव के साथ, क्षमा कीजिएगा श्रोताओं। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

दिन के 11 बजने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और अब बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI।

0: ओम्बुड्समैन।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
6: नमस्कार सर। नमस्कार।
7: नमस्कार सर।
5: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
6: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
5: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
7: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने मैंने

0: अपनी टीम को इतना जिताया, तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियाँ करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज़ किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज़ किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज़ किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को यही सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा, देखिए मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों

0: ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी, अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा

मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास।

जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को, एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में

धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूँगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाए। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए

नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।

0: इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रियमानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दरवीरसिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन् शंकरः, देवमीणा, कुलदीपकुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वानपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शतमीटरमितधावनस्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शतमीटरमितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शतमीटरमिते धावनक्रमे राष्ट्रियमानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौ स्तः गुरिन्दरवीरसिंहः, अनिमेषकुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दरवीरः भवतेऽपि नमस्कारः। सत्श्री अकाल च। अनिमेष गुरिन्दरवीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं सङ्गीते तु युगलप्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगलप्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमम् एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत्समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहम् इच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि

0: सड़क पर चलते समय सदैव यातायात के नियमों का पालन करें। दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य धारण करें। चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट बांधकर यात्रा करें।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों

हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी से की गई विशेष भेंटवार्ता। तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियां, उपचार, भ्रांतियां और समाधान। आपसे भेंट करेंगे अभिनव प्रज्ञ पांडे। समय होगा दोपहर बाद 3:30 और इसका पुनः प्रसारण रात्रि 9:30 पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद 12:15 पर आपको सुनवाएंगे पंडित रघुनाथ सेठ का बांसुरी वादन। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 12:30 से। साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध का प्रसारण समय 1:15। दो बजकर 30 मिनट पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम लोकगीत। बाल गोपाल कार्यक्रम में शाम 5 बजे ग्रामीण बच्चे सुनेंगे विजय बहादुर सिंह की कहानी अमवाड़ी।

युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं रोज की तरह 5:15 से। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे पन्ना लाल यादव और साथियों के गाए लोकगीत। शाम 7:31 पर आपको सुनवाएंगे दिनेश भारती की लिखी नाटिका पन्हारू की अम्मा। 7:45 पर सुनिएगा मुक्ति शर्मा के गाए भजन और गीत। पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी आई है रात 8:00, प्रस्तुति होगी नेहा गुप्ता की।

रात 8:15 पर आप सुन सकेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आज इतवार है, इस कार्यक्रम में रात 8:30 पर आपको सुनवाएंगे अभिलाष नारायण की लिखी झलकी पासपोर्ट साइज फोटो। प्रस्तुति होगी मोहम्मद शमीम की। और रात 10 बजे आप सुन सकते हैं रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रहे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बांसुरी पर बजाया राग भीम पलासी, वादक कलाकार पंडित रघुनाथ सेठ।

बांसुरी पर बजाया राग भीम पलासी। अभी आप सुन रहे थे, वादक कलाकार थे पंडित रघुनाथ सेठ। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं रानी मलिक की गीत रचना। अनु मलिक का संगीत, कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर।

अमरोही की गीत रचना, संगीत शैलेंद्र बर्वे का, फिल्म चिड़िया का टाइटल ट्रैक है ये।

बहार आई तो गुलशन में नई रौनक छा गई, बहार आई तो गुलशन में नई रौनक छा गई, हर कली की मुस्कुराहट में मोहब्बत समा गई।

गुलजार के बोल, विशाल भारद्वाज का संगीत, राहत फतेह अली खां की आवाज़, फिल्म का नाम इश्किया।

घुल गई जब फूलों की महक, हवा में घुल गई जब फूलों की महक, तो लगा दिल को जैसे जिंदगी मिल गई चहक।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडीवेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर।

रश्मि विराग की गीत रचना, जावेद मोहसिन का संगीत, जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाजें। फिल्म का नाम धड़क 2।

बहार की नरम हवाओं ने जब तेरा नाम लिया, बहार की नरम हवाओं ने जब तेरा नाम लिया, फूलों ने भी मुस्कुराकर मेरा पैगाम दिया। चांदनी रात में जब तारे सजने लगे, चांदनी रात में जब तारे सजने लगे, तेरी यादों के गुलशन मेरे दिल में खिलने लगे।

नदी की लहरों में तेरी हंसी की खनक मिली, नदी की लहरों में तेरी हंसी की खनक मिली, पर्वतों की खामोशी में तेरी धड़कन मिली। महकते फूलों ने कानों में ये राज कहा, महकते फूलों ने कानों में ये राज कहा, मोहब्बत वही है जिसमें कुदरत का अंदाज रहा।

कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे हैं समीर की गीत रचना, नदीम श्रवण का संगीत।

शाश्वत सचदेव की आवाज में आप सुन रहे हैं धुरंधर फिल्म का ये गाना। और यही है फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।

0: अम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज दैट द गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग एफर्ट्स टू प्रिजर्व प्राइसलेस हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। Informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there.

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को शदीद गर्मी के मौजूदा मौसम में बेहद एहतियात बरतने के साथ सरकारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से ज्यादा मकदार में पानी पीने और धूप से बचाव के तरीके इस्तेमाल करके घर से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मियों के साथ साथ आम का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी के लंगड़ा के साथ हर इलाके के आम का जायका

0: अनोखा और उसकी महक सौंधी होती है। उन्होंने कहा कि आम हमारी ज़रई मईशत के लिए भी बहुत खास है। वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे मुहिम के तहत बनाई गई हिन्दुस्तान की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें खुसूसी रोल अदा किया है।
1: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके। जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते।
0: वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया।
1: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी हो, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवंत देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गए।
0: वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें तरगीब देता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि आप सभी अपने आसपास की जा रही ऐसी कोशिशों को जरूर देखें और जो लोग मुआशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सताइश कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। फर्टिलाइजर के तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल को फरोग देने के लिए एक महीने की खेत बचाओ मुहिम कल से शुरू होगी। मरकजी वजीर बराए ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इस मुहिम को कौमी मुहिम बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुहिम का खास मकसद फर्टिलाइजर का तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल, मौसम के चैलेंजेस के मद्देनजर किसानों को वक्त पर मशवरा, पंचायत सतह पर किसानों की शराकतदारी और गांव को बराए रास्त स्कीम के फायदे पर मरकूज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और इत्तला तो तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। जनाब वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और दीगर खसूसी मादनी और एडवांस्ड अशिया का प्रोडक्शन कर रहा है। पूरी रियासत में आज उत्तर प्रदेश मुश्तरका बीएड दाखिला इम्तिहान 2026 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान में 72 इजला में कायम 1011 इम्तिहान मराकज पर कुल 4,44,958 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ये इम्तिहान दो मीटिंगों में मुनक़िद हो रहा है। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इम्तिहान के मद्देनज़र इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इम्तिहान मराकज की CCTV से निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% एडिशनल फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज नाफिस करने का फैसला किया है। अगले महीने सार्फीन को अपने बिजली बिल में 10% ज्यादा अदायगी करनी होगी। आज आलमी नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से आलमी सेहत तंजीम के जरिए शुरू की गई खसूसी आलमी पहल का हिस्सा है। इस साल का मौजू है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। और रियासत के बेशतर अजला में तेज हवाएं चलने और बारिश होने से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और आवाम को गर्मी से निजात मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक और बारिश होने की खबर है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के 56 अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन अजला में खसूसी तौर से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बरेली, हमीरपुर और महोबा शामिल। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध। प्रोग्राम पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो, अपना नाम बता दीजिए।
1: आकाशवाणी का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल। गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल। नाम है मेरा राजेंद्र, गांव है पोस्ट गुतने, तहसील कोंडा, जिला है प्रतापगढ़।
0: जी, प्रतापगढ़ से राजेंद्र जी हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। तो राजेंद्र जी की आज की फरमाइश क्या है?
1: जी मैम, आज की फरमाइश हमने फिल्म मेरे हुजूर से लिया है
0: जी।
1: और इसके बोल हैं, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर।
0: तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: नमस्कार।

0: के हाथ।
1: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
2: गुलाब प्रजापति कन्हौजा कला बाबूगंज प्रयागराज।
1: जी गुलाब जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: गुमराह मूवी का कोई एक गीत सुनवा दीजिए।
1: ये पुरानी वाली गुमराह की बात कर रहे हैं आप?
2: पुरानी मूवी।
1: हाँ हाँ हाँ, जरूर, महेंद्र कपूर साहब की आवाज में इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, तो उसका ये गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गुलाब जी लीजिए सुनिए।
2: नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? पहले अपना नाम बता दीजिए।
1: दीदी मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आपका आशीर्वाद बांटे बिहारी कृपा है। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका ग्यारह पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधाषी के माता उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी प्रयागराज के माध्यम से। अरविंद मधु दीदी से। दीदी आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज कौन सा गीत चुना है आपने?
1: आज निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है नमक हलाल।
0: जी,
1: किशोर कुमार साहब ने गीत को गाया है, पग घूंघरू बांध में रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्यारा सा गीत, झूमता हुआ मस्ती में, और अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर
0: फिल्माया गया है। तो आपको अगर किसी के नाम लेने हो तो ले लीजिए।
1: जी हमारे मित्र हैं, श्रोता मित्र
0: जी,
1: सरश्री राकेश कुमार भैया मेजर से हैं, और साथ में हमारी भतीजी है नीलम कौशल श्री जी, और सिद्धार्थ मेरे मझले भैया हैं, सर श्री केशव प्रसाद प्रजापति गांव उदयपुर। इन सभी दोस्तों के साथ में एक प्यारे मित्र हैं गजराज मोदी और जी।
0: तो आपको सुनवाते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गाना।
1: जी हृदय धन्यवाद। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गांव फुटिया मोड़ धीवर जिला प्रतापगढ़
0: जी से। जी प्रतापगढ़ से रोशनी जी ने हमें कॉल की, तो वही किस गाने के लिए आपने कॉल की ये भी बताइए।
1: मैम फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम और गाने के बोल है ओ बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब।
0: अलका याग्निक की आवाज में ये गीत है
1: जी।
0: तो चलिए रोशनी जी, आपकी पसंद का ये गाना हम आपको सुनवाते हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: रेखा यादव कुकुढ़ा एरिया से बोल रहे हैं मैम। नमस्ते।
0: नमस्ते रेखा जी, कैसी हैं आप?
1: हम अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम हेरा फेरी फिल्म का,
0: हेरा फेरी फिल्म का कौन सा गाना है?
1: दरबार में ऊपर वाले की बस वक्त की देरी है, तो हेरा फेरी है।
0: दरबार में ऊपर वाले की देरी है। सही बात है, देर ज़रूर होती है लेकिन जवाब ज़रूर मिलता है।
1: यस मैम,
0: तो चलिए
1: पर
0: आपने,
1: फोन नहीं होता है किसी को।
0: हाँ वही पेशेंस की बात है ना, कि अब सब्र हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो चलिए, लेकिन आपने जो गाना सुनना चाहा है उसमें हम बिल्कुल देरी नहीं करेंगे और जल्दी से सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो अनुरोध कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अपना नाम बता दीजिए।
1: सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: विकास बोल रहे हैं राधनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर।
0: जी विकास जी, हमारे नियमित श्रोता, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है इम्तिहान।
0: जी जी।
1: और गाने का बोल है, दो बातें हो सकती सनम तेरे इनकार में।
0: सनम तेरे इनकार की।
1: जी जी जी,
0: बहुत अच्छा गाना चुना है आज आपने विकास जी।
1: जी आकाशवाणी प्रयागराज का कार्यक्रम हम लोग सुनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको आकाशवाणी प्रयागराज से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बेहद पसंद हैं। तो
1: जी इस समय हम उदयपुर से आपसे बात कर रहे हैं।
0: अरे वाह, उदयपुर से। वाह वाह, झीलों की नगरी उदयपुर, कैसा मौसम है वहाँ का?
1: बहुत अच्छा मैडम जी मौसम है, यहाँ भी गर्मी यहाँ भी है जी। अभी ट्राई कर रहे थे कॉल भी, अब देखिए लग गई, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं विकास जी जिसकी जिनकी कॉल जो है वो देश के किसी भी कोने में रहे मिल जाती, वरना हमारे श्रोता कहते कि हमारी कॉल नहीं लग पाती।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आपको इम्तिहान फिल्म का हम सुनवाने जा रहे हैं ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो, अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: विमला देवी।
0: विमला देवी कहाँ से बात कर रही है?
1: कौशाम्बी से।
0: जी बताइए, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: अपने मूवी का अपने तो अपने होते।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग सुनना है।
1: यस मैम।
0: क्या करती है आप?
1: सिलाई।
0: अच्छा, और इसके अलावा पढ़ाई पूरी कर चुकी है अपनी?
1: बच्चे हैं,
0: हाँ,
1: दो बच्चे हैं, पढ़ाई कंप्लीट हो गई।
0: अच्छा, हाउस वाइफ हैं। अच्छा, तो पहली बार कॉल की है इस कार्यक्रम में आपने?
1: जी मैं पहली बार।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विमला जी। हमें फ़ोन करती रहिएगा अपनी पसंद के गानों को सुनने के लिए, ठीक है? आपको सुनवाते हैं अपने फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे हेलो अनुरोध कार्यक्रम, जिसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया मधु कुमार ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, दोपहर समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध।

0: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष

0: ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान

0: रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर बीर जी का क्या है?
0: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर बीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
2: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
2: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
2: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
2: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश

0: में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ संदेशों के बाद आप सुनेंगे लोकगीत का कार्यक्रम।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: लोकगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी राम बहादुर और साथियों का गाया देवी गीत।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं धर्मशंकर दीक्षित का गाया दादरा।

धर्मशंकर दीक्षित के गाए दादरा के साथ ही लोकगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर 3 बज रहे हैं। हमारी ये सभा संपन्न होती है, अगली सभा 5 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए 3 बजे से लेकर 5 बजे तक एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क के प्रसारण सुने जा सकते हैं।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे ही अब आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में ग्रामीण बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे। बाल गोपाल।
1: लड़कनों जय हिंद।
2: लल्लन भैया।
3: हाँ भैया।
2: भैया हो देखा गर्मी का जौन उतार चढ़ाव बाय ना वो भैया बहुत दिक्कत वाली ही समझ में आओ था कि कब भैया खूब गर्म हो जाता और थोड़ा बहुत जौन की ठंडी हवा भी चल जाता है तो उसे थोड़ी सी राहत भी हो जाता।
3: सही बात कहे घनश्याम भैया कि मौसम के बारे में जवन लोग अनुमान लगावत हैं वो कभी कभी बहुत असमंजस की स्थिति हो जाता है और किसान भाई के लिए बहुत दिक्कत होता है। जो अपन लड़कियां लोग
2: गदेलन बदे भैया गदेलन बदे कहीं देखा गदेला हो ना भैया हो तनी सा छांव देखना जुड़ देखना तो कूदे लगे ना।
3: अब पता चला वहीं फिर धूप हो।
2: हाँ तो देखा एक चीज और चुन्नू मुन्नू के देखा कहे कही बात बा हो कि भैया ये गर्मी में लड़का न भैया देखा जब नहाए बैठे थे स्कूल से आवत बैन तो भैया वो पानी के बड़ा बर्बादी करते हैं।
3: पानी के बर्बादी तो करबे करते हैं और उकरे अलावा भैया ना ध्यान नहीं देते हैं कि कब उनके पानी का प्रयोग करे चाहे। हाँ, तुरंत जाए के गर्म में चला जाए एकदम आए के गर्मियान है तुरंत जाए के नहा लेते हैं।
2: हाँ। दूसर की देखा चुन्नू मुन्नू से एक बात ही कहब कि चुन्नू मुन्नू आज जेकरे भैया पानी का उपलब्धता बा वो पानी का महत्व नहीं समझत बा महत्व उनसे पूछा हो जे गर्मी के समय में दूर दराज से पानी लिया हो।
3: सही बात जहाँ जलस्तर बहुत ज्यादा नीचे बा।
2: हाँ।
3: और जहाँ ज्यादातर जल के जो स्रोत हैं वो सुखाए गए हैं वहाँ बहुत दिक्कत बा पानी
2: बिल्कुल तो पानी भैया बर्बाद न करें। चुन्नू मुन्नू देखा अपने देह के अपने भैया किताब कापी का साफ सफाई बढ़िया रखे हो और चढ़ावा ओढ़ावा चढ़ा के एकदम दुरुस्त रखे। हाँ
3: अच्छा एक बात हाँ। और बताई हो घनश्याम भैया कि अपन जो चुन्नू मुन्नू हैं ना सब बहुत समझदार हैं और यहाँ तक कि अपने घरे वालन के आस पास वालन के भी लोग बतावत हैं कि देखा भैया पानी का बर्बादी मत कर।
2: बिल्कुल गदेलन के तो भैया अपने तो सजग रहे और अगर क्यों ऐसा करत हो
3: उनके बताओ तो
2: भैया उनके टोकें जरूर। देखा बड़वार जे बा भैया वो का काम बा के हो गदेलन के सांस सवेरे अपने पास बैठा के प्रकृति से जौन हमें उपहार मिलल हो
3: उकरे बारे में बता।
2: हाँ उकरे बारे में बतावे वो ओकर भैया रक्षा सुरक्षा करे के जरूरत काहे बदे बा ओके बतावे और अगर ऐसे भैया दिक्कत आई तो कौने तरह के दिक्कत आई तो चुन्नू मुन्नू अगर ये तरह के जानकारी रखिए ना हो ललन भैया तो भैया वो अपने भी सजग रही है और दू जाने के और सजग करिए भी।
3: एकदम सही बात कहो भैया कि पानी के जो महत्व बा

0: वो ओकर समझाओ अपने लड़कन के चुन्नू मुन्नू के, बहुत आवश्यक बा
1: बहुत
0: कि ओकर
1: बहुत भैया।
0: जिम्मेदारी
1: हाँ
0: समझाएं कि ये जौन प्राकृतिक स्रोत बा और ये सीमित बा, एकर सही तरीके से उपयोग हो तो आगे भी जौन हमार आवे वाली पीढ़ी बा उनके हस्तांतरित हो पाए सही ढंग से,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: चुन्नू मुन्नू एके अच्छे से समझी और आशा बा कि अपने जीवन में हमेशा के लिए एके पानी के महत्व के स्वीकार करी कि आगे भी बढ़ें।
1: एओ ललन हमार तोहार लड़कपन रहे हो जोन घरे के बड़ बुजुर्ग रहे, खिस्सा कहानी के माध्यम से अच्छी अच्छी बात बताए दें। अब बैठ के हमने सुनल जा, सुनल का भैया हमने खुदे उनके कहल जा कि दादा हो कुछ सुनावा, दादी कुछ सुनावा, नानी कुछ सुनावा। तो भैया वो देखा ना प्रकृति से संबंधित और अपन जोन जीवन जिए का आदर्श उसे संबंधित बढ़िया बढ़िया कहानी खिस्सा बना बना भैया देखा सुनावा। और वो भाई आज भी जेहन में हो।
0: सही बात है भैया। अच्छा घनश्याम भैया, आओ अपने चुन्नू मुन्नू के एक कहानी सुनावा जाए, आम बाड़ी।
1: अच्छा
0: ये
1: अच्छा
0: विजय
1: बहुत
0: बहादुर
1: बढ़िया।
0: सिंह द्वारा ये कहानी कही गई बा, इसे अपन चुन्नू मुन्नू सुनाई और इसे सीख लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: यह अमवाड़ी गांव के दो बच्चों रचना और रोहित की कहानी है। दोनों बहन भाई हैं, 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। रचना रोहित से 2 साल बड़ी है, लेकिन उसने 2 साल विलंब से रोहित के साथ पढ़ाई शुरू किया था, इसीलिए दोनों एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। अमवाड़ी गांव में कोई स्कूल नहीं है। यहाँ के बच्चे कस्बे के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते हैं। यह स्कूल गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। रचना, रोहित तथा गांव के बच्चे पैदल ही स्कूल आते जाते हैं। रचना और रोहित विद्यालय के होनहार विद्यार्थी हैं। दोनों समय से स्कूल जाते हैं। स्कूल की परीक्षाओं में अक्सर प्रथम दो स्थान इन्हीं भाई बहन के होते हैं। पढ़ाई लिखाई के अलावा भी दोनों बच्चे विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। विद्यालय प्रारंभ होने के पूर्व सामूहिक प्रार्थना और राष्ट्रगान भी यही दोनों बच्चे करवाते हैं। विद्यालय के सभी शिक्षक और अभी नए आए हेडमास्टर शर्मा जी इन बच्चों पर बहुत खुश रहते हैं। स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी बहुत ही अनुशासन प्रिय और मेहनती हैं। उनके आने से विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ी और पठन पाठन की व्यवस्था में सुधार आया, लेकिन गर्मी का मौसम शुरू होते ही छात्रों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। और तो और रोहित और रचना भी अनियमित आने लगे। एक दिन रोहित आता तो दूसरे दिन रचना। ऐसे में स्कूल की प्रार्थना और राष्ट्रगान करवाने के लिए रोज एक अन्य बच्चे को प्रार्थना स्थल पर बुलाना पड़ता। हेडमास्टर जी को बच्चों की अनुपस्थित का राज समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने कक्ष में रचना को बुलवाया। उस दिन रचना ही स्कूल आई थी, रोहित नहीं। शर्मा जी ने पूछा, बेटी आज तुम्हारा भाई रोहित स्कूल नहीं आया, क्या बात है? रचना, सर हम भाई बहन में अब एक ही स्कूल आया करेंगे, हम लोग गर्मी में ऐसा ही करते हैं। ऐसा क्यों? शर्मा जी ने पूछा। सर हमारे गांव में गर्मियों में कुएं सूख जाते हैं, हैंडपंप भी पानी नहीं देते। सरकार की तरफ से रोज ट्रैक्टर से एक टैंकर पानी आता है, उसी पानी के सहारे पूरा गांव अपनी प्यास बुझाता है। अगर हम भाई बहन दोनों स्कूल चले आएंगे तो घर में टैंकर से पानी कौन लाएगा? ओह तो ये बात है। शर्मा जी को झटका सा लगा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने फिर पूछा, बेटी तुम्हारे घर पानी लाने के लिए और कोई नहीं है? रचना, सर घर में मम्मी पापा हैं, लेकिन वे दोनों मजदूरी करने जाते हैं। पानी का जिम्मा हम बहन भाई का है। एक दिन मैं घर पर रुकती हूँ तो भैया पढ़ने आता है, और दूसरे दिन भैया रुकता है तो मैं पढ़ने आती हूँ। सर ऐसा करने से पढ़ाई का ज़्यादा नुकसान नहीं होता, हम दोनों एक दूसरे की कापी लेकर गृह कार्य पूरा कर लेते हैं। वाह बेटी बहुत अच्छा, शर्मा जी के मुँह से निकला। प्रशंसा भाव से रचना की ओर देखते हुए शर्मा जी ने पूछा, बेटी गांव के अन्य बच्चों की क्या स्थिति है, वे स्कूल आते हैं या नहीं? रचना, सर सबकी यही स्थिति है, कई बच्चे तो दोपहर की छुट्टी में घर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए नदी में ले जाना होता है। शर्मा जी थोड़ी देर के लिए फिर मौन हुए, मानो किसी सवाल का हल खोज रहे हों। फिर बोले, रचना बेटी मैं तुम्हारे गांव आना चाहता हूँ, कब आना ठीक रहेगा? रचना का चेहरा खिल उठा, बोली, सर यह तो बहुत खुशी की बात है, जब चाहें आ जाएं सर। बेटी मैं चाहता हूँ ऐसे समय आऊँ जब तुम्हारे मम्मी पापा से भी मुलाकात हो और गांव के बड़े बुजुर्गों से भी, गांव के बच्चे तो वहाँ रहेंगे ही, तब तो सर रविवार की दोपहर ही ठीक रहेगा।

ठीक है बेटी, शर्मा जी ने कहा। नियत समय पर शर्मा जी अमवाड़ी गांव पहुंच गए। उनके साथ एक सहयोगी शिक्षक भी थे। इस समय गांव के सारे बच्चे गांव के बीच स्थित पीपल के नीचे चबूतरे पर एकत्र थे। रचना, रोहित और उनके माता पिता तो थे ही, गांव के कई बुजुर्ग और महिलाएं भी थीं। इन सबको यहाँ एकत्र करने के लिए रचना, रोहित और अन्य बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी। सभा में शर्मा जी ने वहाँ उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। अमवाड़ी गांव के निवासियों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके गांव के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता ही हूँ कि आपके पूर्वजों ने जब यहाँ गांव बसाया होगा तो यहाँ खूब पानी रहा होगा, क्योंकि कोई भी बस्ती ऐसी जगह नहीं बसाई जाती जहाँ पानी न हो। अब यह बात तो आप बताएंगे कि अगर पानी पहले था तो बाद में गायब क्यों और कैसे हुआ, यह बात हम आप लोगों से ही जानना चाहते हैं। वहाँ उपस्थित जन समुदाय में किसी के मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकली। सब मौन एक दूसरे को ताकने लगे। शर्मा जी ने वहाँ उपस्थित सबसे बुजुर्ग लंबरदार काका से इस समस्या पर कुछ बोलने के लिए कहा। लंबरदार काका पहले तो कुछ सकुचाए, ऐसी सभाओं में उन्हें बोलने का अभ्यास नहीं था, लेकिन सवाल ही ऐसा था जिस पर अधिकार पूर्वक वही बोल सकते थे। लंबरदार काका ने ब्यौरेवार ढंग से पानी की समस्या पर अपना विचार रखा। शर्मा जी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, गुरु जी पहले ये जान लें कि इस गांव का नाम अमवाड़ी काहे पड़ा। 250-250 साल पहले हमार पूर्वज लोग जब यहाँ आए थे तो यहाँ चारों तरफ जंगल था। उस जंगल में प्राकृतिक रूप से जगह जगह आम के पेड़ उगे हुए थे। पूर्वजों ने खेतीबाड़ी और निवास के लिए जंगल तो साफ किया, लेकिन आम के पेड़ों को नहीं काटा। फलतः उस समय यहाँ चारों तरफ आम ही आम दिखते थे। इसी कारण इसे अमवाड़ी कहा जाने लगा। अब आते हैं गांव की समस्या पर। उधर दक्षिण में नंगी पहाड़ी दिख रही है। पहले वहाँ घना जंगल था। पहाड़ी से तब पानी का एक सोता निकला था। उससे 12 महीने खूब सारा निर्मल और मीठा जल निकलता था। सैकड़ों साल तक उसी सोते ने गांव की प्यास बुझाई। 50-60 साल पहले जब पहाड़ी के जंगल साफ हो गए तो वह सोता सूख गया। तब गांव के लोगों ने कुएं खोदे। सरकार ने 2 हैंडपंप भी लगवा दिया, लेकिन अब ये सब जवाब दे दिए। गुरुजी, हमार समझते ये है कि सारी समस्या की जड़ ये पेड़ वृक्ष का कट जाना है। जहाँ पेड़ वृक्ष रही हैं वहाँ पानी रहे, पेड़ वृक्ष कट गई हैं तो पानी भी न रहे। यह तो हुआ यहाँ पर। इतना कहकर लंबादार काका मौन हो गए। सभा में थोड़ी देर तक निस्तब्धता छाई रही। फिर शर्मा जी ने गांव वालों से पूछा। काका जी ने अपनी बात बड़े विस्तार से रख दिया। इस समस्या पर किसी को और कुछ कहना है? कई आवाज़ें एक साथ, जौन काका कहन वो बात सही, हमार सबके समर्थन। तो क्या होना चाहिए, शर्मा जी ने सवाल रखा। एक व्यक्ति बोला, सरकार से मांग की जाए कि वह पेड़ लगवावे। शर्मा जी, सरकार पेड़ लगवा देगी तो कल कहोगे कि सरकार पेड़ को पानी दे, उसकी सुरक्षा करे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार को जो करना है कर रही है, यह काम तो आपको खुद करना होगा। बोलो भाई, कितने लोग तैयार हैं इस काम के लिए, हाथ उठावें। वहाँ उपस्थित जन समुदाय में शोर हुआ। सभी बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुषों ने अपने हाथ उठा दिए। बहुत अच्छा, शर्मा जी के मुँह से निकला। आगे उन्होंने पूछा, वृक्षारोपण के लिए 15 अगस्त का दिन ठीक रहेगा? हाँ हाँ ठीक रहेगा, सब एक साथ बोले। शर्मा जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वे बोले, लो भाई, संकट टलने में अब देर नहीं। मैं बच्चों को समझा दूंगा। एक घर घर जाएंगे, आप कौन से पेड़ कितनी संख्या में लगाएंगे इनको नोट करवा दीजिए। कुछ चंदा भी दीजिएगा जिससे नर्सरी से पेड़ मंगवा लिए जाएं। और हाँ, अपने घर के दरवाजे, पिछवाड़े या जहाँ भी पेड़ लगाने हैं गड्ढा तैयार कर लीजिए। स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूल में झंडा फहराने के लिए मेरे स्कूल के सहयोगी शिक्षक और बड़े बच्चे सभी आएंगे वृक्षारोपण करने। सभा समाप्त हुई। रचना और राहुल ने इसी समय गांव के अन्य बच्चों के साथ बैठकर एक पर्यावरण सुरक्षा समिति का गठन कर लिया। समिति का अध्यक्ष रचना को बनाया गया। घर घर जाकर लगाए जाने वाले पौधों की लिस्ट और चंदा एकत्र करने का काम आज से ही शुरू हो गया। इस साल रचना और राहुल के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कुछ अलग ढंग से मनाया गया।

0: झंडारोहण के बाद बच्चों ने एक जुलूस निकाला। जुलूस के आगे आगे राष्ट्रीय ध्वज था। जुलूस के पीछे सैकड़ों बच्चे थे। सबके हाथ में आम, महुआ, पीपल, बरगद, नीम, नींबू, कटहल आदि में से कोई न कोई पौधा था। भारत माता की जय के साथ बच्चे एक नारा और लगा रहे थे, पर्यावरण सुरक्षा का पैगाम, वृक्षारोपण लक्ष्य महान, जल जंगल बचाएंगे, खुशहाली देश में लाएंगे। कस्बे का चक्कर लगाने के बाद बच्चों का यह जुलूस अमवाड़ी गांव के रास्ते चल पड़ा, जहां आज वृक्षारोपण महोत्सव मनाया जाना है।
1: हाँ, देखो भैया, कितनी अच्छा ही कहानी विजय बहादुर सिंह भैया अपने नन्हे मुन्ने बच्चन के सुनाएं आमवाड़ी, और पर्यावरण के महत्व के बारे में समझाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि कैसे पेड़ लगावाएं और पेड़ से काका हो सका था, पर्यावरण कितना ज़्यादा बेहतर होए और आवे वाले भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा हो जाए।
2: बिल्कुल चुन्नू मुन्नू, देखा पर्यावरण अपन जौन दुरुस्त रही हो, जब अपन धरती हरा भरा रही, खूब बढ़िया पेड़ पाल हो रही हैं, ऐसे स्थिति में देखा जो नया पौधा लगल हैं ओके नुकसान न हो, ओके नुकसान होए से बचाव जरूरी है। कैसे हो, देखा ललन भैया लड़का ने खेल खेल में देखे में आवत है कि दौड़त बहन
1: हाँ तोड़ देते हैं,
2: उनके एक बात का ध्यान नहीं रहत।
1: बिल्कुल, तो देखा हो घनश्याम भैया, अब नन्हे मुन्न से विदा लेके बेला बा, तो नन्ना मुन्ना साथिन के
2: बिल्कुल लड़कनो जय हिंद।
3: अभी ग्रामीण बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
8: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
7: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
8: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
9: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से युववाणी कार्यक्रम।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त सुष्मिता श्रीवास्तव, और हम दोनों स्वागत करते हैं आपका। और अंजलि, जैसा कि हम जिस भी दिन आते हैं अपने प्रोग्राम को लेके, तो हम उस दिन की विशेषता के बारे में बात करते हैं।
0: हाँ,
1: हम अपने दोस्तों को नई नई जानकारियाँ देते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो उनको दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाने पे मजबूर कर दे। और कई बार ऐसी भी जानकारियाँ होती हैं जो शायद ऐसी होती हैं जो उन्हें जीवन में तो काम आए, और कहीं ना कहीं ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में भी बातें होती हैं जो उन्हें लाइफ टाइम के लिए इंस्पायर कर दे।
0: और ऐसा भी लगता है ना सुष्मिता, कि कई चीज़ें हम ऐसी बताते हैं जो हमारे आसपास होते हुए हमें दिखती हैं, लेकिन हम जाने अनजाने ही उसे इग्नोर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो बिगर प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं।
1: बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि हम किसी डिस्कशन का पार्ट हैं और हम सुन भी रहे हैं सामने वाले को, लेकिन कभी कभी हम बड़े पैसिव लिसनर हो जाते हैं। जो बातें हमसे सामने वाला कह रहा है, शायद वो हम सुन

0: हैं लेकिन उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती या उस तरह से हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं कि वो एक्चुअली हमारे दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन करें या थोड़े हमारे जो ऑलरेडी थॉट्स बने हुए हैं किसी चीज़ को लेके उसको क्वेश्चन करें.
1: अनटिल एंड अनलेस वो हमारे साथ एक्सपीरियंस हो या हम उसको फर्स्ट हैंड उसका एक्सपीरियंस करें.
0: बिल्कुल.
1: तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हम स्पेशली यूथ ऐसा है कि हम ना आसपास चीज़ें देखते हैं, क्या हो रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या लोग स्टाइल में कर रहे हैं, तो हम धीमे धीमे वो ऑप्ट करने लगते हैं पीयर प्रेशर में. हमारे दोस्त या जो जान पहचान के, अरे ट्राई करो ट्राई करो, ये वाली चीज़ हो जाती है ना.
0: और कई बार हमें लगता है कि एक बार करने में क्या जाता है.
1: हाँ
0: कि आप किसी भी अपने दोस्तों की ऐसे ग्रुप्स में बैठे हैं और कई बार होता है किसी ने बोला फिर किसी ने बोला और आपको लगता है हाँ मतलब एक बार ट्राई करने में या एक बार किसी चीज़ का हिस्सा बनने में क्या ही चला जाएगा, एक बार के लिए तो वी कैन गो फॉर इट.
1: हाँ और इसमें शामिल है कि कई बार हम लोग जो है ना ड्रिंकिंग कर लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है ना हमको कि अरे हम ये तो कर रहे हैं तो कूल लग रहे होंगे.
0: और या एक ही बार तो किया है, कौन सा हमारी आदत हो जाएगी या कौन सा वो हमारी हैबिट में आ रहा है या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा तो नहीं बन रहा. लेकिन वहीं पे अंजलि मुझे लगता है कि देर इज ऑलवेज अ चेक और हमारे एक हमेशा एक कॉन्शियस होता है जो हमें बताता है कि कहाँ पे रा के हमें रुक जाना चाहिए.
1: एग्जैक्टली क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमको दिखता है कि वेयर टू स्टॉप, बट वी कैरी ऑन एनी वेज क्योंकि हमको लगता है कि एक बार से कुछ नहीं हो जाएगा. बट फैक्ट ये है कि वंस यू ट्राई आपको नहीं पता है कि उसकी एडिक्शन कितनी जल्दी लग जाएगी.
0: बिल्कुल. और दोस्तों ये सारी बातें हम आज स्पेशली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व
1: तंबाकू दिवस, तंबाकू
0: निषेध
1: निषेध दिवस.
0: दिवस.
1: तो दोस्तों इसमें क्या है कि हम लोग टोबैको या स्मोकिंग ये सब करते रहते हैं और अपने आसपास भी देखते हैं कि लोग बहुत ही कैजुअली, नहीं कि बैठे हुए हैं और निकाला उन्होंने खा लिया और ये नहीं देख रहे हैं कि द मिनट यू डू इट, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग यू ओनली, इट इज़ अफेक्टिंग द पीपल अराउंड यू ऑल्सो.
0: बिल्कुल. नॉट जस्ट द पर्सन हु इज स्मोकिंग बट ऑल्सो देयर इज पैसिव स्मोकर्स, जैसा भी एक टर्म है. तो जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उन्हें भी उसका नुकसान हो रहा है. और कई बार अंजलि इसका जो लोग एक एक्सक्यूज देते हैं वो देते हैं कि अरे स्ट्रेस है
1: हाँ
0: या अरे अब तो ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है, नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट और गेट रिड ऑफ इट.
1: हाँ और ऐसा हम लोग देखते भी है ना कि वेन एवर एनी वन इज स्ट्रेस्ड तो ऐसा देखते हैं कि हाथ में सिगरेट है, ठीक है, तो वो स्ट्रेस रिलीव कर रहा है. मूवीज में भी हम लोगों ने कई बार देखा है कि ऐसे हीरोज हम लोगों को दिख जाएंगे जो नहीं कि स्मोकिंग कर रहे हैं और ड्रिंकिंग कर रहे
0: एक
1: हैं.
0: तरीके की एक पर्सनालिटी भी दिखाई जाती है जो कि शायद कई तरफ उसको ग्लोरीफाई भी कर दिया जाता है. तो एक जो मैसेज कभी कभी पहुंचता है वो ये है कि अच्छा एनी वन हु इज कूल इज हैविंग अ सिगरेट इन देयर हैंड्स.
1: एग्जैक्टली और फिर हम लोग उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं कि इफ दे आर डूइंग इट एंड इफ इट इज गेटिंग ग्लोरिफाइड इन द बिगर स्क्रीन तो इज इट ओके टू डू.
0: हाँ. और बस यहीं से जो एक ट्राई की जो हम बात करते हैं और जो हैबिट बनने तक का जो सफ़र होता है वो यहीं से शुरू होता है. और कई बार ऐसे एडिक्शंस होते हैं जो बहुत लेट रियलाइज होते हैं कि दे आर एक्चुअली अफेक्टिंग योर हेल्थ एंड नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ बट मेंटल हेल्थ.
1: हमको कई बार देखने को मिलता है ना कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो शुरुआत में तो उनको कुछ नहीं दिखेगा कि क्या अफेक्ट कर रही है हेल्थ, बट लेटर ऑन वो उनको नहीं पता चलता है कि कब वो चीज़ कैंसर में डेवलप हो सकती है.
0: और कोई एक ऑर्गन के कैंसर्स नहीं, दे आर मल्टीपल ऑर्गन्स जो इफेक्ट होते हैं इससे. जैसे कि अगर हम देखें तो ओरल कैंसर,
1: हाँ
0: लंग कैंसर, इवन और भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तंबाकू के सेवन से, बिकॉज उसमें निकोटीन है और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड आपका जो है बॉडी जला रहा है आपके लंग्स को. तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इट्स नॉट हेल्दी, आपको वो कोई तरह का न्यूट्रिशन तो दे नहीं रहा है बॉडी को और आपको खोखला अंदर से और कर रहा है. और साथ ही साथ इतना ही नहीं दोस्तों, ये है ना कि जब भी आप जब हम बात करते हैं अंजलि किसी की अपनी पर्सनालिटी में हम कुछ अच्छा ऐड ऑन करें,
1: हाँ
0: क्योंकि बात हो रही थी ये कूल लगने की वजह से भी कुछ लोग पिकअप कर लेते हैं,
1: हाँ
0: तो हम बता दें दोस्तों कि कूल लगने के और बहुत से तरीके हैं. जैसे कि आपकी बहुत ही कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी के लिए आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करें.
1: और ऐसा कई बार होता है ना सुष्मिता कि हम लोग देखते हैं अगल बगल की, आई हैव सीन मेनी पीपल जो अगल बगल चीज़ें देखेंगे और उससे रिलेटेड जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ट्रेन

0: ना रही है, तो ट्रेन के ट्रैक्स ऐसे क्यों है, मतलब वेरी वियर्ड थिंग्स, बट दे हैव अ क्विक फैक्ट दैट इज देयर. सो डेवलप दीज इंस्टेड ऑफ दीज हैबिट्स.
1: हाँ, और अब वही बात है कि जब आप अपने पर्सनालिटी के साथ इतना कुछ अच्छा कर सकते हैं, मतलब आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, और आजकल तो स्किल सीखने में दोस्तों बहुत कम, मतलब आप दिन भर में अगर एक घंटा भी दे रहे हैं तो यू कैन ऑलरेडी पॉलिश समथिंग विच इज़ ऑलरेडी योर्स, लेकिन आपको पता नहीं, और आप अपना कुछ ऐसा आप क्रिएटिविटी ब्रशअप कर सकते हैं.
0: हाँ.
1: और जैसे आप अंजलि तुमने बात की क्विक फैक्ट्स की, तो अब है ना कि हमारे हाथ में सोशल मीडिया रहता है.
0: हाँ.
1: तो कई बार ऐसे बहुत से ऐसे ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, ऐसे ट्रस्टेड पेजेस हैं जो कुछ ऐसे क्वर्की फैक्ट्स लेके आते हैं.
0: हाँ.
1: या फिर कोई ऐसे हर समय कुछ देश भर में हमारे जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं उनके बारे में, और वो बहुत एक ऐसे तरीके से उसको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि वो आपको याद करने जैसी बात नहीं रहती, वो आपके दिमाग में कंज्यूम, हाँ, बातें बस आपने पढ़ी और वो आपके दिमाग में बैठ गई. तो इस तरह की चीज़ों का हिस्सा बने, एंड दैट विल मेक यू

0: फिर कोई ऐसे हर समय कुछ देश भर में हमारे जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं उनके बारे में, और वो बहुत एक ऐसी तरीके से उसको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि वो आपको याद करने जैसी बात नहीं रहती, वो आपके दिमाग में
1: बैठ
0: कंज्यू,
1: जाती है।
0: हाँ, बातें बस आपने पढ़ी और वो आपके दिमाग में बैठ गई, तो इस तरह की चीज़ों का हिस्सा बने एंड दैट विल मेक यू मोर कूलर।
1: एग्जैक्टली। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस है आज, तो जब भी हम लोग सुष्मिता बताते हैं कि कोई दिवस है तो उसके पीछे की हिस्ट्री भी बताते हैं कि वो आया कैसे, शुरुआत कैसे हुई।
0: बिल्कुल।
1: तो साल 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू से होने वाली बीमारी और बढ़ती मृत्यु दर, जो मोर्टैलिटी रेट था, उसको देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएशन लिया। उद्देश्य था पूरी दुनिया का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना।
0: और इसके बाद 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निर्णय लिया कि हर वर्ष 31 मई को, यानी कि आज ही के दिन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में जागरूक करना है, और एक स्वस्थ समाज, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक हमारे आसपास के लोग जब हेल्दी रहेंगे तो हम एक हेल्दियर सोसाइटी बना पाएंगे, एक हेल्दियर ओवरऑल नेशन बना पाएंगे और वर्ल्ड भी।
1: तो दोस्तों, ये केवल ना एक जागरूकता अभियान नहीं है, ये एक वैश्विक जन आंदोलन है जिसमें दुनिया भर के देश और लाखों लोग मिलकर तंबाकू मुक्त जीवन का संदेश देते हैं।
0: तो इसीलिए दोस्तों 31 मई, यानी कि आज का दिन, ये एक कोई मामूली सी एक सिर्फ कैलेंडर की डेट नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जो सांसें हैं वो कितनी अनमोल है, और जो हमारी पूरी बॉडी है वो कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब किसी भी दिन हम थोड़े से भी बीमार पड़ते हैं अंजलि, और हम अपना रोज़ का काम भी अच्छे से प्रोडक्टिवली नहीं कर पाते हैं, तब शायद हमें एक हेल्दी बॉडी की जो इम्पॉर्टेंस है वो समझ में आती है।
1: एग्जैक्टली। सो रिमेंबर फ्रेंड्स कि जब भी आप टोबैको, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एनीथिंग, उसको जब आप मना कर रहे हैं तो यू आर नॉट जस्ट इग्नोरिंग एक आपकी जो खराब आदत है, आप अपनी जिंदगी को चुन रहे हैं
0: बिल्कुल।
1: हर उस पल, हर उस दिन। तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ, सुष्मिता, इतनी बातों के साथ अपने प्रोग्राम का पहला म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग सेगमेंट्स लाते हैं, आपके लिए ढेर सारी जानकारी लाते हैं, गाने भी लाते हैं जैसे कि अभी सुनाया, तो अब हम आपके लिए लाए हैं एक वार्ता जिसका विषय है
1: अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि। और जो हमारी वार्ताकार हैं वो हैं आर्या राजपूत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये वार्ता।
2: अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। खेल वह माध्यम है जो मन को एकाग्रता, व्यक्ति को अनुशासन और शरीर को शक्ति प्रदान करता है। खेल केवल हार जीत का मुकाबला नहीं है, बल्कि यह साहस, हिम्मत, टीम भावना और आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। मैदान में खेला जाने वाला हर खेल व्यक्ति को संघर्ष करना, गिरकर उठना और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। मेरे साथियों, भारत में खेल की परंपरा प्राचीन काल से ही है। रामायण और महाभारत काल में रथ युद्ध, मल्ल युद्ध जैसे खेल खेले जाते थे, तो वहीं मध्य काल में खो खो और कबड्डी जैसे खेल खेले जाने लगे और स्वतंत्रता के बाद भारत में आधुनिक खेलों का आगमन हुआ। और आज भारत न केवल अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विज्ञान में, बल्कि खेल के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, क्रिकेट, शतरंज आदि क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है और इन उपलब्धियों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवान्वित किया है। ओलंपिक की बात करें तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक, जो वैश्विक स्तर पर खेलों का महाकुंभ था, भारत के दृष्टिकोण से यह ऐतिहासिक उपलब्धियों का प्रतीक था, क्योंकि इसमें भारत ने आज तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए कुल 7 पदक अपने नाम किए, जिसमें सबसे पहला नाम नीरज चोपड़ा का आता है, जिन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में 87.58 मीटर का थ्रो करके एथलेटिक्स में भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया ने भारत को 2 रजत पदक दिलाए और पीवी सिंधु सहित अन्य खिलाड़ियों ने भारत के नाम 4 कांस्य पदक किए। मेरे साथियों, ये वही टोक्यो ओलंपिक है जिसमें भारत के हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद ओलंपिक पदक अपने नाम किए थे। और फिर 2024 का पेरिस ओलंपिक, जिसमें भारत एक बार फिर से एक नया इतिहास रचता है, जब फिर से नीरज चोपड़ा का भाला पूरे दुनिया को चुनौती देता है और जब

0: मनु भाकर एक नहीं बल्कि दो दो पदक जीतकर एक नया इतिहास रचती है। और जब भारत की हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक पदक जीतती है और तिरंगे की शान बढ़ाती है, तब पूरा विश्व भारत की बढ़ती खेल शक्ति को देखता है। और मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज भारत के पास कुल 41 ओलंपिक पदक हैं। वहीं क्रिकेट की बात करें तो जब जब मैदान में बल्ला गरजता है, पूरी दुनिया भारत का नाम पुकारती है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी, सचिन तेंदुलकर की मास्टर क्लास, विराट कोहली का जुनून और रोहित शर्मा के छक्के, यह केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत की शान है। 1983 से 2011 और फिर T20 विश्व कप की जीत तक हमारा देश भारत हर बार एक नया इतिहास रचता है। पिछले वर्ष 2025 में हमने देखा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियन कप जीता और साल का सबसे पहला बड़ा खिताब अपने नाम किया। वहीं हमारी देश की महिला टीम भी पीछे नहीं रही। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए वनडे विश्व कप को जीता और वहीं अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप को जीता और अपनी जीत का परचम लहराया। आज हमारा देश क्रिकेट में बहुत आगे जा चुका है। वहीं शतरंज की बात करें तो मैं कहना चाहूंगी कि शतरंज के क्षेत्र में हमारी नई युवा पीढ़ी का विशेष योगदान रहा है। आज से पहले जहां भारत शतरंज में केवल विश्वनाथन आनंद के नाम से जाना जाता था, तो आज वहीं नई युवा पीढ़ी की तेज सोच और कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ने भारत को चेस पावर बना दिया है। इसमें सबसे पहला नाम डी गुकेश का आता है, जिन्होंने 2024 चेस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया और सबसे कम उम्र में विश्व विजेता बने। साथ ही आर प्रागनंदा, जिन्होंने नॉर्वे टेरिस टेनिस चेस टूर्नामेंट में विश्व के नंबर वन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया और टाटा स्टील 2025 चेस चैंपियनशिप में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं हमारे देश की आर वैशाली भी पीछे नहीं रही। ये हमारे देश की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी और इन्होंने चेस ओलंपियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी नई युवा पीढ़ी शतरंज में पूरे विश्व स्तर पर एक नई मजबूत पहचान बना रही है। हमारा देश एशियाई खेल में भी पीछे नहीं है। एशियाई 2022 के गेम्स में भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम किए। वहीं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने लगभग पूरे के पूरे 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक सहित 23 कांस्य पदक थे। इसमें भारत ने बैडमिंटन, खो खो और कबड्डी, कुश्ती जैसे खेलों में अपना परचम लहराया और पदक तालिका में भारत चौथे नंबर पर रहा। वहीं बैडमिंटन की बात करें तो पीवी सिंधु भारत की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। और वहीं बोपाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यही कारण है कि इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए हमारे देश की सरकार खेलो भारत जैसी योजनाओं की शुरुआत करती है। खेलो भारत 2018 में शुरू की गई। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय खेल विकास योजना है जो देश में खेल की संस्कृति को पुनर्जीवित करने, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को पहचानने और वैश्विक स्तर पर भारत को खेल की महाशक्ति बनाने के उद्देश्य शुरू की गई थी। PIB रिपोर्ट के अनुसार खेलो भारत के तहत पूरे 232 खेल अकादमियों को मान्यता दी गई है और प्रतिवर्ष एथलीट्स को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मेरे साथियों, आज हमारा देश वैश्विक स्तर पर खेल के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है और इसमें हम आकाशवाणी के योगदान को भला कैसे भूल सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने क्रिकेट, कॉमनवेल्थ, एशियाई गेम्स, शतरंज जैसे खेलों की न्यूज पूरे देश भर में फैलाई और इससे देश के लोगों का खेल के प्रति रुचि बढ़ा। वहीं रेडियो ने दूर दराज के गांव में भी संदेश पहुंचाया खेल के संबंध में और इससे एक नई प्रतिभा का जन्म हुआ। आकाशवाणी हमारे भारतीय खिलाड़ियों के उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करती है, जिससे हमारे देश के खिलाड़ियों को देश और एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलती है। आने वाले समय में जब आकाशवाणी और उभरेगी और देश की योजनाएं जमीनी स्तर पर काम करेगी, तब हमारा देश वैश्विक स्तर पर अपने खेल के क्षेत्र में अपनी अस्तित्व को और मजबूत करते हुए एक विकसित देश अवश्य बनेगा। और अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि भारत के खेल की उपलब्धि केवल पदकों की कहानियां नहीं है, बल्कि यह करोड़ों सपनों, संघर्षों और तिरंगे के प्रति सम्मान की पहचान है। आज जब हमारे खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, तब हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आइए हम सब मिलकर इन खिलाड़ियों को सम्मान देते हैं और भारत को खेल की महाशक्ति बनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी वार्ता जिसका विषय था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि, और वार्ताकार थी आर्या राजपूत। आपको कैसी लगी ये वार्ता बताइएगा हमारे फोन नंबर 8004926250 पर।

0: हम लोग बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में आगे, मगर उसके पहले सुनते हैं एक संदेश।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों, जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। साल है 1921, मैसूर के महाराजा कॉलेज का भव्य परिसर। बाहर फूलों से सजी एक शानदार बग्गी खड़ी है और उसके चारों ओर छात्रों की भारी भीड़।
1: लेकिन सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? उस बग्गी में घोड़े नहीं जुड़े थे, उसे खींचने के लिए तैयार खड़े थे खुद छात्र।
0: अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन से शिक्षक थे जिनके लिए छात्रों का इतना प्यार उमड़ रहा था। वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी।
1: दरअसल उनका ट्रांसफर मैसूर से कोलकाता यूनिवर्सिटी हो गया था और उनके छात्र उन्हें विदाई नहीं दे रहे थे, अपने दिलों का सम्मान दे रहे थे।
0: सच कहें तो दोस्तों, एक शिक्षक की सबसे बड़ी कमाई डिग्री नहीं होती, बल्कि छात्रों पर जो लुटाया उनका प्यार होता है, जो सम्मान छात्र उन्हें देते हैं, असल उनके लिए वही तोहफा होता है।
1: तो दोस्तों, आज हम अपने प्रेरणापुंज सेगमेंट में बात करेंगे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और उससे भी बढ़कर एक आदर्श शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि आखिर 5 सितंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी एक बेहद दिलचस्प और खास और छू लेने वाली बात है।
1: साल था 1962। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बन चुके थे और राष्ट्रपति भवन उनका नया निवास था।
0: उनका जन्मदिन आने वाला था और कुछ छात्र और करीबी दोस्त उनके पास आए और बोले, सर, हम आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं।
1: इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन मुस्कुराए और बोले, अगर आप सच में मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो मेरे जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाइए।
0: और बस दोस्तों, तभी से 5 सितंबर पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। श्रोताओं, बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुनी एक साधारण परिवार में हुआ था और उनके जो पिताजी थे वो भूमि नाप जो कर के विभाग में काम करते थे।
1: शुरुआत में राधाकृष्णन विज्ञान विषय से पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था।
0: 12वीं के बाद वो मद्रास में अपने एक रिश्तेदार के घर आए। वहाँ उनकी नज़र वेदांत दर्शन की एक किताब पर पड़ी। अब जो इंसान पढ़ने का दीवाना हो, वो खुद कैसे अपने आप को रोकता। उन्होंने पूरी किताब ही पढ़ डाली
1: और इस किताब ने उनकी सोच बदल दी। अब उन्होंने तय कर लिया कि दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे। कह सकते हैं दोस्तों, उन्होंने दर्शन शास्त्र को नहीं चुना, बल्कि दर्शन शास्त्र ने उन्हें चुना था।
0: आगे चलकर उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। वेदांत, उपनिषद और भारतीय दर्शन को गहराई से अध्ययन किया।
1: फिर दर्शन शास्त्र में परास्नातक करने के बाद

0: मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बने। साल 1918 में उनका ट्रांसफ़र मैसूर के महाराजा कॉलेज में हुआ और यहीं उन्होंने दो महत्वपूर्ण किताबें लिखीं जो कि बहुत फेमस हैं, जिनका नाम है द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी।
1: और दोस्तों, यही वो दौर था जब उनकी पहचान सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक महान विचारक के रूप में बनने लगी थी। साल 1921 में वह कोलकाता यूनिवर्सिटी पहुंचे और धीरे धीरे उनकी पहचान पूरी दुनिया में बनने लगी।
0: उस समय पश्चिमी देशों में ये धारणा थी कि भारतीय दर्शन सिर्फ धार्मिक बातें करता है, लेकिन उन्होंने अपने लेखों और भाषणों से दुनिया को बताया कि भारत दर्शन कितना तार्किक और कितना गहरा है।
1: और वहीं हम बात करें अगर ईयर 1926 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए उनके भाषण ने सबको प्रभावित कर दिया। कई विद्वानों ने कहा स्वामी विवेकानंद जी के बाद राधा कृष्ण जी ने भारतीय दर्शन को सबसे प्रभावशाली तरह से ऐसे प्रदर्शित किया है
0: और दुनिया तक पहुंचाया। और उन्होंने द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अपने व्याख्यान दिए। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर ब्रिटेन के राजा तक ने उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया था।
1: और आगे चलकर वो आंध्र यूनिवर्सिटी के और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने।
0: और वो सिर्फ शिक्षक और दार्शनिक ही नहीं थे, वो एक शानदार राजनेता और कूटनीतिज्ञ भी थे। संविधान सभा के सदस्य रहे, यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने और फिर पंडित नेहरू ने उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत बना दिया।
1: 1962 में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल में देश ने कई मुश्किल दौर देखे, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और दो प्रधानमंत्रियों यानी कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने देश को संयम और गरिमा के साथ संभाला। दोस्तों,
0: 1967 के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन समाज सेवा से नहीं, उन्होंने हेल्प एज इंडिया जैसे प्रयासों से बुजुर्गों की सेवा की और ये काम शुरू किया। और 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन एक शिक्षक, एक दार्शनिक और एक प्रेरणा के रूप में वो आज भी हमारे बीच जीवित हैं।
1: तो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमें सिखाते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता है बल्कि व्यवहार में, विनम्रता में और सोच में दिखाई देता है।
0: और शायद इसीलिए आज भी जब हम आदर्श शिक्षक की बात करते हैं तो सबसे पहले याद आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम। तो सुष्मिता, जैसा कि हमारे श्रोताओं को पता है कि हम अपने प्रोग्राम में लास्ट में एक स्पेशल चीज़ लाते हैं, स्पेशल पार्ट रहता है जो कि हमारे स्पेशली जो यूथ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मगर उसको बताने से पहले लेते हैं एक यू टर्न।

0: तो साथियों अब आ गई है आज के सवाल की बारी। उससे पहले कि हम आज का सवाल बताएं, कल का सवाल मैं बता देती हूं। कल का हमारा सवाल था कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, और आंसर है सुचेता कृपलानी जी। तो अब आज का सवाल अंजलि आपको पूछेंगी।
1: आज का हमारा सवाल है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार निजता के अधिकार की गारंटी देता है? दोस्तों आप अपना जवाब दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पर, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है
0: 8004926250। आई रिपीट 8004926250 पर।
1: तो दोस्तों हम रोज़ आपके लिए ये क्वेश्चंस इसलिए लेके आते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे लिसनर्स हैं, जो सिंस हमारा प्रोग्राम युववाणी है, यूथ के सेंटर्ड है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। जैसे हम लोग स्टैटिक जीके के भी पूछते हैं, करंट अफेयर्स के भी पूछते हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं अगर एग्जाम होगा, रिकॉल होंगे, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम।
0: और ऐसा कई बार होता है कि जो चीज़ हम किताबों से पढ़ते हैं तो कई बार हमें वो उसको कई बार देखना पड़ता है, लेकिन अगर आप ऐसे साथियों में कभी डिस्कस करते हैं या किसी से सुनते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अरसे तक आपके दिमाग पे रह जाती हैं।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है सुष्मिता कि जब भी हम कुछ सुन रहे होते हैं तो वो हमारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो ज़्यादा लॉन्गेस्ट रन के लिए रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब भी आप हमारे प्रोग्राम को सुने, या अब तो ऐसा रेयरली होता है कि कोई हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा रहे, यू हैव योर फोन, आप अपने नोट्स आप खोलिए, या जहाँ कहीं भी आपको लिखना है, कोई भी आपको ऐसी जानकारी समझ में आ रही है जो आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, तो श्योरली आप उसको लिख लें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके कौन से एग्जाम में वो काम आ जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले प्रोग्राम में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए गीत के साथ, लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव
0: और मुझे यानी सुष्मिता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

हमारी युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रही थी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू

कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल की मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवाएंगे कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी से अभिनव प्रज्ञा पांडे की विशेष भेंटवार्ता। विषय होगा तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियां, उपचार, भ्रांतियां और समाधान। प्रसारण समय याद रखिएगा आज रात 9:30। 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। 6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित होगा। आज के इस कार्यक्रम में कप्तान भारती और साथी के गाय लोकगीत के अलावा हमारे किसान भाई डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप वर्मा से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा पशुओं का गर्मी और लू से बचाव। इसके अलावा विंध्यवासिनी राय की वार्ता होगी जीवाणु खाद के लाभ। सात बजकर 31 पर दिनेश भारती का लिखा नाटक हम आपको सुनवाएंगे पनहारू की अम्मा। 8 बजे कार्यक्रम चिट्ठी आई है का प्रसारण होगा। और 8:30 पर आज इतवार है, इसमें हम आपको सुनवाएंगे अभिलाष नारायण के लिखी जल की पासपोर्ट साइज फोटो। तो श्रोताओं ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली हमारे शेष कार्यक्रमों की। और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं। कल रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा कहकशा। हमारी प्रातःकालीन सभा में 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना प्रसारित किया जाएगा। विचार बिंदु में 6:30 पर सद्गुण और दुर्गुण पर विचार प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए रोज की तरह कृषि जगत कार्यक्रम सुबह 6:35 पर लेकर हम आएंगे। कल के इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाई डॉक्टर डीएस चौहान से की गई बातचीत सुनेंगे इस माह के उद्यान कार्य। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम प्रातः 6:45 पर। कल के इस प्रोग्राम में चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव की वार्ता होगी कैसे करें सही चश्मे का प्रयोग। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर अमृता मालवीय और शाम 7:45 पर भूपेंद्र कुमार के स्वर में भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे सुनवाया जाएगा। और 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाएं। शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में सुबह 7:30 पर पंडित अनंतलाल और पंडित भोलानाथ का शहनाई और बांसुरी पर युगल वादन। इसके अलावा दिन में 12:15 पर पंडित अनंतलाल का शहनाई वादन आप सुनेंगे। साथ ही रात्रि 10:30 पर पंडित उमाशंकर का सितार वादन हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 8:45 पर समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा नमस्कार प्रयागराज। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम सुनवाएंगे आपकी पसंद। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम प्रसारित होगा।

हमारी प्रातःकालीन सभा में 10:05 पर कार्यक्रम सुनेंगे वॉइस ऑफ प्रयागराज। दिन में 2:30 पर आप लोग गीतों का आनंद ले सकेंगे, कलाकार होंगे रामकृपाल यादव और साथी। दिन में 11 हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियां, उपचार, भ्रांतियां और समाधान विषय पर सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी से अभिनव प्रज्ञ पांडे की विशेष भेंटवार्ता। शाम 5 नई दुनिया कार्यक्रम का प्रसारण होगा और 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम सुना जा सकेगा। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में रामकृपाल यादव और साथी के गाय लोकगीत के अलावा राधेश्याम पांडे से लोकभाषा कविता पाठ सुनिएगा। शाम 7:31 पर डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की वार्ता होगी महात्मा गांधी का प्रकृत दर्शन। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे कानून और हम कार्यक्रम के तहत अधिवक्ता रमेश कुमार से की गई बातचीत, कैसे कराएं जमीन की रजिस्ट्री। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं संवित स्वरों में ये देशगान।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक सूचना हमारे पास है। मनोज जायसवाल कीटगंज प्रयागराज से हमें सूचित करते हैं कि इनकी संबंधी यामिनी जायसवाल, जिनकी उम्र 17 वर्ष है, कद 4 फीट 5 इंच, ये दिनांक 11 मार्च 2026 से लापता हो गई हैं। यामिनी जायसवाल के विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, मनोज जायसवाल पुत्र दिनेश चंद्र जायसवाल, 53 कृष्णा नगर, कीटगंज, प्रयागराज। अभी आप सुन रहे थे कोई व्यक्ति के संबंध में एक सूचना।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम समाचार लेकर रहे हैं, पहले संस्कृत में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमंत्री आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिक पेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। CBSE इति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिं दक्षिण पूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्म ऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद् रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप गर्म हवाएं ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात रक्षण प्राप्तुम आमपन्नम तक्रम सत्तुपेयम बेलपन्नम पानकम नीरमोर सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनम हितकरम अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां

0: अनुभवानि हिता अस्ति।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिता राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीड़ा संघ प्रतियोगिताया अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्यां प्रतियोगितायां प्रायः 800 क्रीडकाः भागं गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायां धावन प्रतियोगितायां विजेतृभ्यां गुरिन्दर वीर सिंहः तथा अनिमेष कुजूर चेत्येताभ्यां सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशस्य प्रत्येकं जनेषु जिज्ञासां जनयति। तेनोक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशे शीघ्रं लोकप्रियं भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्रसमूहे सम्मिलितुं तथा अवकाशकालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरयति।

0: सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन विजिता। निर्णायक स्पर्धायां भारतीय दलेन इंडोनेशियायाः मोहम्मद शोहिबुल फिक्री फजर अल्फियान इत्यनयोः युगलम् 18-21, 21-17, 21-16 इति अंकांतरालेन पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां निर्णायक स्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरंभः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर।

0: राम।
1: का हो घनश्याम भैया,
0: हाँ ललन भैया,
1: का हाल चाल बा? खेती किसानी के का होत बा समय
0: ये
1: खेत?
0: देखा हो खेती किसानी त भैया मौज में तबे रही ललन भाई ना,
1: हाँ
0: जब हर बात के जौन वैज्ञानिक भैया लोग बतावत हैं ओकरे अनुसार अगर चल बा तब।
1: मतलब कि आप ये कहा चाहत है कि नई तकनीक जौन बा अपने खेतन में किसान भाई लोग
0: हाँ नई
1: ओकर उपयोग
0: तकनीक,
1: करें।
0: बिल्कुल भैया, नया बीज, नई तकनीक, आ खेती किसानी के जौन आधुनिक तौन तरीका बा, सिंचाई के जौन तौन तरीका बा भैया हो ललन, अगर ये तरह से किसान अगर लेके चलिए ना, तो किसान बदे भैया हमेशा जग जग हो।
1: तो बहुत बढ़िया बात कह भाई कि अगर खेती किसानी में नई तकनीक का प्रयोग करही तो किसानन के लाभ होए। जैसे आप सिंचाई की बात कहे कि सिंचाई में अगर उनका प्रयोग करही तो पानी का कम खपत होए, जैसे टपकन विधि भ और
0: फुहारा विधि,
1: फुहारा
0: टपकन
1: विधि
0: विधि,
1: भ,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल हो।
1: एहन सब विधि से पानी का मात्रा कम लगे और पानी की भी बचत होए और साथे साथे किसानन का खर्च भी कम आए।
0: कम है ललन, देखा हो एक जमाना रहे कि नाली के माध्यम से दूर दूर खेत में पानी जात रहे।
1: हाँ पता चला था कि पूरा
0: हाँ
1: नाले में
0: भैया
1: पानी सुखा
0: पानी
1: जाता है।
0: पहुंचबे न करे, आ भैया हो अड़ोस पड़ोस के खेत में डूब जाए पानी, खेत भर
1: हाँ
0: जाए, तो भैया देखा समय बदलल हो, पाई पाई गेल, अब सीधे खेते में ले जाके गिराओ थे, वहू से बढ़िया आयल भैया जोन बतौला है टपक विधि बाय, फुहारा विधि बाय। भैया ऐसे ना देखा दुई चीज होते, एक तो पानी का बचत होता और दूसरा जो अनावश्यक खर पतवार उग जाते रहे ना, यहू में
1: उब
0: कमी आई गल।
1: तो बहुत बढ़िया बात कह कि खर पतवार का भी नियंत्रण हो या अगर नई टपकन विधि और फुलवारी विधि से फवारा विधि से अगर अपन सिंचाई करें किसान भाई लोग तो पानी की बचत के साथे साथे उनकर खेते का भी बढ़िया सुरक्षा होए।
0: बिल्कुल ललन भैया, आज देखा ना कुछ विशेष दिन बाय, आज
1: आज
0: कुछ कहे का मन करत हो।
1: नहीं तब कह भैया।
0: तो भैया देखा आज 31 मई हो
1: हाँ
0: और आज भैया विश्व तंबाकू दिवस,
1: तंबाकू निषेध
0: हाँ
1: दिवस हुए।
0: निषेध दिवस के रूप में भैया एक मनावल जाता है। जैसे देखा कहला है ना कि अपन खेत भैया अगर हर तरह से मजबूत हो तो भैया पैदावार मजबूत रही, वैसे अपन अगर स्वास्थ्य अच्छा हो ललन भाई तो खेती किसानी का मौज भी बढ़ जाता है।
1: सही बात बा भैया कि अगर स्वास्थ्य बढ़िया रहे तो खेती किसानी भी बढ़िया होए और स्वास्थ्य अच्छा रहे बदे मनुष्य के जौन अपने किसान भाई लोग हैं जितना सब हैं उनके अपने जीवन में कौन कौन चीज़ अपनावे चाहे। जैसे तंबाकू निषेध दिवस हुए
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: ये
0: भैया,
1: विशेष रूप से यह दे मनावा जाता कि तंबाकू का हानिकारक कारण बा, उसे
0: कारक
1: तंबाकू के कौन कौन भयंकर बीमारी हो सकत है
0: ये ललन भाई
1: उके जागरूक करब।
0: बिल्कुल बात सही कहते हैं। तंबाकू का तो ऐसा हो भैया, देखा वो जो धुआं वाला वाला धूम्रपान जेके कहल जाला
1: हाँ
0: भैया हो, जे ओके प्रयोग करत बा ओकरे बदे नुकसान तो बटले बा, लेकिन उनके आसपास भी जे भैया लोग बाटन
1: हाँ
0: ना, उन्हों के बदे भैया देखा बहुत नुकसान
1: मतलब
0: का
1: जे
0: चीज
1: नशा
0: हो।
1: नहीं करता वो भी ओकर दुष्प्रभाव में आ
0: बिल्कुल
1: जाए।
0: बिल्कुल आ जाए, आ देखा तो देखे में आओ तो घरे में छोट घर गदेला बाटन हो, बगले बैठल बाटन
1: बीड़ी
0: अब भाई,
1: पियत लगा हन।
0: हाँ तो देखा हो हम कहीं आपन तो जीव जहान खतरे में डलते हुआ।

0: आओ भैया छोट गदेला है नन्हू के आसपास में ये तरह के दिक्कत करे से देखा उनकर भी स्वास्थ्य प्रभावित हुई।
1: उ तो स्वास्थ्य प्रभावित होबे ही करे। ओकरे लामा न जोन लड़का होते हैं अपने आसपास के पर्यावरण के देख के अपने जोन बड़े बड़कवान के देख के अनुकरण करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: जिम्मेदारी होता सबका कि जे भी घरे के बड़ा सदस्य हैं वो तम्बाकू न उकर ग्रहण करें मत खाएं और धूम्रपान भी मत करें आ खुद भी सुरक्षित रहें अपने परिवार के सुरक्षित रखें समाज के सुरक्षित
0: हाँ,
1: रखें पूरा देश सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल
1: भैया जो नहीं तम्बाकू गुटखा जो आवत है ना इकरे पैकेट पे बना रहते कि भैया ऐसे कर्क रोग यानी कैंसर हो सकत है
0: बिल्कुल
1: उकरे बादो लोग
0: जान बुझ के जहर खाते हैं भैया तो एकर देखा एकरे बदे तो समझे कोई कि अगर अपन शरीर दुरुस्त नहीं बा तो कैसे काम करिए कैसे खेती कैसे किसानी। हाँ तो भैया ये जानबूझ के न करें हो और दूसरा अपन छोड़ें अपन त्याग करें। आज के दिन देखा बड़ा निक बा कि जे भैया लोग ये तरह के नशा का शिकार हैं ना आज कसम ले लें।
1: निश्चित रूप से भैया कसम ले या त्याग थोड़ा ये तो जहर हो जहर से मुक्ति पावे मतलब कितनी अच्छी चीज हो कि आज लोग संकल्प लें कि तंबाकू निषेध दिवस के दिन हम तंबाकू छोड़ब और अपने परिवार के सुरक्षित बनाओ
0: बनाई
1: ऐसे बहुत बहुत हाँ। परिवार भैया ना कैंसर जैसे बीमारी से पूरा उजड़ जाता।
0: बिल्कुल हो भैया इसे ना देखा एकर कौनो और छोर नहीं बा विनाश के।
1: तो अपने से काहे विनाश के मुंह
0: हाँ,
1: में जाए।
0: अभी भैया देखा शुरुआत में ना आदत बनाओ थे तो भैया मीठा जहर होला हाँ, धीरे धीरे भैया शरीर के खोखला कह देला आर्थिक रूप से संबलता खत्म हो जाले।
1: अच्छा एक बात और भाई गुटका उटका खाए वालन से ना जो थोड़ा ठीक ठाक लोग हैं ना तो बगले बैठा नहीं चाहते मुंह गंधात रहता
0: था। हाँ, हाँ, बिल्कुल
1: पूरा दांत उनका खराब हो जाता और शरीर तो खराब हो ही करता।
0: ये सब मानव बदे थोड़ी बनल हो। अरे भैया पौष्टिक आहार खाओ साग सब्जी सलाद दाल चावल रोटी हम कहीं ये मन सौख रखा दूध पिया
1: चार
0: घी
1: बैठा
0: हाँ,
1: में
0: बिल्कुल
1: गुटका खाई के अब गाय भैंसी के पगुरात बैठा है
0: बिल्कुल गंदा लगा था।
1: तो लोग मतलब बातचीत नहीं किया चाहते थोड़ा दूरी बना हुआ थे ना ऐसे लोगों से। तो भैया देखा समाज में अच्छा जौन बा अपने स्वभाव के प्रदर्शित कर सही ढंग से गुटका बीड़ी सब नुकसान करत था। तो आज तंबाकू निषेध दिवस के दिन भैया सब लोग संकल्प लें कि ऐसे मुक्ति पाओ।
0: बिल्कुल
1: और भैया देखा था ही आप जौन बा लोक गीत की तरह इशारा कर रहा है हमके।
0: नहीं बिल्कुल भैया आज तो देखा हो गौनई में भैया दुदू भैया बैठल बाटन
1: हाँ
0: तो देखा ढोलक मजीरा लेके भैया पन्ना लाल यादव उनका संघातीन बैठल हैं
1: हाँ।
0: तो आवा पहले भैया से ना इतने बढ़िया विकास गीत सुन
1: सोना से
0: हाँ।
1: बड़के है बढ़िया विकास
0: हाँ,
1: गीत
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: विकास गीत बढ़िया सुनवावा जाए और उकरे बाद फिर सुनवा
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ला सुना भैया
2: अरे सोना से बढ़ी गया

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
4: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
3: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
4: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
5: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: हाँ भैया, देख लोग गीतों सुन लिया के पन्नालाल यादव और साथी के, और साथे साथे सनेसो सुन लिया के।
7: बिल्कुल बिल्कुल हो ललन भाई। एक बात देखा, ये आवत हो कि जितना आपन खेती किसानी में आपन लोग का योगदान है, उतना अपने जीवन में अपने पशुअन का भी योगदान हो।
6: ये तो बहुत अच्छी बात कह भैया कि अपन जो खेती किसानी बना, बिना पशुअन के पूरा हो भी नहीं करत।
7: बिल्कुल हो, कहल जाता कि एक समुचित किसान वह हो जकरे द्वारे पर पशु हो, खेत में फसल।

0: फसल हो,
1: गोरु बछरू
0: बाग
1: बांधा हो।
0: बागवानी हो। हाँ तो भैया हो, देखा इसमें गर्मी का समय चलत हो, अपने पशुअन का भी देख रेख में उतने चौकस उतने ध्यान दे वाली बात हो।
1: सही बात बात कि लोग आदमी के लिए तो बात बहुत करते हैं कि गर्मी से लू से बचे, लेकिन पशुओं के लिए
0: बिल्कुल
1: भी आवश्यक बा कि खेती किसानी जो
0: हाँ
1: करत हैं
0: हाँ हाँ
1: किसान भैया
0: हाँ
1: लोग, वो अपने पशुओं के सही से सुरक्षा दें और उनकर लू से बचे के लिए बढ़िया ऐसा बाड़ा बनावे कि जहाँ उनसे लू से सुरक्षा हो।
0: सीधी गर्म हवा उनके न लगे। और एक चीज कहल जाए, अगर जानकार एकरे बारे में बतावा तो समझ ला जानकारी के माऊ जाऊ आ जात हो। है
1: बहुत बढ़िया।
0: तो भैया देखा, पशुअन के गर्मी और लू से कैसे बचावें, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप वर्मा से अपने राकेश कुमार मौर्य भैया के बात बत कही पाए। एक आवा तो हूँ सुना, हमारे किसान भाई भी सुना।
1: सुनवाते
0: हाँ
2: किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन का भी काम करते हैं, और जानते हैं कि यह समय गर्मी बहुत तेज पड़त बा, लू भी चलत बाटे है, आदमी के साथ साथ पशु भी बेचैन बाटे न। तो अपने पशुअन के किसान भाई लू से कैसे बचे ही, या लू लग जात है तो कौन कौन बेरामी हो सकत है, लू लगे का लक्षण होत है, इस सब पे जानकारी दे खातिर आज कार्यक्रम में आए बटन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप वर्मा जी, जवन की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बटन विकास भवन इलाहाबाद में। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत बा। आप हमारे किसान भाइन के बतावें कि अगर वो पशु पाले बाटें तो अपने पशु के लू से कैसे बचावें, या लू लग गए तो ओकर का लक्षण व कैसे पहचानें किसान भाई के, उनके पशु को लू लगा व का बचाव के उपाय बतावें आप।
3: किसान भाई जो है पहले तो ये जान लें कि कैसे जान पाएंगे जो है
2: जी
3: पशुओं को जो है लू लगा है
2: जी जी
3: उनके क्या लक्षण हैं। इसमें
2: बतावें
3: जो है इस समय जो है
2: जी।
3: पशुओं में जो है अत्यधिक तेज बुखार होना, शरीर में ऐंठन, पेट दर्द, आँख और नाक से पानी आना,
2: जी
3: ये सब इसके लक्षण हैं।
2: अच्छा
3: कभी कभी जो है इसमें दस्त भी होता है पशुओं को।
2: जी, यानी जब किसान भाई देखेंगे उनके पशु के तेज बुखार भब, पेट दर्द होत बे या शरीर में ऐंठन होत बे, तो समझ लें कि लू
3: जी जी
2: लग
3: जी
2: लग गो।
3: जी
2: जी। और डॉक्टर साहब
3: और इस समय जो है
2: जी।
3: पशुओं में जो है बाह्य परजीवी जो है जैसे किलनी है, जुआ है, और अंतः परजीवी जैसे पेट में केचुआ होना, अन्य जो है पेट के कीड़े होना, ये भी जो है संभावना बढ़ जाती है।
2: अच्छा लू लगे के उठा में।
3: हाँ, क्योंकि
2: अच्छा
3: जानवर हो जाता है कमजोर,
2: जी जी जी
3: कमजोर की स्थिति में जो है
2: जी
3: इनमें जो है बीमारियों की जो है प्रबल समस्या जो है
2: बढ़
3: बढ़ने की
2: बढ़
3: रहती है।
2: बढ़ जाता। जी जी जी और डॉक्टर साहब बताओ।
3: और इस समय जो है पानी की कमी की वजह से जो पशु पालक भाई जो है जैसे चरी है उस सब में इसमें जो है विषाक्त जो है पैदा हो जाता है
2: जी जी
3: जिसको हम कहते हैं साइनाइड पॉइजनिंग।
2: जी जी
3: अगर इसकी बराबर सिंचाई नहीं की जा रही है या जो है विकास कायदे से नहीं हुआ है, जो पशुपालक इसको जो है काट करके खिलाता है जो है जानवर जो है इसमें जो है
2: जी
3: विषाक्त होने के कारण जो है उसकी मृत्यु भी हो जाती है।
2: अच्छा अच्छा
3: तो ऐसी दशा में जो है पशुपालक भाइयों को चाहिए जो है बराबर खेत की जो है सिंचाई, अगर चरी जो है काट के लाते हैं इस समय जो है कम से कम दो पानी जो है धुलवा करके जो है
2: कुछ
3: उसके
2: देर
3: बाद
2: ठंडा
3: उसकी
2: कर दें।
3: जी ठंडा करके जो
2: जी
3: है कायदे से धुलवाने के बाद ही जो है
2: जी जी
3: इसको पशुओं को खिलाएं।
2: और डॉक्टर साहब गर्मी से और का बीमारी हो सकत।
3: पशुओं में अगर जो है लू लग गया है तो हमेशा जानवर जो है स्ट्रेस में बना रहता है। स्ट्रेस में जब बना रहेगा तो उसको तमाम अन्य बीमारियां जैसे
2: जैसे
3: सीजनल जो है जैसे सर्रा है, ब्लड प्रोटोजोन जो डिजीज है सर्रा है, और क्या कहते हैं बैक्टीरिया जनित जो है समर में जो है समर मास्टाइटिस हो जाती है, बैक्टीरिया कारण जो है दूध की जगह जो है थन से पस निकलने लगता है।
2: जी। तो ये है कि गर्मी में ये सब बीमारी हो चुका थी, लू लगने से ज़्यादा
3: बिल्कुल
2: संभावना
3: बिल्कुल
2: बढ़ा।
3: बिल्कुल
2: डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहब कि मान लो लू लग गया बा तो
3: हाँ,
2: उनके बचाव का उपाय हो सकत है।
3: उसके बचाव के लिए जो है हम बताते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि अगर जो है निकटवर्ती जो है पशु चिकित्सालय को जो है सूचित कर सकें और अच्छी बात है,
2: जी
3: वहाँ
2: जी
3: से उनको सहायता मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो है पशुपालकों के घर में जो है गुड़, देसी
2: जी जी
3: नमक,
2: जी
3: पानी मिश्रित जो है
2: जी जी
3: घोल बना करके जो है पशुओं को दें।
2: यानी गुड़ नमक पानी के
3: जी
2: घोल
3: जी
2: बनाए के पशु पिलावे चाहे।
3: पशु को जो है पिलाना चाहिए, सवेरे शाम जो है नहलाना चाहिए पशुओं को,
2: जी जी
3: छाए में जो है बांधना चाहिए पशुओं को। पशुशाला जहाँ बांधते हैं जानवर वहाँ पर जो है बोरे के जो है पर्दा लगा करके जो है उसको पानी से तर रखें,
2: ठंडा रखे चाहिए।
3: ठंडा रखें,
2: जी जी
3: छायेदार जगह में बांधें। और पशुओं को बचाने के लिए जो है टीकाकरण,
2: अच्छा
3: जैसे गला घोटू है, लंगड़िया है, या जो है खुरपका मुंहपका है,

0: ये जो है इस समय जो है बरसात होने के पहले, बरसात के बाद कुछ बीमारियों
1: जी,
0: टीके लगते हैं, समय से जो है टीकाकरण कराना।
1: अगर टीका लगवा लेंगे तो बरसात जो बीमारी हो तो वो ना होए।
0: हाँ,
1: और
0: कृमिनाशक दवाओं का जो है
1: जी,
0: वाहन, जैसे अंतःजीवी जो है या बाह्य परजीवी है, बाह्य परजीवी के लिए जो है जू है, किलनी है, इनको ख़त्म करने के लिए जो है लगाने की भी दवा है
1: अच्छा,
0: और खिलाने की भी दवा है और इंजेक्शन लगाने की भी दवा है।
1: अच्छा,
0: अंतः परजीवी के लिए खिलाने की दवा है,
1: जी बताओ। अब बाह्य परजीवी जोन होते नो करे लिए।
0: बाह्य परजीवी के लिए तो लगाने की दवाएं हैं।
1: जी,
0: अगर वो लगाते हैं जो है, आजकल तो इस तरह की दवाएं उपलब्ध हैं कि रीढ़ की हड्डी पर अगर उसको जो है
1: मल दें।
0: एक निश्चित मात्रा में गिराते हुए चले जाएं पूंछ तक जो है, तो सारे बाह्य परजीवी खत्म हो जाएंगे
1: अपने आप है।
0: अपने आप।
1: और कौन देसी उपचार वो कर।
0: देसी उपचार में जो है पहले जो है इस्तेमाल करते थे लोग जो है गमेक्सीन,
1: अब तो प्रतिबंधित होगी।
0: प्रतिबंधित है, उसको इस्तेमाल न करें।
1: जी, और डॉक्टर साहब।
0: हरे चारे में जो है साइनाइड पॉइजनिंग अभी हम बता रहे थे, उससे बचाव के लिए जो है हर संस्थाओं पे जो है सोडियम थायोसल्फ नाम की जो है दवा जो है हमने
1: जी,
0: दे रखा है।
1: अच्छा।
0: अस्पताल सूचना दे करके वहाँ से सहायता ले सकते हैं। घरेलू उसमें जो है आटे का घोल बना करके पिलाएं,
1: जी, जवा का
0: जिस
1: आटा के।
0: दवा का असर कम हो जाएगा।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब एक चीज़ जानना चाहे कि लू ना लगे, भाई लग गवा तो अलग उपचार बा, ना
0: हाँ,
1: लगे ओकरे लिए का कह सकते
0: उसके
1: हैं।
0: लिए तो यह है कि अपने जानवरों को जो है छायादार जो है वृक्ष के नीचे या जो है पशुशाला जो है ऐसी जगह बांधें जहाँ पर जो है बोरे का पर्दा लगा करके उसको भिगो के रखें,
1: जी,
0: तो इससे हम जानवरों को अपने जानवरों को जो है लू से बचाए।
1: बचा सकते। जैसे किसान भाई नहवावा थे, मतलब संध्या सवेरे नहवाए तो तब ठीक, लेकिन दोपहर में लू में नहवा दें तो और लू लगा, डर रहा था।
0: दोपहर में कतई नहीं नहलाना चाहिए जो है।
1: जी, और
0: किसान भाइयों को सुबह जो है पशुओं को नहला करके जो है
1: जी,
0: छाया में जो है बांधना, शाम को जो है सूरज ढलने पर
1: तब नहवा एक
0: तब
1: चाहिए।
0: नहलाना चाहिए।
1: जी,
0: इससे जो है पशुओं के शरीर का तापमान जो है
1: सही रहा था।
0: सही रहता है।
1: खास कर के जो दूध वाले जानवर हैं, दूध देई वाले,
0: जी जी
1: जैसे भैंस तो मान लो चल जाते हैं, उनका गाय के बताओ थे ज़्यादा कि
0: हाँ
1: गर्मी में ज़्यादा खलत है,
0: हाँ
1: तो गाय के लिए क्या विशेष व्यवस्था हो कि चाहे या गर्मी में जही हम बची रहें लू से या गर्मी से, कुछ
0: नहीं,
1: बताओ।
0: जैसा अभी बताएं ये सब व्यवस्थाओं के साथ में अगर हम उनको विटामिन प्रचुर मात्रा में देते हैं,
1: जी,
0: मिनरल मिक्सचर्स हैं,
1: खान पान में।
0: विटामिन ए डी हैं, खान पान में, खान पान पर अगर विशेष ध्यान रखते हैं तो बचाया जा सकता
1: अच्छा, खान पान को कैसे, खान पान उनका हो चाहे कि
0: है।
1: गर्मी
0: खान
1: में।
0: पान में जो है हरे चारे की मात्रा जो है, पानी की मात्रा जो है, ये जो है पशुओं को लू से बचाने में सहायक होते हैं।
1: अच्छा, जैसे हरा चारा हो, भूसा हो, और पशु आहार हो, इतनी सब मिला के देख चाहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अच्छा, या अपने।
0: इससे इनकी विटामिन की आवश्यकता भी पूरी होगी और पशु जो है जब स्वस्थ रहेगा जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी रहती है।
1: जी, एक बात और जानना है कि पानी पी आवे कब चाहे। जैसे कुछ लोग हैं कि चारा के समय ही पानी डाल देते हैं, चारा पानी एक साथ बा, कुछ लोग कहा थे नहीं चारा खाए के बाद पानी पिया हो चाहे। आजकल गर्मी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी हो तो पशुअन के, तो कैसे उनका कब कब पी आवे चाहे, पानी कैसे हो चाहे बताओ।
0: नहीं, पानी पिलाने के लिए यह है पशुपालकों को चाहिए जो है पानी जो है
1: जी,
0: चारा देने के पहले भी जो है पिला सकते हैं,
1: जी
0: चारे के साथ तो है ही है, और विशेषकर गर्मी में जो है हर 2 घंटे पर जो है
1: जी,
0: पानी दिखा देना चाहिए जानवरों को,
1: अच्छा,
0: जिससे शरीर में पानी कमी ना हो।
1: कमी ना हो चाहे। भाई वो बेजुबान जानवर हो तो मांग ही ना कि हम प्यास लागू हमका पानी पिया हुआ,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: अपने से सोचे कि चाहे कि उनका पानी समय समय
0: बिल्कुल
1: से
0: बिल्कुल,
1: साफ
0: गर्म
1: पानी पियावे
0: इन
1: के
0: दिनों
1: चाहे।
0: में जो है हर 2 घंटे पर जो है उनको जो है पानी दिखा देना चाहिए।
1: जी, चारा कई बार खिलावे के चाहे उनका,
0: चारा जो है 3 से 4 बार
1: तीन
0: दिन
1: से
0: में,
1: चार बार खिलावे
0: जी
1: चाहे, दाना का भी
0: थोड़े
1: मात्रा
0: मात्रा
1: हो।
0: में
1: जी,
0: 3 से 4 बार
1: से गर्मी में दाना भी अलग से व्यवस्था करे के चाहे उनका।
0: बिल्कुल। अगर दूध को जो है बरकरार रखना है,
1: जी,
0: मान लिया कोई पशु जो है हमारा जो है 8 लीटर 9 लीटर दूध दे रहा, 10 लीटर दे रहा, हम चाहते हैं कि गर्मी में भी इसकी क्षमता जो है बरकरार रहे,
1: जी,
0: तो उसके लिए पौष्टिक आहार तो वही है, हरा चारा है, भूसा है, उसके साथ में जो है मिनरल्स हैं, पशु आहार है,
1: जी,
0: ये सारी चीज़ें जो है। दूसरे जो है इनका रख रखाव वो हमारा जो है सही होना चाहिए, पशुशाला जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, जानवर जो है छायेदार जगह में हो,
1: जी,
0: गर्मी से बचाव के पर्याप्त उपाय हों, इन चीज़ों से हम अपने जानवर को जो है बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं।
1: जी, आजकल देखा जाए भाई आधुनिक तरीका है, काफ़ी लोग हवा की भी व्यवस्था, पंखा वगैरह की भी व्यवस्था।

0: था करथिन,
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: बिल्कुल
0: अच्छी नस्ल का गाय पाले हैं
1: हाँ
0: जोन बाहरी गाय हैं बताओ थी, उनका ज़्यादा दिक्कत होता गर्मी में, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करें कि चाहे।
1: हाँ बिल्कुल, उनके लिए जो है पंखे की व्यवस्था या कूलर की व्यवस्था, जो हमारे गरीब किसान भाई हैं जो
0: जी
1: नहीं कर सकते हैं,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: कम से कम जो है टाट जो है या बोरा जो है भिगो करके वो तो कर सकते हैं,
0: जी।
1: जिससे अपने जानवर को जो है सुरक्षित रख सकते हैं,
0: जी, गर्मी से बचाई सकते।
1: बचा सकते हैं।
0: जी, और का उपाय बतावे चाहिए गर्मी से बचावे के, बताओ।
1: गर्मी के दिन में जो है जानवरों को जो है
0: जी
1: चरने के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है वातावरण का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है,
0: जी
1: और जानवर अगर जो है खुलते हैं, पशुपालक भाई ध्यान नहीं देते हैं, गर्मी लगने की जो है या लू लगने की संभावना ज़्यादा रहती है।
0: जी। आज दोपहरी में अगर खोल दें भाई तो लू लग सकत।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी जैसे दोपहरी में तालाब में तैरत हैं गाय भैंस जाए के हैं, और
1: बिल्कुल
0: में से निकल लू भी चलत बाटे तो और लू लागे की संभावना रहा।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: इसलिए कि जब तालाब में जो है जानवर बैठे रहते हैं उस समय तो उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, निकलने के बाद जो है गर्मी इतनी तेज होती है,
0: जी
1: जैसा कि आजकल जो है चल रहा है तापमान बहुत ज़्यादा है, तो इसमें लू लगने की संभावना बढ़ जाती है।
0: जी। तो डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप वर्मा जी, आप आयन गर्मी और लू से अपने पशु किसान भाई कैसे बचाएं, लू लगे से का संभावना हो सकत, का बीमारी हो सकत, उसे का नियंत्रण हो सकत, ये सब आप बारे में बहुत बढ़िया से आप बताएं। आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
0: हाँ
2: भैया,
0: भैया
2: देखा
0: ललन,
2: ये पशुओं का गर्मी और लू से बचाव विषय पे
0: बहुत
2: डॉक्टर
0: बढ़िया।
2: सुरेंद्र प्रताप वर्मा से अपन राकेश कुमार भैया बड़ा फरियाई फरियाई पूछें और विस्तार से वो जानकारी भी दें
0: डॉक्टर
2: डॉक्टर
0: साहब
2: साहब।
0: बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: अच्छा घनश्याम भैया, देखे जो न अपने खेती किसानी में ना खाद का कैसे प्रयोग किया जाए, कब कब किया जाए, एकर जानकारी हो बहुत आवश्यक बा।
0: बहुत भैया, देखा वैज्ञानिक भैया लोग एक बात बतावत हैं कि रासायनिक खाद का प्रयोग अगर कम से कम हो तो भैया ऐसे जौन अनाज पैदा हो ये बहुत पौष्टिक वाला हो।
2: सही बात बा। और जैविक खाद जोन बा
0: हाँ
2: ओकर
0: बिल्कुल
2: कितना बेहतर ढंग से उपयोग खेती में किया जाए, उसे खेती के गुणवत्ता माटी के गुणवत्ता बनी रहता, और साथे साथे जोन उसे उपज पैदा होत ना हो
0: हाँ।
2: वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही
0: बहुत
2: हितकर
0: बहुत
2: होता।
0: बहुत बहुत
2: और देखा गर्मियन में भी खाद का कैसे प्रयोग किया जाए, और देखा इसमें गर्मी पड़ता ना तो किसान भाई के भी चाहे कि सुबह शाम अपने खेते में खाद डालें, जैसे इसमें जायद का फसल जोन बा उमर कुछ खाद डाले के होता तो सुबह शाम डालें दोपहर में न जाएं।
0: बिल्कुल भैया, थोड़ा सा बच बचाव से भी रहब जरूरी है। और दूसरा चीज़ के भैया देखा, सिंचाई भी हो तो के कहल जाता है ना कि शाम के सिंचाई कैदा ताकि रात भर पानी ठंडा रहे, पौधन के भी ठंडा पानी मिले। तो भैया हो ये खेती का तौर तरीका अगर सही ढंग से लेके चलिए तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य अच्छा रही और खेती का पैदावार भी अच्छा रही।
2: अच्छा घनश्याम भैया, जो खाद के बात होता तो जो इमन जीवाणु खाद होता,
0: ये
2: जीवाणु
0: बहुत
2: खाद
0: लाभ
2: से
0: वाली चीज भैया ये तो।
2: तो जीवाणु
0: हाँ
2: खाद से का लाभ बा, यहीं पे एक वार्ता बाही विषय पे
0: अच्छा,
2: विंध्यवासिनी राय जी का तो
0: वाह वाह भैया वाह।
2: आवे अपने किसान भाई इनके जीवाणु खाद से लाभ के बारे में इनसे सुनवावा जाए
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: और किसान भाई लोग जाने की का हुए
0: ये बिल्कुल सुनवा दा।
2: सुनवा दे।
3: आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि किसान अपने खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर निर्भर है। यही कारण है कि रासायनिक उर्वरकों की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फसलों द्वारा जमीन से लिए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश में से नाइट्रोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है, क्योंकि इस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यही नहीं, जमीन में डाले गए नाइट्रोजन का 40 से 50% ही फसल उपयोग कर पाती। शेष 55 से 60% भाग या तो पानी के साथ बह जाता है या वायुमंडल में डीनाइट्रिफिकेशन से मिल जाता है या जमीन में अस्थायी बंधक हो जाते हैं। अन्य पोषक तत्वों की तुलना में मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है। यदि प्रति किलो पोषक तत्व की कीमत देखें तो नाइट्रोजन ही सबसे अधिक कीमती माना जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन वाले उर्वरकों के एक एक दाने का उपयोग सावधानी से करना आज की आवश्यकता है। इसीलिए फसलों की नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूरी तरह रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में जैव उर्वरकों के प्रयोग की संस्तुति की जाती है। जमीन में सूक्ष्म जीवों की सम्मिलित सक्रियता के लिए ये दशाएं अनुकूल होती हैं, जैसे जीवांश पदार्थ की उपस्थिति, नमी, वायु संचार, हमेशा उदासीन के आसपास

यजमान। ये चारों आवश्यकताएं एकमात्र कंपोस्ट से ही पूरी की जा सकती है। अब हम बताएंगे कि जैव उर्वरक का प्रयोग जीवाणु खाद के रूप में कैसे कर सकते हैं और ये है क्या। सभी प्रकार के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए खास तौर से 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पौधों में तीन प्रकार से उपलब्ध होती हैं, रासायनिक खाद द्वारा, गोबर और कंपोस्ट द्वारा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन एवं फास्फोरस घुलनशील जीवाणुओं के द्वारा। जमीन में सूक्ष्म जीवी बैक्टीरिया, फफूदी, शैवाल, प्रोटोजुआ, ये सभी इसके स्रोत हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवी वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाली 78% नाइट्रोजन, जिन्हें पौधे सीधे उपयोग करने में अक्षम होते हैं, उनको अमोनिया या नाइट्रेट तथा फास्फोरस को उपलब्ध अवस्था में बदला जा सकता है। जैव उर्वरक इन्हीं सूक्ष्म जीवों का पिट, लिग्नाइट या कोयले के चूर्ण में मिश्रण है, जो पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि की उपलब्धता बढ़ाता है। जैव उर्वरक पौधों के लिए वृद्धिकारक पदार्थ भी देते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक भी होते हैं। भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना कृषि उत्पादन के स्तर में स्थायी लाने के लिए इन्हें जैव कल्चर, जीवाणु खाद, टीका अथवा इनाकुलेंट भी कहते हैं। जीवाणु खाद या जैव उर्वरक इस प्रकार से उपलब्ध राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर कल्चर, एजोस्पाइरिलियम कल्चर, नील हरित शैवाल, फास्फेटिक कल्चर, एजोलाफर्न, माइकोराइजा, ये सभी भी स्रोत हैं। अब हम राइजोबियम कल्चर के बारे में बताएंगे, जिसे आप खास तौर से जानते हैं तथा प्रगतिशील किसान इसका प्रयोग भी करते हैं। यह एक नम चारकोल और जीवाणु का मिश्रण है, जिसके प्रत्येक 1 ग्राम भाग में 10 करोड़ से अधिक राइजोबियम जीवाणु होते हैं। यह खाद केवल दलहनी फसलों में ही प्रयोग की जा सकती है और यह अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार का राइजोबियम जीवाणु खाद का प्रयोग होता है। राइजोबियम जीवाणु खाद से बीज उपचार करने पर ये जीवाणु खाद से बीज पर चिपक जाते हैं। बीज अंकुरण पर ये जीवाणु जड़ की मूल रोम द्वारा पौधों की जड़ों में प्रवेश कर जड़ों पर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यही ग्रंथियां नाइट्रोजन स्थिरीकरण इकाइयां हैं। पौधों की बढ़वार इनकी संख्या पर निर्भर करती है। पौधे की जड़ में अधिक ग्रंथियों के होने पर पैदावार अधिक होती है। अलग अलग फसलों के लिए राइजोबियम जीवाणु खाद के अलग अलग पैकेट बाजार में उपलब्ध हैं। दलहनी फसलों के लिए जैसे कि मूंग, उड़द, अरहर, चना, मटर, मसूर में इनका प्रयोग होता है और इनके लिए अलग अलग पैकेट हैं। तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली और सोयाबीन के प्रयोग होता है और फसलें जिनमें इनका प्रयोग नहीं होता है वे भी कुछ फसलें हैं जो कि दलहनी नहीं है, और फसलें जिनमें प्रयोग करते हैं उसमें रिजका, बरसीम और ज्वार है। अब हम बात करेंगे कि इनका प्रयोग कैसे किया जाए। 200 ग्राम राइजोबियम से 10 से 12 किलोग्राम बीज उपचारित कर सकते हैं। एक पैकेट को खोलें और 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर लगभग 300 से 400 मिलीलीटर पानी में डालकर इसका घोल बना लें। बीजों को एक साफ सतह पर एकत्रित कर जीवाणु खाद के घोल को बीजों पर धीरे धीरे डालें और बीजों को हाथ से उलटते पलटते जाएं, जब तक कि सभी बीजों पर जीवाणु खाद की समान परत न बन जाए। इस क्रिया में ध्यान रखें कि बीजों पर लेप करते समय बीज के छिलके का नुकसान न होने पाए। उपचारित बीजों को साफ कागज या बोरी पर फैलाकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सुखाएं और उसके बाद तुरंत बोएं। राइजोबियम जीवाणु के प्रयोग से 10 से 20 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है और इसके प्रयोग से फसल में उपज में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि होती है। राइजोबियम जीवाणु हार्मोन्स और विटामिन्स भी बनाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। साथ ही एक फायदा यह भी है कि इन फसलों के बाद बोई जाने वाली फसलों के लिए भी भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इसी तरह एजेटोबैक्टर कल्चर जीवाणु खाद में पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणुओं का एक नम चूर्ण रूप उत्पाद है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसके 1 ग्राम में लगभग 10 करोड़ जीवाणु होते हैं। यह जीवाणु खाद दलहनी फसलों को छोड़कर सभी फसलों पर उपयोग में लाई जा सकती है। एजोस्पाइरिलियम कल्चर जीवाणु खाद भी मिट्टी के

0: खासतौर से पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणुओं का एक नम चूर्ण रूप उत्पाद है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। यह जीवाणु खाद खरीफ के मौसम में धान, मोटे अनाज और गन्ने की फसल में विशेष उपयोगी है। एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलियम जीवाणु खाद से फसलों की 10-20% तक पैदावार में वृद्धि होती है। इसके प्रयोग करने से 20-30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत की जा सकती है। इसके प्रयोग करने से अंकुरण शीघ्र और स्वस्थ होता है और जड़ों का विकास अधिक एवं शीघ्र होता है। फसलें जमीन से फास्फोरस का अधिक प्रयोग कर लेती हैं, जिससे कल्ले अधिक बनते हैं। ऐसे जैव उर्वरकों का प्रयोग करने से जड़ों और तनों का अधिक विकास होता है, जिससे पौधों के तेज हवा, अधिक वर्षा और सूखा के स्थिति में सहने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं नील हरित शैवाल खाद की। एक कोशिकीय सूक्ष्म नील हरित शैवाल नम मिट्टी और स्थिर पानी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। धान के खेत का वातावरण नील हरित शैवाल के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसकी बढ़वाल के लिए आवश्यक ताप, प्रकाश, नमी और पोषक तत्वों की मात्रा धान के खेत में मौजूद रहती है। धान की रोपाई के 3-4 दिन बाद स्थिर पानी में 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर यानी 2.5 एकड़ की दर से सूखे जैव उर्वरक को प्रयोग करें। इसे प्रयोग करने के बाद 4-5 दिन तक खेत में पानी लगातार भरा रहना चाहिए। इसका प्रयोग कम से कम 3 वर्ष तक लगातार खेत में करें, इसके बाद इसे फिर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि धान में खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग किया है तो इसका प्रयोग खरपतवार नाशी के प्रयोग के 3-4 दिन बाद ही करें। नील हरित शैवाल के प्रयोग से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। धान के उत्पादन में 15-20% की वृद्धि भी हो जाती है। नाइट्रोजन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व फास्फोरस है, जिसे पौधे सबसे अधिक उपयोग में लाते हैं। फास्फेटिक उर्वरकों का लगभग 1/3 भाग पौधे अपने उपयोग में ला पाते हैं, शेष अघुलनशील अवस्था में ही जमीन में पड़ा रह जाता है, जिसे पौधे स्वयं घुलनशील नहीं बना पाते। जीवाणुयुक्त खाद प्रयोग करने से यह अघुलनशील फास्फोरस जीवाणुओं द्वारा घुलनशील अवस्था में बदल दिया जाता है। इसका प्रयोग सभी फसलों में किया जा सकता है। फास्फेटिक जीवाणु खाद के प्रयोग से फसलों की 10-20% तक पैदावार में वृद्धि होती है। इसके प्रयोग करने से 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध फास्फेट की बचत की जा सकती है। इसी तरह एजोला फर्न जलमग्न धान के खेत में बुआई के 1 सप्ताह बाद 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उगाया जा सकता है, जो 2 किलोग्राम नत्रजन प्रतिदिन की दर से स्थिर कर सकता है। इसके प्रयोग से धान में खरपतवार कम पनपते हैं और नाइट्रोजन के प्रयोग में 30-40 किलोग्राम की बचत की जा सकती है। माइकोराइजा के प्रयोग से भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तथा कैल्शियम उपलब्धता बढ़ती है। अंत में हम जैव उर्वरकों के प्रयोग में कुछ सावधानियों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि जीवाणु खाद को धूप व गर्मी से दूर सूखे और ठंडे स्थान पर रखें। जीवाणु खाद या उसके उपचारित बीजों को किसी भी रासायनिक खाद या रसायन के साथ न मिलाएं। राइजोबियम जीवाणु फसल विशेष के लिए होते हैं, इसलिए पैकेट पर लिखे हुए फसलों में ही इसका प्रयोग करें। जैव उर्वरकों का प्रयोग पैकेट पर लिखी हुई अंतिम तिथि से पहले ही कर लेना चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि उत्पादन लागत कम करने के लिए जीवाणु खाद का प्रयोग नितांत आवश्यक है।
1: हाँ भैया, देखो जीवाणु खाद के लाभ विषय पे विंध्यवासिनी राय जी कितना अच्छी जानकारी दें कि जीवाणु खाद से का का लाभ होए, किसानन के कितना ज्यादा बचत होए, उनके जो आर्थिक रूप से उनके काफी लाभ होए, और रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करी, जीवाणु खाद को प्रयोग करी तो उनकर खेती भी सुरक्षित और स्वास्थ्यकारी हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भैया एक बात और कही कि खाद के बातचीत तो होते ही बा, और जौन यहाँ सब गर्मी के समय बा ना, तो आवे वाले जौन बाग बागवानी लोग लगावत हैं तो ओकर तैयारी भी ही समय होत खेत।
2: यही समय भैया गड्ढा उड्ढा देखा खोद के पूरी तैयारी कर लें, पहले तो विचार बना लें कि भैया हो कौने तरह का पौध उनके लगावे के हो। फल वाला भैया तो फल वाला लें, लकड़ी के लिए लगाओगे तो लकड़ी वाला लें। भैया बहुत तरह का अब तक देखा पौध हुआ हो कि जैसन तुहार जरूरत बा वही तरह से आप चुनाव करा।
1: बहुत सही जानकारी दिया भैया।

0: अच्छा, आओ अपने किसानन का आखिर निर्गुण सुनावा जाए,
1: बिल्कुल
0: तब
1: बिल्कुल
0: फिर बात बात कही होए।
1: तो बिल्कुल भैया
0: तो कप्तान भारतीय और साथी के निर्गुण बा, तो ये सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: भैया देखा, कप्तान भारतीय और साथी का बड़ा बढ़िया निर्गुण रहा और अपने किसान भाई से एक ही बातचीत कहे के बाद कि अगर कोनो प्रतिक्रिया हो अपने हमरे संघ के पंचायत घर संबंधित तो वो सलाह दे सकते हैं। हम लोग 800-4926-2500 पे पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उनकर प्रतिक्रिया हम अपने कार्यक्रम में शामिल करब। तो भैया चला चली के बेला हो गया,
1: किसान भैया से विदा लेवल जाए।
0: हाँ विदा लेवल जाए।
1: अच्छा तो पंचो
0: राम राम, राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशगान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
1: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन

0: की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि

0: और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
1: जी, बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है, बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है।
0: बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
2: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाएं, जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना जुड़े।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी DGP मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति CMO के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का CMO बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का CMO बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर GP गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
3: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्याऊ और धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
0: वाराणसी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। IPL 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। RCB ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा की अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के

0: शहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दिनेश भारती का लिखा नाटक पन्हारू की अम्मा। आइए सुनिए।
2: अरे हम कोई ताड़ के पेड़ पर बैठे ताड़ी उतार रहे हैं क्या जी?
3: जो तुम्हारी आंखों के बाइस्कोप में नजर नहीं आ रहे, देखती नहीं, तुम्हारे सामने ही बैठे अपनी बल्ली की फटी जेब सी रहे
4: हैं। सुनिए जी, रेडियो पर खबर दिया था, वो क्या बोलते हैं, बैट बल्ला खेले वाला जोगिंदरवा विरोधी पार्टी का नेता बन गया है जी।
3: जोगिंदरा? अरे इतने मशहूर खिलाड़ी को
2: जोगिंदरा फोगिंदरा बोलते तुमको शर्म आनी चाहिए पनारू की माई। वो भी कोई तुम्हारे छपरा वाले चाचा के खेत का चरवाहा बनवाए क्या?
4: अरे हमको का लेना देना नामूम से जी। हम तो ये कह रहे थे जैसे वो क्रिकेट खेलते खेलते रिटायर होकर नेता बन सकेला, तो रउआ नौकरी से रिटायर होकर नेता काहे नहीं बन सकेला।
3: आहे? तुम्हारी खोपड़ी की वायरिंग में आज एसी डीसी करंट एक साथ है कैसे दौड़ने लगा भाई? कोई नया फॉरेन ट्रांसफार्मर फिट करवा लिया है? जितने लोग नौकरी से रिटायर हो जाते हैं क्या सब नेता बन जाते हैं?
4: जब रउआ के पास फटी ही बंडी सीए के छोर और कोनो काम नहीं है तो नेतागिरी करने में क्या प्रॉब्लम है? नेताजी बन जाएंगे तो रेडियो पर बोलेंगे, टेलीविजन में लौकेंगे, दुकान और स्कूल का उद्घाटन करेंगे, झउआ भर माला पहनेंगे, और जब चाहे गेहूँ चाउर सस्ता कर देंगे, और जब चाहे टैक्स लगा के महंगा कर देंगे, और गवर्नमेंट में रहेंगे तो देश चलाएंगे, और विरोधी पार्टी में रहेंगे तो देश बचाएंगे। अरे बिजी है बिजी रहेंगे जी। अब भला ये बंडी सीए के फुर्सत रहेगा आपको?
3: हे भगवान, किस फ्यूज वायर को मेरी जिंदगी के टेबल लैंप पे लगा दिया है तुमने? महीने भर की कमाई मिनटों में उड़ा देती है, लेकिन खोपड़ी का दिमाग खर्च करने में रेलवे ट्रेन की तरह 10-10 घंटे लेट हो जाती है। अरे मेरी गुड़हल गंज की गुलाबो, नेता बनने के लिए आदमी को सिर्फ नौकरी से रिटायर ही नहीं होना चाहिए, देश और समाज में मशहूर भी होना चाहिए। सिनेमा का एक्टर हो, नामी गिरामी पहलवान हो, या बिना मोर मुकुट का राजा हो, माने कि जनता उसको जानती हो, वरना उसको वोट कौन देगा?
4: वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ हमको डैम फूल काहे बनाते हैं जी? ये तुम्हारे वो का नाम बोले थे, हाँ जोगिंदर जगन्नाथ, कोनो सिनेमा का एक्टर है, अखाड़े का पहलवान है, ये राजा दीवान रहे जो दन्न से नेता बन गया।
3: अरे अरे वो मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी थे भाई, सारी दुनिया उनको जानती थी। मैंने क्रिकेट तो क्या गुल्ली डंडा भी कभी नहीं खेला।
4: सब आदमी अभी मन्नू की तरह पेट में सब कुछ सीखिए के जन्म लेता है का? रउआ भी तो पहले कमीज का बटन टांगना नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे बंडी का जेब तक सीना सीख लिए हैं। नहीं बोलिए।
3: तुम्हारा मतलब है कि अब मैं इस बुढ़ापे में क्रिकेट खेलना सीखूं, उसके बाद नेता बनूं?
4: आओ नहीं तो का, क्रिकेट हम खेलूंगी और नेता आप बनिएगा। देखिए आपको बाइस्कोपुआ का एक्टर तो कोई बनाएगा नहीं, अखाड़ा का पहलवानी आपके बूते का नहीं, और राजा दीवान आपके सात पुरखों के पुरखे भी जन्म में नहीं रहे, तो वो आप कहाँ से हो जाएंगे? और ले दे के नेता बने के बाद

0: अब क्रिकेट वाला ही रास्ता बचा है। रिटायर होके दिन भर घर में खाली अखबार किताब तो चाटते रहते हैं, और टोला के छोकरन के साथ रोज 2-4 हाथ क्रिकेट खेलेंगे तो हफ्ता 10 दिन में कुछ ना कुछ तो आइए जाएगा। अब फिर क्रिकेट छोड़ के नेता बन जाइएगा।
1: हे प्रभु, इस स्वयंभू विचारक को सन्मार्ग दिखाओ। आपने तो त्रेता और द्वापर युग के बड़े बड़े मूर्खों को दिन में तारे दिखा दिए थे। इस कलयुगी कम अकल को दिन में तारा न सही तो रात में मिट्टी के तेल की ढीपरी ही दिखा दो। ज्ञान का रास्ता 1-2 मीटर तो साफ दिखाई देगा इसे। अरे पनारू की अम्मा, मुझ कमबख्त को कौन नेता बनाएगा भाई?
0: काहे नहीं बनाएगा, जब हम तुमको अपना पति बना सकती हूँ तो पार्टी वाला तुमको अपना नेता काहे नहीं बनाएगा।
1: अरे भगवान, मुझ जैसों को कोई बेवकूफी होगा जो नेता बनाएगा?
0: अरे तो हम ई कब कहते हैं जी कि समझदार आपको नेता बनाए। अरे कौनो बनाए, नेता तो नेते हुए होता है। चलिए अब क्रिकेट खेलने की तैयारी तो कीजिए जी।
1: अरे अरे, अपने माई बाहू की पहले उठी गुलाबो, क्यों अपने इस इकलौते पति को शहजादा सलीम की तरह तोप के सामने बांधने पर अटक गई हो भाई? जरा मेरी उम्र, मेरी सेहत, मेरी आंख के चश्मे के बढ़ते हुए नंबर को तो ख्याल करो।
0: अरे उसी का तो सोच कर आपको नेता बनने को कहते हैं जी, नहीं तो थाने का दरोगा, अब फौज का कप्तान, हवाई जहाज का ड्राइवर नहीं बनने को कहती। जरा सोचिए, देश विदेश का ना सही, मुहल्ला के ही नेता बन जाएंगे तो रउआ का लोग माटी की फूटो ही कराही समझना छोड़ के स्टील का भगोना समझने लगेंगे। आज जो छदम चिया रउआ के एक वीडियो उधार नहीं देता तो महीने का पूरा राशन पानी मुफ्त में डेरा पर पहुंचाएगा। और जिधर से निकलिएगा लोग रउआ के नेताजी नमस्ते नेताजी नमस्ते, और हमको नेताइन जी पाए लागे कहेंगे। चलिए चलिए उठिए ना, क्रिकेट खेलने के वास्ते तैयार हो जाइए। अरे हम हूं ना, बाकी सब देख लूंगी। तू रोज टोला के लड़कन के साथ क्रिकेट खेलता है नू?
2: कसम से अम्मा, अब पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट कभी नहीं खेलूंगा।
0: कहे नहीं खेलेगा, आज से तू रोज क्रिकेट खेलेगा, रोज खेलेगा, और साथ में अपने बाबूजी को भी खिलाएगा।
2: बाबूजी को क्रिकेट
0: का रे पनारू, ये प्रेशर कुकर के भाप के जैसा मुंह से फिस फिस हंसी कहाँ निकालता रे चचुंदर?
2: तुम बात ही ऐसी करती हो अम्मा, बाबूजी इस उम्र में क्रिकेट खेल पाएंगे?
0: आए काहे नहीं खेल पाएंगे, तू उनका बेटवा होकर क्रिकेट खेल सकता है तो वो तेरा बाप होकर क्रिकेट काहे नहीं खेल सकता है। हम टेलीविजनवा में हमेशा देखती हूँ नू, एक से एक दाढ़ी मूछ वाला लोग क्रिकेट खेलता है हाली हाली।
2: लेकिन बाबूजी के उम्र के लोग क्रिकेट से बहुत पहले ही संन्यास ले चुके होते हैं अम्मा।
0: मूछौसा, संन्यास ले इनके दुश्मन, ये काहे हमरे रहते संन्यास बन्यास लेंगे। कान खोल के सुन ले, अगर अपने बाबूजी को तूने क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया तो आज से तेरा भी क्रिकेट सिरकेट हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। अरे आप तो मुंह से कुछ बोलिए ना, मुंह कंट्रोल की दुकान की तरह बंद किए काहे बैठे हैं?
1: मैं तो अब आखिरी बार ही बोलूंगा परारू की अम्मा।
0: जो मुंह में आता है सुरती जैसा थूक देते हैं। मरे छटाक छटाक भर के लड़का दिन भर में 1 घंटा रोज क्रिकेट खेलते हैं, और एगो आप हैं जो क्रिकेट खेलने के नाम पर चेहरा लटका के बैठे हैं।
2: चलिए बाबूजी।
1: चुप है, माँ ने पीठ पर हाथ रखा नहीं कि लगा बाप का ही गुरु बनने है। मेरे बाप ने भी कभी क्रिकेट खेला था।
2: वही तो मैं अम्मा को समझा रहा था, लेकिन अम्मा आपको क्रिकेट प्लेयर ही बनाना चाहती हैं, तो मैं क्या करूं?
1: पता नहीं किस कमबख्त ने ये क्रिकेट जैसा मनहूस खेल बनाकर मेरे जी का जंजाल पैदा कर दिया।
0: अरे अब जाइए ना, क्रिकेट खेलने से इतना डरते काहे हैं जी? हम हैं नू, हम भी मैदान में रउआ के साथ रहेंगे। बस चल रहे पनरुआ, अपना बैट बल्ला निकाल रहे छछुंदरा। हम तनी पाउडर लिपस्टिक लगा के आती हूँ, अब बाहर भूतनी जैसन थोड़े ही जाएंगे।
1: अरे जब तुम माँ बेटा मेरा जनाजा ही निकलवाने जा रहे हो तो उसके लिए मेकअप करने की क्या जरूरत है? अपने बेटे से बोलो कि बैट बल्ले के साथ हाथ और मुंह पर बांधने वाला सामान भी लेता है।
0: हाँ।

0: बाप, हाथ पैरों मुंह पर बांधने वाला सामान। अरे वह क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं कि लड़ाई के मैदान में जंग जीतने? हाथ पैर मुंह पर जीरा बख्तर बांध के का करेंगे जी? टोला मोहल्ला वाला का कहेंगे?
1: अरे भाई, क्रिकेट खेलते वक्त अपने हाथ पैर मुंह की सुरक्षा के लिए ये सब पहना जाता है। एक तो नाकाम आशिक के हाथ में तलवार दे रही हो, ऊपर से गर्दन बचाने के लिए ढाल भी नहीं देना चाहती।
0: अच्छा अच्छा रिसिया, ये नहीं ना। अरे पनरुआ, अब बैट बल्ला के साथ अपने बाबूजी का हाथ पैर और मुंह बांधने वाला सामनवा भी लेते आना।
2: लीजिए बाबूजी, आप अपना बल्ला पकड़कर यहाँ स्टंप के सामने इस तरह खड़े हो जाइए, मैं गली में खड़ा हो जाता हूँ।
0: अरे तू गली में जाके खड़ा हो जाएगा तो तेरा बाबूजी को खिलाएगा कौन रे?
2: ओहो अम्मा, गली से मतलब मकान गली थोड़ा ही होता है। गली कवर एक्स्ट्रा कवर सब क्रिकेट में फील्डिंग की पोजीशन होती है। तुमको ऐसा समझ में नहीं आएगा हा? और तुम यहाँ कहाँ खड़ी हो? विकेट से दूर वहाँ फील्ड दबा जाकर खड़ी हो। सभी लोग जैसा बताया था फील्ड में अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हो जाएं। सुरेंद्र तू बॉलिंग करेगा, मैं गली में खड़ा होता हूँ।
1: नहीं नहीं, गेंद तू फेंक, गली कूचे में अपने साथियों को खड़ा कर। ठेला की तरह गेंद फेंकता है सुरेंद्र।
2: ठीक है, आपको पहला ओवर मैं ही फेंकता हूँ। यस रेडी?
1: नॉट रेडी। मुझे अपनी वो उछल कूद कर फेंकने वाली गेंद मत खिलाना। अरे लुड़कौवा गेंद फेंकना समझा?
2: लुड़कौवा गेंद? माने गेंद आपकी तरफ लुड़का लूं?
1: और नहीं तो क्या मेरा सिर फोड़ेगा
2: क्या बाबूजी? अच्छा ठीक है, आपके लिए पहली गेंद लुड़का के ही फेंकता हूँ, लेकिन दूसरी गेंद उल्टा फेंकूंगा, संभालिएगा बाबूजी। ये क्या बाबूजी, आपने गेंद मारने के बजाय अपना बल्ला ही बाउंड्री फेंक दिया।
1: अबे अबे, मार तो मैं गेंद को ही रहा था, मगर ससुरी गेंद यहीं रह गई और बल्ला हाथ से छूट कर वहां जा गिरा। जा अबे जाकर बल्ला उठा ला।
2: क्या बाबूजी, आपके साथ खेलने में गेंद उठाने के बजाय आपका बल्ला उठाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। लीजिए पकड़िए बल्ला, लेकिन इस बार मैं लुकौवा सरकौवा गेंद नहीं फुल टॉस बॉलिंग करूंगा। एक तो सर से पांव तो पैड और मास्क सब पहने, ऊपर से इतना डरते हैं।
1: कौन डरता है बे? ले उतारे देता हूँ तेरा ये पैड सेट, अब खिला अपनी कलाबाजी वाली गेंद। जब ओखली में सर डाल ही दिया तो डरना क्या?
2: ये हुई ना बात, संभालिए गेंद।
1: अरे अरे बाप रे, मर गया मर गया।
3: क्या हुआ जी?
1: अरे टांग गई और क्या हुआ? मर गया।
2: अरे बाबूजी के टांग से तो खून निकल रहा है अम्मा।
1: अबे अबे आदमी की टूटी हुई टांग से खून नहीं तो क्या नाली का कीचड़ बहेगा कबाड़? इतनी जोर से गेंद क्यों फेंकी तूने?
2: तो आपको किसने कहा था गेंद बल्ले के बजाय पैर से रोकने के लिए?
1: पलारू की अम्मा, अब मैं तुम्हारा नेता कैसे बनूंगा?
0: अरे भार में गए नेता सेता बनना जी, हमको क्या पता था कि ससुर क्रिकेट में इतना खराब खेल होता है। अपना रू आज जल्दी से रिक्शा बुला रहे थे चुंदरा, अब बाबूजी को अस्पताल ले चलना है। हाय बाप, कितना खून बाहर जा रहा है।
1: बड़े बेआबरू होकर क्रिकेट मैदान

बनहारू की अम्मा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिनेश भारती का लिखा ये नाटक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे श्री प्रकाश वाजपेयी, रूपम नारायण पांडे और विजयेंद्र। प्रस्तुति मधुर श्रीवास्तव की थी और प्रस्तुति सहायक थे विनोद कुमार गौड़।

यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं मुक्ति शर्मा। इनके स्वर में हम आपको भजन और गीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं ललित किशोर के इस भजन के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारी कलाकार हैं मुक्ति शर्मा। ललित किशोर के लिखे इस भजन के बाद प्रोग्राम के आखिर में इनके स्वर में आइए सुनते हैं मदन शास्त्री का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी मुक्ति शर्मा के स्वर में गीत और भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुति कार्यक्रम चिट्ठी आई है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत कर

0: चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को वंदा राठौर का नमस्कार। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत से संदेश आपके हम तक पहुंच चुके हैं और आपके संदेशों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार।
1: नमस्कार वंदना जी, सुधीर श्रोताओं आप सभी को नमस्कार और अभिनंदन।
0: नेहा जी
1: जी,
0: आज मुझे लग रहा है कि कुछ खास होने वाला है।
1: खास मतलब?
0: मतलब ये कि बड़ा ही विश्लेषणात्मक जो पत्र है, संदेश है, हमारे श्रोताओं ने हम तक भेजा है, तो हो सकता है कि पत्रों की संख्या कुछ कम हो जाए।
1: हाँ।
0: क्योंकि इतने लगन से, मनोयोग से हमारे श्रोताओं ने हमको याद किया है
1: जी,
0: और इतना प्यार घुला है।
1: हाँ।
0: कि जी चाह रहा कि हम उनके एक एक शब्द को श्रोताओं के साथ साझा करें, तो इजाजत है?
1: जरूर।
0: तो ये देखिए, जो पहला संदेश हमें भेज रहे हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर जनार्दन प्रसाद पांडे मणि जी, जो कि हमें प्रयागराज से संदेश भेज रहे हैं अपना। और मणि जी का कहना है, 26 मई को महाभारत की शाश्वती स्थिति पर डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी की वार्ता संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनी। वार्ता नितांत वैदुष्य पूर्ण रही। ऐसे ही हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत उसमें डॉक्टर वंदना शुक्ला की कविताएं सुनी, हृदय आह्लादित हो गया। और नेहा जी और वंदना जी, आप दोनों द्वारा प्रस्तुत बोलते नगमे में श्रोताओं की भिन्न भिन्न रुचियों को ध्यान में रखकर गीत गजल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दो गजलें मुझे बेहद प्रभावित कर गईं, तन्हा ना अपने आप को अब जानिए जनाब, और दूसरी है मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। ये दोनों गजलें नितांत मार्मिक हैं। इन्हें सुनकर साहित्यिक आनंद का अनुभव हुआ। साहित्य का प्रोफेसर होने के कारण कविता की गंभीर काव्य शास्त्रीय समीक्षा तो मैं करता ही हूँ, किंतु आप दोनों का विश्लेषण तथा व्याख्या का अंदाज बेजोड़ होता है। इस संदर्भ में गालिब साहब का एक शेर याद आता है, हैं और इस दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और आप लोगों के अंदाज का मैं घोर प्रशंसक बन चुका हूँ। ऐसे ही चहकते हुए कविताओं को श्रोताओं के सामने परोसिए, कार्यक्रम का आकर्षण बढ़ता रहे। ये जनार्दन प्रसाद मणि जी का है कहना।
1: सर प्रणाम, बहुत सुंदर लगा कि आपका पत्र जब हमें प्राप्त हुआ, हम लोगों ने पढ़ा। सच कहूँ, जब आपका पत्र आता है तो हम लोग उसे बड़े इत्मीनान से, जैसे कोई किताब पढ़ता है ना, आंकलन करता है कि क्या सच्चाई बयां की गई है, उसको अपनाता है, लिखता है, संजोता है। वैसे ही हम लोग भी आप सभी सुधीर श्रोताओं के पत्रों को पढ़ते हैं। अच्छा लगता है जब हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले हिंदी कार्यक्रम, संस्कृत कार्यक्रम, जिसमें डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी जी और वंदना शुक्ला जी का आना हुआ था, उन लोगों ने बहुत सुंदर पेशगी की थी। आपको भी पसंद आया, बहुत सारे श्रोताओं को अच्छा लगा। बोलते हैं नगमे, जो आप कह रहे हैं कि आपका और वंदना जी का जो अंदाजे बयां है वो बड़ा यूनिक है और दिल को छूता है। सच कहूँ तो शायद ये जादू गीतकारों के बोल में है, जो संगीतकारों ने संगीत दिया, जिन्होंने गाया, एक्टिंग की, और जब उनके जादू को हम और वंदना जी बैठकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि परत दर परत वो जादू घुल सा रहा है इस मन मस्तिष्क में। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप सभी के सामने उस जादू को धीरे धीरे खोलते हैं। शुक्रिया सर। इसी तरह हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़िए। आपका पत्र तो बहुत खास होता है और सच में वंदना जी ने जो बात कही कि बहुत खास होने वाला है ये एपिसोड, तो मैं समझ नहीं पा रही थी उस समय कि क्या कहना चाह रही हैं, तो अब वो जो राज है वो खुल गया है। शुक्रिया आपका जी।
0: और नेहा जी, अपने ढेर सारे उद्गार बड़ी आत्मीयता के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं पारितोष कुमार साहू जी, जिन्होंने हमें लखनऊ से ये अपना संदेश भेजा है। पारितोष जी ने के राशि कुमार जी की वार्ता सुनी थी जो कि अंग्रेजी में थी। तो ये कहते हैं कि राशि जी, आपने आकाशवाणी की स्थापना से लेकर आज तक के इसके गौरवशाली 90 वर्षों के सफर पर साल दर साल जिस प्रकार से चीजों का जिक्र किया वो काबिले तारीफ है। देश की आजादी से लेकर हरित क्रांति

0: क्रांति, भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश के निर्माण में आकाशवाणी की भूमिका का उल्लेख आपने करके और इसे सुंदर बना दिया। आकाशवाणी का जिक्र हो और अमीन साहब और उनके द्वारा प्रस्तुत गीतमाला का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आकाशवाणी के पास गीतमाला है तो वहीं दूसरी ओर फौजी भाइयों के लिए जयमाला भी है, और तो और बच्चन साहब की आवाज में मधुशाला भी आकाशवाणी के ही पास है। आकाशवाणी ने हिंदी फिल्मी गीतों को जन जन तक पहुंचाया है। हिंदी फिल्मी गीत ही क्यों, आकाशवाणी ने समाचारों, घटनाओं, सूचनाओं और तमाम प्रकार के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। हम जैसे प्रतियोगी छात्रों के करियर में काफी मदद भी की है। आज भी अपनी भाषा को और सुंदर बनाने के लिए बहुत से सेलिब्रिटीज आकाशवाणी ही सुनते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसके नामकरण यानी आकाशवाणी नाम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जिक्र आपने किया वो अपने आप में गौरवशाली बना देता है। गौरवशाली है आकाशवाणी और गौरवशाली बनाती है इससे जुड़ी हुई महान विभूतियाँ जैसे तलत महमूद, मदन मोहन, बेगम अख्तर, कब्बन मिर्जा और तमाम लोग जिनका हम यहाँ उल्लेख करना भूल रहे हैं। आकाशवाणी के नए स्वरूप FM के आने के बाद इसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है। आज आकाशवाणी ग्रामीण भारत में ही नहीं अपितु शहरी क्षेत्रों में भी काफी लोकप्रिय हुई है। आपके इस कार्यक्रम पर हमारी प्रतिक्रिया और लंबी ना हो इसका भी ध्यान रखना है, और अंत में आकाशवाणी के लिए ये कहेंगे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त परिवारजन को आकाशवाणी से जो संबंधित है पुनः बधाई और साधुवाद।
1: बहुत शुक्रिया पारितोष जी, आप ये पत्र लखनऊ से लिख रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये प्रोग्राम लखनऊ में ऐप के माध्यम से, जो कि न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी प्रयागराज का एक आइकन है, उस माध्यम से सुना होगा आपने। और डॉक्टर के राशि कुमार जी आकाशवाणी प्रयागराज से बहुत वर्षों से जुड़ी रही हैं। कई विषयों पर हमने और डॉक्टर के राशि कुमार जी ने, आशुतोष सुंदरम जी ने साथ में काम किया है, और उस कार्य के पहलू का असर ये हुआ है कि जैसे देखिए आपका पत्र आया, ऐसे कई श्रोता उनके जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सीखते भी हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है पारितोष जी कि आपने वार्ता सुनी जो कि इंग्लिश कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित हुआ है, और इस कार्यक्रम के जो इंचार्ज हैं दीपक राय जी, आपने पूरा का पूरा सटीक विवरण भेजा है। इससे लगता है कि कितने ध्यानपूर्वक आपने इस कार्यक्रम को सुना है। बहुत शुक्रिया आपका पारितोषी। तो इसी तरह लखनऊ में बैठे वारिस अली खान साहब भी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनते हैं। शायद वंदना जी उनकी कोई चिट्ठी भी पढ़े, अभी मुझे पता नहीं वो सिर्फ हंस रही हैं। आगे देखते हैं कि आखिर किन किन श्रोताओं के पत्र हैं।
0: नेहा जी, अभी जी। तो फिलहाल नीरा त्रिपाठी जी का एक संदेश नजर आ रहा है जो कि अशोकनगर प्रयागराज से इन्होंने लिखा है, और इन्होंने भी अपने लगाव जुड़ाव की बात खासतौर पर आकाशवाणी प्रयागराज से है, उसको कुछ इस तरह से बयां किया है कि बात तक की है जब मैंने आकाशवाणी के गृहलक्ष्मी प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति दी थी और मैं इस बात से बहुत खुश थी कि इसके साथ मुझे पैसे भी मिलेंगे और जब 350 रुपये का चेक आया उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने पहले उस चेक को पूजा घर में रखा, फिर मंदिर गई। क्या खुशी थी, उस टाइम मोबाइल कम थे, तब पुराने वाले फ़ोन से सबको परिवार में बताया। सच, उस 350 रुपए की खुशी ने हमको आत्मनिर्भर बना दिया, और अब मैं कितना भी कुछ पालूं लेकिन जो जीवन की पहली कमाई मेरी रही है वो खुशियों की फुलवारी जो थी वो चार चांद आज भी लगाती है मेरी यादों को। और साथ ही साथ बोलते नगमे कार्यक्रम नेहा जी बहुत पसंद आया है 27 मई का नीरा त्रिपाठी जी को, और वो कहती हैं कि आप लोगों का जो बताने का अंदाज होता है वो कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। हर एपिसोड लगता है कि कुछ नया, कुछ कमाल कर गया है, और आधा घंटा धमाल ही मचा देती हैं आप लोग मन खुश हो जाता है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी टीम को।
1: नीरा जी और सभी सुधी श्रोताओं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आकाशवाणी से जुड़ाव का जो आप सभी के जहन में वो स्मृतियां हैं वो आप सभी साझा कर रहे हैं। वो जो चेक होता है ना नीरा जी, जो आप कह रही हैं कि पहली कमाई आत्मनिर्भर होने का एहसास करा देना, सच कहूँ सुधीर श्रोताओं, इस नौकरी में आने से पहले मैं भी इस

0: केंद्र के साथ इसी तरह से जुड़ी हुई थी। मुझे याद है कि जो वो चेक मिलता था ना, पता नहीं कितनी सारी प्लानिंग हो जाती है ना। नीरा जी, आपने भी बड़ी प्लानिंग की होगी,
1: जी
0: जैसे आपने पूजा घर में रखा, फिर सबको बताया, वैसे ही हम सभी के साथ होता है। पता नहीं आपकी संस्था में ही कुछ है ऐसा, तो आप सभी की स्मृतियाँ इसी तरह से मधुर हों। सभी लोग इस केंद्र से जुड़िए, पत्र लिखिए, बड़ा अच्छा लगता है। शुक्रिया।
1: और नेहा जी, ये हमें संदेश भेजा है मुट्ठीगंज प्रयागराज से, और ये है अनंत। और अनंत जी कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। पढ़ाई के बीच में समय निकाल के कार्यक्रम सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। ख़ास तौर पर मुझे सबसे जो मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है वो हेलो फरमाइश है, व्हाट्सएप फरमाइश गीत है, जिस पर मैं अपनी पसंद के गाने सुन भी लेता हूँ कभी कभी। तो इसके लिए इन्होंने मधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रेषित किया है।
0: जी अनंत जी, ये कितनी अच्छी बात है मधु जी के लिए, हमारे केंद्र के लिए, कि जब हम एक खास समय निकालते हैं कि नहीं मुझे ये प्रोग्राम सुनना है, अपना नाम सुनना है, अपनी पसंद के गीत सुनने हैं, वो भी रेडियो सेट के माध्यम से, ये जो आप कह रहे हैं कि मन एकदम फ्रेश हो जाता है, ताज़ा सा हम महसूस करने लगते हैं। हमारी कोशिश होती है सुधीर श्रोताओं कि हम लोगों का जो ध्यान है वो सुंदर और कहते हैं ना सार्थक चीज़ों की ओर आकृष्ट करें, ताकि जीवन की सुंदरता सभी लोग देख सकें। शुक्रिया अनंत जी आपका।
1: निखिल त्रिपाठी जी हैं, कुंडा निवासी हैं,
0: जी
1: और इनका कहना है कि पंचायत घर कार्यक्रम इनका पसंदीदा कार्यक्रम है। और ये कहते हैं कि हेलो पंचायत कार्यक्रम भी सुनते हैं तो इन्हें बहुत पसंद आ रहा है। और इन्होंने एक बात ये कही है,
0: जी
1: रिक्वेस्ट अपनी भेजी
0: हाँ हाँ
1: है
0: जी
1: कि किसी कृषि जो वैज्ञानिक हैं या विशेषज्ञ हैं उनको अपने कार्यक्रम में बुलाएं, और उनसे उन्नत पैदावार खेती की कैसे बढ़ाई जाए, उर्वरा शक्ति, उस विषय पर बातचीत करवाएं, जिससे कि हम किसानों को लाभ पहुंचे।
0: निखिल त्रिपाठी जी, अच्छा लग रहा है। पता है आपको, अभी आप जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, चिट्ठी आई है रविवार को 8 बजे लगभग सुन रहे हैं हम, और वंदना जी इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग फ्राइडे को कर रहे हैं, और अभी से कुछ समय पहले ही अभिनव प्रज्ञा पांडे जी, जो इस कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, बात हो रही थी हेलो पंचायत घर के बारे में और इन विषयों पर। ऐसा लगता है ना कि कोई टेलीपैथी है श्रोताओं से हम लोगों की हम लोग कुछ समय पहले ही इस पर बात कर रहे थे कि कुछ इस तरह के विषय शामिल किए जाए, और हम मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपका पत्र वंदना जी पढ़ेंगी और पत्र में ये बात लिखी होगी। शुक्रिया आपका निखिल जी, ध्यान ज़रूर रखेंगे।
1: और नेहा जी, माधुरी कुशवाहा जी कोठा पाठशाह प्रयागराज से हमें संदेश भेज रही हैं, और इन्होंने भी 20 मई का बोलते नगमे कार्यक्रम सुना था, इन्हें बहुत पसंद आया है। ये कार्यक्रम दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है, लोकप्रिय होता जा रहा है, और आप लोग भी इसमें बहुत मेहनत करते हैं, तो खूबसूरत और सुकून देने वाले कार्यक्रम के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: माधुरी कुशवाहा जी, मैं सच कहूँ, आपने बोलते नगमे का जिक्र किया है, अच्छा लगा आपको, बहुत शुक्रिया। तो यूं ही कार्यक्रम सुनते रहिए, प्रतिक्रिया भेजिए, अच्छा लगेगा। शुक्रिया आपका।
1: और नेहा जी, कुछ संदेश हम सोशल मीडिया के ज़रिए ले रहे हैं, और ये कहती हैं, यशस्वी जी हैं, ये प्रयागराज से हमें संदेश भेज रही हैं, इन्हें हमारा प्रोग्राम गृहलक्ष्मी बहुत पसंद आता है। और विजय चित्तौरी जी हैं, ये कहते हैं कि पत्रकारिता के विविध आयामों पर जो रोचक जानकारी ये बातचीत सुनवाई गई थी 8:30 बजे, वो बहुत अच्छी लगी। और नेहा जी,
0: जी
1: आपने वारिस अली खान साहब का जिक्र किया था
0: जी
1: तो देखिए, उन्होंने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है कि बोलते नगमे कार्यक्रम वो बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं।
0: जी
1: और हमसे जुड़ रहे हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और विवेक कुमार सत्यांशु, राम कुमार रेवाड़ जी।
0: बहुत शुक्रिया आप सभी सुधीर श्रोताओं का, जिन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को पसंद किया है, सराहा है और सुझाव भी भेजा है।
1: तो श्रोताओं, अब समय आ गया है कि हम बताएं आपको अपना पता। लिखिए, हमारा पता कार्यक्रम चिट्ठी आई है, द्वारा केंद्र निदेशक 7-9 दयानंद मार्ग, आकाशवाणी प्रयागराज। हमारा पिन कोड नंबर है 211001, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो दोस्तों, हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार, और अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी आपके पत्रों और सुझावों पर आधारित विशेष कार्यक्रम चिट्ठी आई है। ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत कर रही थी नेहा गुप्ता और वंदना राठौर।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 31 मई यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, पर इस सुहाने सफर को हम खुद ही धुएं में क्यों उड़ा देते हैं। धूम्रपान की लत और फिर उम्र भर की सजा।

श्रोताओं, ये हैं देवानंद साहब जो कह रहे हैं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, पर फिक्र धुएं में नहीं उड़ती। फिक्र धुएं में बिल्कुल नहीं उड़ती दोस्तों, धुएं में तो सेहत उड़ जाती है, अपनों का साथ छूट जाता है।

आज के दिन एक वादा खुद से भी कीजिए कि जिंदगी का साथ निभाएंगे पर तंबाकू का नहीं। सांसों को महकने दीजिए, धुएं में मत घुटने दीजिए। इसी सोच के साथ आप सुन रहे हैं इस वक्त अपने रेडियो सेट के जरिए साहिर लुधियानवी की रचना, जयदेव के संगीत निर्देशन में इस गाने को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने।

किशोरदा की आवाज हर बार दिल को छू जाती है। सच ही तो है, पल भर का ये जीवन है, पर हम करते क्या है, इस कीमती पल को धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन में लगा देती है।

तंबाकू निषेध दिवस हमें याद दिलाता है कि जो पल बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा। कैंसर, दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ, ये सब तंबाकू के तोहफे हैं। क्या हम ये तोहफे अपने परिवार को देना चाहेंगे?

गुलजार साहब ने कितनी खूबसूरत बात कही है, पल भर में ये दिल धड़कना भूल जाएगा, पल भर में ये आंखें सो जाएंगी, तो क्यों ना ये पल हम खुलकर जिए, बिना किसी धुएं के, बिना किसी नशे के।

श्रोताओं, तंबाकू छोड़ना कोई इम्तिहान से कम नहीं। आदत बहुत पुरानी है, लत बहुत गहरी है, पर याद रखिए, रुक जाना नहीं तो कहीं हार की, कांटों पे चल के मिलेंगी साई बहार की।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक मौका है खुद को जीतने का। पहली बार में हार मान गए तो क्या हुआ, फिर कोशिश कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, परिवार का साथ लीजिए और हिम्मत कभी मत हारिए।

क्योंकि जब आप तंबाकू छोड़ते हैं 20 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, 48 घंटे में सूंघने चखने की शक्ति लौट आती है, एक साल में दिल के दौरे का खतरा लगभग आधा हो जाता है। ये हैं बाहर साई की।

श्रोताओं, इस प्रोग्राम के तहत हमने आपको जिन फिल्मों की गानी सुनवाई उनकी नाम थी हम दोनों, आने वाला पल, ये गाने के बोल, फिल्म का नाम गोलमाल, इम्तिहान और अंदाज। इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त करने की अपने दोस्त संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत कार्यक्रम आज इतवार है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम सुनाने जा रहे हैं अभिलाष नारायण के लिखे जल की पासपोर्ट साइज फोटो।
1: आइए सुनते हैं अभिलाष नारायण की लिखी जल की पासपोर्ट साइज फोटो। प्रस्तुति है मोहम्मद शमीम की।

0: सुनो, अब मुझे देर हो रही है, टिफिन तैयार है कि नहीं?
1: ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ, बस दो मिनट।
0: माँ, कल जो तुमने मटर की कचौड़ी बनाई थी, मेरी सहेलियों ने खूब खाई। वैसे आज क्या है माँ?
1: ले, आज पाव भाजी है, पर सारा अपनी सहेलियों को हिम्मत खिला देना, कुछ तुम भी खा लेना।
0: अरे रामू, भांग वांग खा रखी है क्या? एक ही जगह पोछे जा रहे हो तब से।
2: अरे नहीं बीबी जी, एकाई चमकावत रहे, देखो सफा भवा की नहीं।
0: वैसे रामू, कल मैंने तुमसे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लाने को कहा था, लाए?
2: हाँ बीबी जी, लाए है ना। ये ले।
0: ये क्या, किसकी फोटो उठा लाए हो? और ये इतनी बड़ी है, मेरी पासपोर्ट साइज में थी।
2: यही तो है पासपोर्ट साइज, हम देखा रहा साहेब के पासपोर्ट, इतने बड़ा रहा।
0: अरे मूर्ख राज, पासपोर्ट साइज फोटो छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं।
2: अरे वो हमें छोट छोट फोटो देत रहा, हम कहा कि हमें इतने बड़ा चाहिए, वो भीतर गवा, फिर 15 मिनट तक बहिरने आवा, ता हम ओकरे काउंटर से ये पासपोर्ट साइज फोटो उठा लिया है। देखो सुंदर है ना।
0: हे भगवान, कल फॉर्म भरने का आखिरी दिन है रामू, देखो किसी भी हालत में मुझे आज शाम तक मेरी फोटो चाहिए, समझे? ये ले जाओ और इसे बदल कर ले आओ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम तक मुझे फोटो चाहिए।
2: अरे ठीक है बीबी जी, हो जाई। अरे अजीब तमाशा है भाई, ये पासपोर्ट इतना बड़ा और पासपोर्ट साइज फोटो बस इतना छोटा। अब एक काम और बढ़ा, संझा तक फोटो चाहिए। अरे ये साहब के कटवा तो यही सोफा पे पड़ा है, एक और रख दे थी है। ठीक है,
3: रामू, रामू
4: कहाँ मर गया, जल्दी आ, साहब की ऑफिस का टाइम हो गया है।
2: अरे आया मलकिन, हरदम हड़बड़िया में आवाज देवा थी, अभी फोटो का कहाँ रखी? हाँ यही कोट के जेब में टांग गई थी, थोड़ी देर में जब बाजार जाओ तो ले जाओ। ठीक है।
4: हे भगवान, 10 बजने को आए और ये सुनील अभी बाहर ही खड़े रवि से न जाने क्या बात कर रहे हैं। ओ ये भी ना, ये देखो कोट तो इनका यहीं पड़ा है, इनकी आदत कभी नहीं सुधरेगी, कपड़े जहाँ हैं वहीं पड़े रहते हैं। अरे ये कोट की जेब में फोटो, ओह आप समझी, तो इसीलिए रोज ओवर टाइम होता है। अरे चुड़ैल, शर्म नहीं आती दूसरों का घर चढ़ते हुए? आने दो आज इनको, बताती हूँ, बड़ा टाई वाई लगा कर जा रहे हैं आजकल ऑफिस।
5: ओके रवि, बाय। हाँ हाँ ऑफिस में मिलते हैं।
4: अरे ये तो इधर ही आ रहे हैं, अभी इसे छिपा देती हूँ, देखती हूँ क्या चल रहा है।
5: अरे मेरा कोट कहाँ गया, यही तो था अभी।
4: ये लीजिए आपका कोट।
5: ओह थैंक यू।
4: क्यों क्या हुआ, कुछ खो गया क्या?
5: नहीं तो। अरे अंजू वो फाइल उठाना जरा, आज जीएम साहब के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सुनो आने में देर हो जाएगी।
4: हाँ हाँ देर क्यों नहीं होगी, इतने मशगूल जो रहते हो आजकल ऑफिस के काम में कि घर को तो भूल ही गए हो।
5: अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई।
4: तो फिर कैसा है सुनील, क्या चल रहा है आजकल ऑफिस के बाद?
5: क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं। अरे फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग चल रही है भाई, इसीलिए देर हो जाती है।
4: क्लोजिंग चल रही है या किसी नए चैप्टर की ओपनिंग हो रही है?
5: ओपनिंग, मैं समझा नहीं। अरे तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे खा ही जाओगी मुझे।
4: हाँ हाँ खा ही जाऊंगी तुम्हें, ये कौन कलमुई है जो तुम्हें देखकर इस तरह से मुस्कुरा रही है?
5: अब ये मुझे देखकर मुस्कुरा रही है या तुम्हें, ये कैसे पता चलेगा? पर ये बताओ ये है कौन और तुम्हें फोटो कहाँ से मिली?
4: क्यों क्या हुआ, चेहरे का भाव क्यों बदल गया फोटो देखकर? कौन है ये, किसे जेब में लेकर घूम रहे हो तुम?
5: अब मुझे क्या पता, और ये बताओ ये जेब में कैसे आई?
4: अच्छा अब ये

0: मैं ही बताऊं कि जेब में कैसे आई? मेरे तो कर्म ही फूट गए। अरे क्या कमी थी मुझ में जो तुम्हारा दिल इस पर आ गया?
1: मंजू,
0: अब मैं क्या करूं? कल वो सौतन बन के यहाँ आ जाएगी और मैं घर के बाहर चली जाऊंगी।
1: क्या बके जा रही हो? देखो अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, हम शाम को बात करेंगे इस विषय पर।
0: अरे बात करने को बचा ही क्या है, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
1: ओ अंजू, ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज रोना बंद करो, वरना बेकार का हंगामा हो जाएगा। अरे माता पिताजी दोनों बगल के कमरे में हैं, पता चल जाएगा उन्हें।
0: उन्हें तो पता ही चलना चाहिए, अपने बेटे की करतूत क्या गुल खिला रहे हैं उनके साहबजादे।
1: प्लीज प्लीज शाम तक वेट करो अंजू, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। प्लीज शाम तक।
0: शाम को ही तो डेट पर जाते हैं उसके साथ, और मैं यहाँ रसोई में खाना पकाती रहूं और तुम उधर शाम को थाई फूड का मजा लो।
1: ओफो, अरे ये क्या बके जा रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑफिस की टेंशन कम थी क्या जो तुम भी अब?
0: हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अब टेंशन लगूंगी, ये रिलीफ देने वाली जो आ गई है।
1: तुम्हारा लड़ने का मन है शाम को लड़ लेना, अभी जीएम साहब के साथ एक मीटिंग है, शाम को आऊंगा तो चला लेना अपनी मिसाइल। अभी मुझे जाने दो।
0: ठीक है, जाओ ऑफिस, लौट कर आओ, लौट कर आओ, तब तुम्हारा हिसाब किताब करती हूँ। ये कलूही कैसे बत्तीसी दिखा रही है। चल चल, तुम आराम कर शाम तक इस रामायण में, देखती हूँ अब कैसे ढूंढ पाते हैं सुनील तुझे।

0: मजे सुनती हो? चाय बन गई हो तो ले आओ। अब चाय के साथ अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और है।
1: आपका तो जब मन होता है तभी पढ़ने लगते हैं रामायण। भाई मैं तो नहा धोकर ही पढ़ती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय।
0: लाओ भाई लाओ। चीनी तो नहीं डाली है ना?
1: ना ना आप पीजिए आराम से। अरे रामायण कहाँ रख दी पढ़कर, दिख नहीं रही है। ये यहाँ है और मैं कब से खोज रही हूँ। देखो मैं पाठ करने जा रही हूँ, कुछ चाहिए होगा तो बहू से मांग लेना।
0: ठीक है।
1: अरे ये क्या, रामायण में फोटो? तभी मैं कहूँ बुढ़ऊ का मन आजकल रामायण में इतना क्यों लग रहा है, घंटों पाठ करते रहते हैं। क्यों जी आजकल तो बड़ा मन लग रहा है रामायण में।
0: रिटायरमेंट के बाद तो अब धर्म कर्म ही करना है, इसी में मन लगाना है। मोह माया त्याग कर जब तब ही अब मोक्ष का द्वार खोलेगा।
1: जो कर्म कर रहे हो ना, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में?
0: क्यों, क्या हो गया?
1: अरे जस जस सुरसा तक तो ठीक था, पर ये सुपर्णखा कहाँ से आ गई? ये देखो फोटो, अब यही सब रह गया है बढ़ौती में करने को।
0: क्या पके जा रही हो? कौन है ये?
1: अब मैं क्या जानू, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये कौन है जिसे रामायण में रखकर घंटों निहारते रहते हैं।
0: मुझे क्या पता? और फिर कहां से आई ये फोटो?
1: इतने भोले भी मत बनिए, सारी जिंदगी बिता दे इनके साथ, अब इस उम्र में यही सब देखने को जिंदा हूँ। अरे थोड़ा इंतजार कर लेते, सबर कर लेते मेरे मरने तक, फिर करते ये सब।
0: अरे यार, जिंदगी भर पत्नी व्रत का पालन किया, अब बुढ़ापे में ये लांछन लगा रही हो? देखो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
1: अरे अब गलतफहमी की गुंजाइश ही कहाँ है, साक्षात फोटो बरामद हुई है रामायण से, अब और क्या चाहिए। लो लगाए रहो इसे अपने कलेजे से, मैं चली।
0: कह कही तो गई को भवन में, चलू मनाऊ उसको, नहीं तो मेरा ही वनवास हो जाएगा।
2: अरे कहाँ गई फोटो भाई, कहाँ देखे? ये कोट तो साहेब पहन के चले गए,

0: खोजी। अरे संध्या तक नहीं बदला फोटो ताई बीबी जी हमार खटिया खड़ी कर दी है। यही देखा यहीं पड़ी उसकी मार रही है। चलो देवी हतुक्का पहुंचा आई तुम्हारे ठिकाने और ले आई वो छोटकी पासपोर्ट साइज फोटो।
1: भाभी आज कॉलेज में बड़ा मजा। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? घर का माहौल बहुत भारी भारी नहीं लग रहा है? कोई ट्रेजेडी हो गई है क्या? कोई कुछ बोलता ही नहीं। माँ पिताजी उधर मुंह लटकाए बैठे हैं और भैया भाभी इधर। क्या हुआ भाभी, आप ही कुछ बताइए।
2: अरे जानेका परेशान ना कर, अपने भैया से पूछ आके।
1: अच्छा माँ क्या हुआ, आप ही बताइए ना।
3: अपने पिताजी से पूछ।
1: अरे यार क्या हो गया है, ये कहती है इनसे पूछो, वो कहती है उनसे पूछो, आखिर मैं पूछूं किससे?
4: बताई थी अभी अभी तुहार खबर ली थी। अरे का बताई मालकिन, मालकिन इनके कर्म ऐसे कि बता बते के ला जावे रही है। अब का कही,
5: हुआ क्या?
4: देखो साहब इनके लक्षण तो देखो तनी। अरे इनका खातिर हम करवा तीज सब रखा और ये हैं कि ये कलमुही की फोटो लेके घूम रहे।
1: ये सब क्या है भाई? रामू तुम अभी तक फोटो बदल के क्यों नहीं लाए?
0: अरे अरे बीबी जी, ये फोटो के बदले के चक्कर में हमारा थोबड़ा बदल गया। बता भाई लच्छो का कि ऐसे हमार कौनो लेना देना नहीं ना। अरे बाप रे।
1: अरे ये फोटो गलती से आ गई थी, मैंने रामू से इसे बदलने के लिए कहा था।
6: अरे तो फिर ये मेरे कोट कीजिए में कहां से आई?
7: और फिर रामायण में? अरे भाई ये तो पूरा लंका कांडी हो गया फोटो के चक्कर में। चलो भाई अंत भला तो
8: सब भला।
0: अगर ई भला है तो बुरा क्या है भाई? अरे बाप रे।
9: अभी आप सुन रहे थे अभिलाष नारायण की लिखी झलकी पासपोर्ट साइज फोटो। प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। पिता की भूमिका में थे अभिलाष नारायण, माँ की भूमिका में डॉक्टर अंजलि, लच्छो रेखा श्रीवास्तव, सुनील नवीन चतुर्वेदी, रामू विनय श्रीवास्तव, रेखा की भूमिका में साक्षी पांडे और अंजू की भूमिका निभाई वंदना राठौर ने। प्रस्तुति सहयोग विनय श्रीवास्तव और प्रस्तुति थी मोहम्मद शमीम की।

मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का, अब से थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की।

0: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों

0: अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली

0: और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging

0: athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Iyer, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
0: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Gujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged consumption of traditional summer beverages. Referring to mangoes, a favorite summer fruit, Prime Minister Narendra Modi praised the efforts of farmers, saying Indian mangoes are now reaching global markets from villages across the country. Prime Minister Narendra Modi

0: खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासद के तहत उनके गैर मामूली तआवुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदामात और हुसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वालशेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर टीचर हैं, जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहत उनके तआवुन को भी सराहा।
1: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
0: खेल कूद के मैदान में भारत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरिंदर वीर सिंह और उन्मेष गुजर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पाउंडवंशी संतलत के महर्षि बलार्जुन से मुतल्लिक 6वीं और 7वीं सदी की 3 नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का भी जिक्र किया।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश व जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन तांबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हुसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिले कद्र गहरी मालूमात फराहम होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल

0: की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तिरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणी ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निज़ाम के माबैन मजीद इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल हैं। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के ज़िले पंचकुला में वाक़े रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजामात के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निज़ाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में BJP ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में BJP ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड में जीत हासिल की है। सोलन में BJP ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड हासिल किए हैं। मंडी में BJP ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है, जबकि BJP ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम BJP और कांग्रेस दोनों ने अपनी हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के तीसरे मरहले के तहत नंबर शुमारी का काम शुरू हो गया है। कमीशन ने बताया कि उन सभी अहल वोटरों को जिनके नंबर शुमारी फार्म इंतखाबी रजिस्ट्रेशन दफ्तर को 28 जून को या इससे पहले मौसूल हो गए चुनाव फहरिस्तों के मुसवदे में शामिल किया जाएगा। SIR का मकसद यह है कि कोई अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से न रह जाए और कोई नाअहल शख्स चुनाव फहरिस्त में शामिल न रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर निज बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज अगरतला में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब रेड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वानिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोग देने और माली तौर पर खुद के फालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम।

किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर R.N. रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है क्योंकि रियासत में साबिका TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हस्सा जिले मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन नेक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। यह राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया।

0: expert in oncology supportive care.
1: प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियां, उपचार, भ्रांतियां और समाधान विषय पर सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी से अभिनव प्रज्ञ पांडे की ये विशेष भेंटवार्ता। आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। विशेष इसलिए क्योंकि साल दर साल पिछले कई सालों से हम लगातार 31 मई को ये कार्यक्रम करते हैं और कमोबेश पिछले कई सालों से हमारे साथ जो अतिथि होती हैं इस बार भी वही हैं। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, और चूंकि वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी चिकित्सक हैं प्रयागराज की, कैंसर की। लेकिन हमें खुशी होगी कि इस 31 मई को ये जो हम तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, कोई एक रोज़ ऐसा आएगा जिस दिन हमको ये मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत तसल्ली होगी कि जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे उनमें कमी आएगी और एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो।
3: हाँ सर नमस्ते।
2: जी नाम बताएं
3: सर। मैं विशाल बोल रहा हूँ, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से।
2: हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सोनिया तिवारी हैं जो कि प्रयागराज की प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। आप अपना सवाल डॉक्टर सोनिया तिवारी से पूछ सकते हैं।
4: बताइए।
3: मैम एक्चुअली हमारे दोस्तों ने हमको लत पकड़ा ही दी, फिर हमें लगता है कि इस तरीके से कैसे छुटकारा पाए।
4: कितना सिगरेट पीते हैं आप एक दिन में?
3: मैम एक दिन में 2 से 3 होता है बस।
4: लोगों को लगता है कि 1 या 2 सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता है, कि वो तो ऐसे ही, तो धीरे धीरे ये 1 या 2 करके ही लोग एक एक डब्बा, दो दो डब्बा पैकेट पीने लग जाते हैं। तो आगे चल के आपके साथ भी यही हो सकता है। तो अभी तो आप 1 या 2 पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लग जाएगी कि कम से कम आप 10 पीने लग जाएंगे, 20 पीने लग जाएंगे। तो ये दोस्तों के साथ ही होता है। तो जो दोस्त आपके सबसे पहले तो स्मोकिंग करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए, या जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं कि हाँ मुझे स्मोक कर लेना चाहिए, जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं लोग, अपना काम कर रहे हैं, होता है ना कि ट्रिगर हो जाता है कि हाँ देखते हैं दूसरे को करते हुए, स्मोक करते हुए तो मैं भी कर लूं, है ना। तो जो फैक्टर ऐसे हैं आपके कि जो ट्रिगर करते हैं आपको, उससे अपने आप को बचा के रखें। दूसरा, इच्छा शक्ति मजबूत रखें, बिना उसके आप उसको नहीं छोड़ सकते कि मुझे स्मोक नहीं करना है तो बस नहीं करना है। जब आपको ऐसा करने का मन भी करे तो दूसरी चीजों में मन लगाएं, जैसे आप स्मोकिंग की जगह कुछ फ्रूट्स खा लें, गहरी गहरी सांस लें, प्राणायाम करें, कुछ एक्सरसाइज करें, दौड़ें, भागें, अच्छा म्यूजिक सुनें, योगा करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको इन सब को छोड़ने में मदद करेंगी। क्योंकि अभी आपको बहुत दिन नहीं हुए हैं तो आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं। एक तो उससे इतनी सारी बीमारियां होंगी, मुंह के बीमारियां होंगी, कैंसर सबसे ज़्यादा आजकल है, 30% कैंसर टोबैको की वजह से होते हैं, जिसमें मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें फेफड़े का कैंसर, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर सबसे कॉमन है। तो वो एक दिन में नहीं होता है, जब स्मोकिंग कॉन्टीन्यूअसली 8 साल 10 साल आप करेंगे तब ये बीमारी हो सकती है। तो इसको छुटकारा पाने का यही तरीका है। दूसरा, अगर फिर भी दिक्कत होती है तो जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर आप जाइए, डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको बताएंगे। तो कुछ जो है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज होती हैं, उससे आपको इसको छोड़ने में मदद मिल सकती है।
2: तो विशाल, सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा,
4: टोबैको को ना कहना है और अपनी हेल्थ को हाँ कहना है। तो ये अवेयरनेस यंगस्टर ही दूसरों को बता सकते हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है।
2: और आपकी जिम्मेदारी केवल आपके प्रति नहीं है, पूरे समाज के प्रति है विशाल, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, जो हमने भूमिका बनाई उसमें हमने ये कहा कि बहुत खुशी होगी हमें कि हमको इस दिन विशेष के ऊपर ये कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम करने की जरूरत ही ना पड़े। इस बार का जो 31 मई का तंबाकू निषेध दिवस है, इसकी थीम ही ये है कि हम अपने से शुरू करें। अपने से शुरू करें, फिर परिवार तक जाएं, फिर समाज तक जाएं, क्योंकि ये जो धूम्रपान है उससे केवल हम ही प्रभावित नहीं होते, हमारा परिवार, हमारा समाज भी प्रभावित होता है। औपचारिक शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज की प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी हैं, जो कि कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं हूं अभिनव प्रज्ञ पांडे, और आज हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर और तंबाकू निषेध के ऊपर, जो कि तंबाकू द्वारा दिया गया घृणितम उपहार है उनके लिए जिनको इसकी लत है। लत और आदत में एक छोटा सा फर्क ये होता है।

0: कि आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं, लेकिन लतें सिर्फ खराब ही होती हैं। हम ये अपील करेंगे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से और आगे जो हम आपको बताएंगे कि ये कितना भयावह हो सकता है। डॉक्टर सोनिया तिवारी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: आपको क्या लगता है, केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी जागरूकता के बाद भी, सबको पता है तंबाकू से
1: जी
0: कैंसर होता है,
1: जी
0: सबको पता है तंबाकू के कितने नुकसान होते हैं, सबको पता है कि तंबाकू एक दिन उनको मौत तक ले जा सकती है, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, इसके क्या
1: क्या
0: कारण
1: कारण
0: है? अब इस पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है।
1: जी।
0: हमें संक्षेप में बताएं हम क्या कर सकते हैं।
1: तंबाकू दिवस जैसे कि बताया कि 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो इस बार की जो थीम है, पहले उसको समझ लेते हैं कि इस बार की थीम जो है अनमास्किंग द
0: डॉक्टर साहब, एक
1: अपील।
0: एक एक कॉलर हमारे साथ
1: यस
0: लाइन पर
1: यस
0: है।
1: यस
0: हेलो
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
2: डॉक्टर कहकशा अहसान।
0: जी डॉक्टर कहकशा, बताएं।
2: मैं डॉक्टर साहब से ये बात करना चाह रही थी कि जो तंबाकू के सेवन से जो नुकसानात हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो बताएं।
1: तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में सबसे तो पहले हानिकारक है, और शरीर के हर अंग को इससे नुकसान पहुंचता है, हर सेल पे असर करता है। क्योंकि जब हम तंबाकू का सेवन चाहे स्मोकिंग की फॉर्म में करें या नॉन स्मोकिंग फॉर्म, जो कि गुटखा और पान के साथ में जो लोग खाते हैं, तो जो उसका जूस है और जो उसके कण हैं, वो हर सेलुलर लेवल पे ब्लड के साथ पहुंच जाते हैं, तो हर सेल को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले मुंह पे असर करता है, वो मुंह में ही दांतों की बीमारियां होती हैं, मुंह के कैंसर हो सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट छाले हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा एक अजीब सी स्मेल आती है जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं। लोग उनके पास ज़्यादातर नहीं बैठना चाहते हैं, दूर ही रहना चाहते हैं
2: मैंने देखा है कि वो लोग खाते हैं, उनका मुंह पूरा खुलता नहीं है।
1: यस, यही मैं बताने जा रही हूँ कि जो लोग तंबाकू का सेवन लंबे समय से लगातार करते हैं, तो जो मुंह की जो अंदर की म्यूकोसा है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, तो उसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें मुंह खुलना कम हो जाता है, तो आगे चल के उसमें कैंसर पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मुंह में सफ़ेद रंग के धब्बे भी हो जाते हैं, या लाल रंग के धब्बे, जिसे ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, जो कि प्री कैंसरस अवस्था होती है, तो उसमें भी आगे चल के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा गले के कैंसर, खाने की नली के कैंसर जिसको कि ईसोफेगस कहते हैं, और पेट के कैंसर, वो भी तंबाकू की वजह से। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन लंग कैंसर है, फेफड़े का कैंसर, तो उसमें भी जो लोग बहुत शुरुआत से, जैसे 15 साल की उम्र, 20 साल की उम्र से लगातार स्मोकिंग सालों साल करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें कैंसर पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे भी सांस की कई तरह की बीमारियां ऐसे लोगों को होती हैं, जिसमें कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लगातार खांसी आती है, चलने फिरने में कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ब्लड में, जो लोग तंबाकू लेते हैं, वो कम हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। और निकोटीन के अलावा ऐसे कम से कम 7,000 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं तंबाकू में, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो है, जो महिलाओं में है उसमें जो है, और मेल्स में भी प्रजनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को वो नुकसान पहुंचाता है, जिससे आगे चल के सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी हो जाती हैं।
0: थैंक यू डॉक्टर कहकशा,
1: थैंक यू
0: आकाशवाणी
1: सो
0: से
1: मच।
0: जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसी
1: हाँ
0: क्या
1: जी
0: कमी रह गई हम सबके प्रयासों में कि उस तरह की एक जो बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत थी वो
1: यस,
0: हम पैदा नहीं
1: तो
0: कर पाए।
1: इतनी सारी अवेयरनेस के बावजूद जानते भी हैं कि तंबाकू नुकसान ही करता है, किसी भी तरीके से वो शरीर को फायदा
0: बिल्कुल
1: नहीं पहुंचाता। जैसे कि मैं कह रही थी कि इस बार की जो थीम है वो इसी पे है कि अनमास्किंग द अपील एंड काउंटरिंग द निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। इसका मतलब ये है कि अपील का पर्दाफाश और निकोटीन और टोबैको की लत का मुकाबला डटकर करना।
0: डॉक्टर साहब, पिछले कई सालों में आपने हर बार लक्षणों
1: जी
0: के बारे में बहुत बता दिया है, सबको पता
1: जी
0: है कि क्या
1: जी
0: लक्षण हो सकते
1: जी
0: हैं, कारण के बारे में सबको पता है कि
1: जी
0: किस कारण से कैंसर जैसी बीमारी होती है, तंबाकू सबसे
1: हाँ
0: बड़ा
1: जी
0: कारण है।
1: हाँ
0: आज हम अपने कार्यक्रम में जो केंद्रीय भाव हम रखेंगे वो हम रखेंगे उपचार और भ्रांतियां और
1: जी
0: समाधान।
1: जी
0: ये एक भ्रांति है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक वो तंबाकू का प्रयोग नहीं करते हैं या सिगरेट नहीं पीते हैं तो उनको
1: हाँ
0: मोशन खुलकर नहीं होता,
1: यस,
0: तो ये भ्रांति है या
1: ये
0: कुछ?
1: भी एक आदत है और भ्रांति है, क्योंकि लोगों को इस चीज की, इंसान को आदत पड़ जाती है कि जब तक मैं स्मोक नहीं करूंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा, तब तक फ्रेश नहीं हो सकता मैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये एक आदत है, क्योंकि इस तरह का उनका साइकिल बन चुका है। लेकिन जब वो इस बात को समझ लेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो शुरू में कुछ दिन इसको अपनाने में दिक्कत होती है, लेकिन उसकी जगह आप जो है सुबह को

0: उठ के जैसे पानी पीजिए, मोशन की जो दिक्कत होती है, जैसे जैसे इस लत को छोड़ेंगे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये आदत की वजह से और कुछ भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे, फिर से एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो।
2: हेलो,
1: अपना नाम बताएं।
2: कुलदीप पाल नाम है जी।
1: कुलदीप जी कहाँ से बोल रहे हैं?
2: कौशाम्बी से।
1: हमारे सामने डॉक्टर सोनिया तिवारी बैठी हुई हैं, आप उनसे अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं।
0: हाँ बताइए।
2: पिताजी तमाशो का सेवन करते हैं तो छोड़ना चाह रहे हैं तो, लेकिन वो जैसे छोड़ते हैं तो उसके बाद दांत दर्द करने लगता है।
0: उनकी क्या उम्र है अभी?
2: उम्र तो अभी 50+ है।
0: तंबाकू किस रूप में लेते हैं वो, जैसे पान के साथ खाते हैं या सुपारी के साथ, कैसे खाते हैं?
2: केवल तंबाकू खाते हैं, चूने के साथ रगड़ के।
0: हाँ, तो वो उनको आदत पड़ चुकी है, अब ऐसे एक दिन में तो ये लत नहीं छूटेगी, क्योंकि अगर तंबाकू लगातार इस तरीके से खाते रहेंगे तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले तो कैंसर की ही बात आ जाती है, तंबाकू की वजह से मुंह के कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं। आप ही उनको थोड़ा एनकरेज करिए, तो इसके बारे में थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। तो उसके लिए आप उनको थोड़ा सा समझाइए कि तंबाकू से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए, अगर एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे तो इसमें छोड़ने में कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है, संकल्प लेना है कि बस मुझे छोड़ना है तो अब छोड़ना है। उसकी जगह उनको बताइए कि वो दूसरी चीजें खाएं, जैसे कि तंबाकू की जगह इलायची खाएं, लौंग खाएं, थोड़ा बिजी रहें अपने काम में, तो इस तरीके से वो तंबाकू की लत को छोड़ सकते हैं। और दांत में दर्द जो है वो तंबाकू ना खाने की वजह से नहीं है, दांत खराब हो जाते हैं तंबाकू जो लोग खाते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कैविटी बन जाती है, तो वो उनको ऐसा लगता है। तंबाकू छोड़ेंगे तो दांत इवन ठीक हो जाएंगे उनके, और दांत के डॉक्टर को दिखाइए एक बार, अगर दांत खराब है तो उसको निकलवाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उपचारों से बहुत लोग डरते हैं, अव्वल तो हमको वो बीमारी हो ही ना, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश वो इतना अधिक प्रयोग कर ले कि वो कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ जाए, तो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या ये बात सच है कि आम जनमानस में डर है कि एक बार डॉक्टर का कोई छुरा या कुछ उसमें लग गया, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं आम भाषा में, तो वो और तेजी से फैलता है, क्या ऐसा है?
0: कैंसर का तो स्वभाव ही है कि अगर किसी को ये बीमारी है तो कैंसर बिना हाथ लगाए भी फैलेगा। अगर किसी को मुंह में घाव है और वो भर नहीं रहा है, तो जब तक हम उसकी जांच नहीं करेंगे, जिसको कि बायोप्सी कहते हैं, तब तक हमें ये नहीं पता चल सकता कि वो कैंसर है कि नहीं, और अगर हमें लग भी जाए तो उसका इलाज ठीक नहीं हो सकता। तो सही इलाज करने के लिए पहले बीमारी को जानना पड़ेगा, कैंसर में ये बहुत जरूरी है। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, 90% से ज्यादा संभावना होती है कि कैंसर ठीक हो जाता है अगर अर्ली स्टेज में, मतलब स्टेज 1 और 2। लेकिन अगर स्टेज बढ़ जाती है तो संभावना कम हो जाती है, 50-60% हो जाती है। अगर और बढ़ जाए, दूसरे ऑर्गन में फैल जाए, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, तो फिर ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। हाँ, लाइफ उसकी बढ़ सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम अच्छा कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा, लेकिन पूरी तरीके से ठीक होना मुश्किल हो जाता है।
1: बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गुटखा खाते तो हैं, लेकिन हम दिन में 2 से 3 बार ब्रश कर लेते हैं, दांत साफ कर लेते हैं, तो उसका उतना खतरा उनको नहीं महसूस होता?
0: नहीं, ऐसा नहीं है। दांत तो आपने साफ कर लिए, लेकिन जो उसके केमिकल्स अंदर चले गए हैं, तंबाकू जो निकोटीन अंदर जा रहा है और उसके साथ में जो और भी हानिकारक प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके शरीर में लगातार जा रहे हैं, वो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैल रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही शरीर पर।
1: ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही धूम्रपान अधिक करते हैं या तंबाकू का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी महिलाएं भी करती हैं। अगर वो ऐसा करती हैं और अगर संभवतः वो गर्भावस्था में हैं या कुछ उस प्रकार के दौर से गुजर रही हैं, तो क्या ये उनके और उनके होने वाले बच्चे की सेहत पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है?
0: जी, अगर वो स्मोक कर रही है तो स्पेशली यंगस्टर को ये ध्यान देने की जरूरत है, जो यंग फीमेल्स है, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर वो धूम्रपान कर रही है तो उनकी सेहत के साथ बच्चे की सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है, जिससे कि उसमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मतलब जिस वक्त वो प्रेगनेंट स्टेट में है, उसी टाइम पे जब बच्चों के ऑर्गन बनते हैं, तो कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, उसके ब्रेन पे प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है, या प्री टर्म यानी कि समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, जिसकी वजह से उसको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं उस बच्चे को, तो महिलाओं में और ज्यादा हानिकारक है। इसके अलावा जो महिलाएं नहीं भी करती हैं, उनके हस्बैंड घर में अगर वो स्मोक कर रहे हैं तो वो धुआं वो महिला भी ले रही है, तो वो भी उसको उतना ही हानिकारक है जितना कि

0: वो पुरुष स्वयं स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको पैसिव स्मोकिंग कहते
1: मुझे
0: हैं।
1: याद है आपने पिछली बार भी कहा था कि पैसिव
0: जी
1: स्मोकिंग के
0: जी
1: अलावा भी एक खतरा और भी होता है कि वो धुआं हमारे आसपास
0: यस
1: कई
0: यस
1: घंटों तक रह
0: हाँ जी
1: जाता है,
0: हाँ
1: जम
0: जी।
1: जाता है,
0: तो
1: इसके बारे
0: ऐसा
1: में।
0: नहीं है कि उसी टाइम पे आपको वो नुकसान हो रहा है, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं धुएं के, वो दीवारों पे, आसपास जो भी सतह हैं उस पे चिपक जाते हैं और कई दिनों तक बने रहते हैं। तो धीरे धीरे अगर वहाँ पे कोई स्मोक लगातार कर भी नहीं रहा है, तो वो भी आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे जाते रहेंगे, तो उसको थर्ड हैंड स्मोकिंग कहते हैं।
1: खर्च लगभग कितना आता होगा कैंसर के इलाज में? पान,
0: हाँ
1: गुटखा और
0: जी
1: सिगरेट तो
0: हाँ जी
1: 20-25 रुपए में मिल
0: हाँ
1: जाता
0: जी।
1: है।
0: इसीलिए कि लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही कम पैसे पे उपलब्ध हैं, तो बहुत आसानी से एक आम आदमी उसको खरीद लेता है 1 रुपए में 2 रुपए में। लेकिन जब वो लगातार इसको खाता है, तो जिस तरह की बीमारियां हैं उसमें जान को इतना खतरा होता है कि जान ही बचना मुश्किल हो जाती है। एक तो ये सारी बीमारियां लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ज्यादातर लेट स्टेज में ही हमारे पास आते हैं। मुंह के कैंसर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। फिर इलाज के लिए उसमें पैसा लगता है, तो जो लोग गरीब हैं तुरंत इलाज उनके लिए संभव नहीं हो पाता है।
1: सरकार की
0: वैसे
1: तरफ
0: तो
1: से
0: सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, जिसमें एक आयुष्मान योजना है प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो चलाई गई है, उसके अलावा सीएम फंड, पीएम फंड से भी पैसा आता है। बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो कैंसर रोगियों को सपोर्ट करते हैं। तो जरूरत है कि इलाज कराने की और सही समय पर हॉस्पिटल में आने की और डॉक्टर की सलाह को मान के इलाज करें।
1: डॉक्टर साहब, फिर से एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो
2: हेलो,
1: जी, अपना नाम बताएं।
2: मैं रामचंद्र माखीजा कापिर भाई बोल रहा हूँ सर, बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से। मेरा ये प्रश्न था डॉक्टर सोनिया तिवारी जी से, तंबाकू खाने से पाचन तंत्र प्रक्रिया में कोई प्रभाव होता है, और मस्तिष्क में क्या असर होता है तंबाकू खाने से?
0: तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में किया जाए, जैसे खाने
2: जी
0: के रूप में जो लोग खैनी, गुटखा, जिसमें भी तंबाकू है, या फिर धूम्रपान यानी कि सिगरेट, बीड़ी के रूप में किसी भी रूप में किया जाए, वो शरीर पे हानिकारक ही असर डालता है। और शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो उससे प्रभावित ना हो, हर अंग प्रभावित होता है। तो पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, जो लोग पान तंबाकू खाते हैं उनकी भूख कम हो जाती है, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ। वो पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे लेकिन तंबाकू खा के पूरा दिन रह लेते हैं। जैसे गैस्ट्राइटिस हो गई, जो कि गैस की बीमारी होती है, या फिर जो पित्ताशय पे असर पड़ता है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, तो गैस्ट्राइटिस ज्यादा होती है ऐसे लोगों को। और तंबाकू की वजह से मस्तिष्क पे भी असर पड़ता है। तो कई बार लोग तंबाकू का उपयोग इसलिए करते हैं कि जो हमारी चिंता है, तनावग्रस्त हैं, तो
2: जी
0: वो जो तंबाकू की वजह से जो उसमें जो निकोटीन होता है, उससे थोड़ी देर के लिए हमें ये एहसास होता है, या उसको व्यक्ति को अच्छा लगता है कि जिससे कि मेरी जो स्ट्रेस है वो कम हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। तो मस्तिष्क पे भी प्रभाव डालता है। मस्तिष्क पे प्रभाव इस तरीके से भी पड़ता है, और जो खून की नलियां होती हैं, जैसे हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है, या फिर मस्तिष्क की जो ब्लड सप्लाई होती है, वो संक्रिय हो जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि स्ट्रोक हो गया, सेरिब्रोवास्कुलर अटैक कहते हैं उसको, जिसमें आधा अंग पैरालाइज हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां आगे चल के हो सकती हैं। डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट की बीमारियां और दिमागी बीमारियां, कई तरह की बीमारियां धूम्रपान से और तंबाकू से होती हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि उससे दूर रहें, और जो दूसरे तरीके हैं स्वस्थ रहने के उसको अपनाएं। और उसके अलावा कैंसर की बीमारी का तो खतरा होता ही है। पाचन तंत्र पे जब असर पड़ेगा और धूम्रपान से और तंबाकू से, तो पेट के कैंसर, गले के कैंसर और खाने की नली के कैंसर ज्यादातर तंबाकू की वजह से और धूम्रपान की वजह से
1: जी
0: होते हैं।
1: रामचंद्र जी, और भी कुछ पूछना है आपको?
2: और थोड़ा वही पूछना था सीओपीडी के बारे में, क्या है ये?
0: सीओपीडी जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस उसको बोलते हैं। जो लोग लंबे समय से धूम्रपान करते हैं, तो उसको सांस की बीमारी हो जाती है। बहुत लंबे समय से जो तंबाकू का उपयोग करते हैं, स्पेशली जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको लगातार खांसी आती रहती है। और जब बहुत दिनों से वो करते रहते हैं, जिनको कई साल हो जाते हैं, तो फेफड़े की जो फैलने की क्षमता है वो कम हो जाती है, उनको तरह तरह के इन्फेक्शन लगते हैं। तो ये जो सांस की बीमारी, उसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं और सीओपीडी कहते हैं। तो उसमें व्यक्ति खांसता रहता है, सांस में दिक्कत होती है, थोड़ी दूर चलने पे सांस फूलने लगता है, और इसमें ज्यादा दवाइयां भी फिर काम नहीं करती हैं, क्योंकि फेफड़े की जो फैलने की शक्ति है, जो अंदर ऑक्सीजन जाती है, वो बहुत कम हो जाती है। तो यही सीओपीडी है।
2: जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी हमें कॉल करने के लिए। आप आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। डॉक्टर साहब,

0: युवाओं
1: जी
0: के मामले में ये बहुत ज्यादा है, ये जो लत है सिगरेट की हो चाहे टोबैको
1: यस
0: की हो।
1: यस
0: कई बार उनको ये कहते सुना गया है कि उनका जो फला पसंदीदा एक्टर है या
1: यस
0: कोई ऐसा रोल
1: यस
0: मॉडल मानते हैं
1: यस
0: वो प्रयोग करता है, और इस बाजारवाद के दौर में जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, जो
1: यस
0: टैक्टिक्स है, वो भी बदली है।
1: हाँ,
0: अब अलग रूप में उसको दिखाया
1: उसको
0: जाता
1: दिखाया
0: है,
1: जाता
0: वो
1: है।
0: इलायची है।
1: हाँ जी,
0: आप इस पर क्या कहेंगे?
1: ये ही टोबैको इंडस्ट्रीज की डिफरेंट टैक्टिक्स हैं लुभाने के लिए लोगों को। और उसमें भी जब ये सारी चीजों को एडवर्टाइज जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे वो करते हैं, तो उसका यंगस्टर पे और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि जो हीरो है वो स्मोकिंग कर रहा है और बड़ा कूल अपने आप को दिखाता है, तो इसका यंगस्टर पे प्रभाव पड़ता है कि जैसे वो स्मार्ट दिख रहे हैं, वो इतना फैशन के चलते ये कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें। और लेकिन वो रियल लाइफ में और रील लाइफ में फर्क होता है, तो इस चीज को समझना होगा कि वो वहां पे एक्टिंग कर रहे हैं, और
0: जी
1: अगर आप इसको असलियत में करेंगे तो वो कितना नुकसान पहुंचाएगा।
0: बिल्कुल
1: इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज हैं जो पान मसाले की एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसको कि इसमें बहुत कम मात्रा में होता है ये बताया जाता है टोबैको इंडस्ट्री द्वारा, तो ऐसा नहीं है। तम्बाकू की मात्रा कितनी भी कम हो वो भी शरीर के लिए हानिकारक है, तो इस चीज को जो पब्लिक है उसको समझना होगा, उसके बारे में अवेयर होना होगा। दूसरी जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं जिसमें ये सब चीजें एडवर्टाइजिंग की जाती हैं, उसको वहां ना लगाएं, ये सब रुकनी चाहिए। आसपास जो स्कूल कॉलेज हैं उसके आसपास के एरिया में कम से कम 1 किलोमीटर तक ये सब चीजें उपलब्ध नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा कॉलेज स्कूल में जाके टीचर्स को इसके बारे में अवेयर करें, जिससे वो स्कूल्स में बच्चों को लगातार ये सारी चीजों के बारे में जानकारी दें। इसके अलावा जो घर में पेरेंट्स इन चीजों को यूज करते हैं, जैसे जिनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको भी बच्चे देखते हैं, तो वो भी इस चीज को समझें जिससे बच्चे इस लत में ना पड़ पाए। आपने देखा होगा शादी में और डिफरेंट पार्टीज में आजकल एल्कोहल का, स्मोकिंग का, टोबैको का चलन होता है, जिसको कि एक सोशल कस्टम माना जाता है कि उसको उसमें रखना ही है। तो ये सारी चीजें भी जो सोसाइटी में है एक कस्टम के तौर पे, वो भी बंद होना चाहिए, तो
0: बिल्कुल
1: जिससे लोगों को इस चीज से दूर रहने में मदद मिल सके।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहले तो अव्वल हम कोशिश करें कि हम उसका प्रयोग ही ना करें।
1: जी
0: अगर प्रयोग कर रहे हैं तो कैसे भी करके इच्छा शक्ति से उसको खत्म करें, धीरे धीरे करके। अगर खत्म नहीं कर पा रहे हैं, दुर्भाग्यवश हम चपेट में आ गए, उसके बाद का
1: बाद
0: जो जीवन होता है वो व्यक्ति तो खुद अपनी बीमारी से परेशान रहता ही रहता
1: जी
0: है। आपने इतने सारे केसेस में देखा होगा कि आदमी बीमारी से कम परेशान होता है उसके आसपास के दोस्तों का, परिवार वालों का जो रवैया होता है। अगर
1: सही
0: मुंह
1: कह
0: का
1: रहे,
0: कैंसर हो गया तो
1: हाँ
0: अजीब सा डरावना सा मुंह हो जाता है,
1: हाँ
0: उससे आदमी कहीं अधिक दुखी, मतलब बहुत पेनफुल महसूस करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी, एक रवैया क्या होना चाहिए अगर उसको ठीक करना है तो?
1: अगर किसी को ये बीमारी हो गई है दुर्भाग्यवश, तो सबसे पहले परिवार के सदस्यों का कोऑपरेटिव होना बहुत जरूरी है कि वो उसको हॉस्पिटल लेके जाएं और उसका सही इलाज कराएं। इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं समाज में, उनकी भी ये जिम्मेदारी पड़ती है कि उस फैमिली को सपोर्ट करें, कि
0: जी
1: कैंसर के रोगी को वैसे ही काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है, साइकोलॉजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके
0: जी
1: साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, आर्थिक रूप से भी लोग टूट जाते हैं और मानसिक रूप से भी, तो उसको सपोर्ट करें कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे अगर आप इलाज करेंगे, कुछ भी आप ना कर सकते हो तो कम से कम उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, उसकी बात को, उसकी जो तकलीफ है उसको
0: बिल्कुल
1: एक मॉरल
0: बिल्कुल
1: सपोर्ट दें कि नहीं आप धीरे धीरे इलाज करके ठीक हो
0: ठीक हो
1: जाते हैं।
0: जाएंगे।
1: तो इस तरीके से समाज की भी ये जिम्मेदारी पड़ती है, और दूसरे लोगों को भी अवेयर करें कि जिस तरीके से इसको बीमारी इस वजह से हो गई है, नशे की लत की वजह से हो गई है या तंबाकू से हो गई है, तो दूसरे लोग कम से कम उसको ना प्रयोग में करें। इवन अगर व्यक्ति कैंसर से जब ठीक हो जाता है तो उसको भी समाज में आके दूसरों के लिए एक प्रेरणा के रूप में वो सामने आए
0: जी
1: कि जिस तरीके से इस खतरनाक बीमारी से वो ठीक हो गया इलाज के द्वारा, और वो भी एक संदेश दे सकता है कि आप इन सारी चीजों से दूर रहें, तंबाकू की लत से दूर रहें, जैसे उसने इतनी तकलीफों का सामना किया
0: जी
1: दूसरों को ना करना पड़े।
0: डॉक्टर साहब, निकट भविष्य में कैंसर के टीके या वैक्सीनेशन का कुछ उम्मीद है, कुछ चांसेस हैं, इस पर कुछ काम चल रहा
1: अभी
0: है?
1: तक तो ऐसा नहीं है कि सारे कैंसर के लिए कोई वैक्सीन आ गई है, ऐसा नहीं है। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कैंसर से बचने का, कि जानकारी, अवेयरनेस और अपने शरीर का ध्यान रखना, समय समय पे अपनी जांच कराना, और अगर शरीर में कोई भी बदलाव है उसको तुरंत जाके अगर आप नोटिस करते हैं कोई अपने शरीर में कोई बदलाव है, कोई भी एबनॉर्मल लक्षण है, तो एक बार जाके डॉक्टर को दिखाएं, नशे की आदतों से दूर रहें, तम

0: तंबाकू से अल्कोहल से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, खान पान का ध्यान रखें, खान पान से मतलब है फल सब्जी अपने खाने में शामिल करें, पानी ज्यादा पिए, स्ट्रेस ज्यादा ना लें और जो है खुश रहें। तो ये ही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके साथ साथ दूसरों का, अपने परिवार का, अपने समाज का भी ध्यान रखें, क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। सबसे अधिक युवा भारत में रहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि भारत जैसे देश को युवा दिखना भी चाहिए,
0: कम बीमारियां हो। इवन युवाओं का ही ये फर्ज बनता है, जिन लोगों का अब उम्र ज्यादा है या जो लोग इसकी ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, उनको अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दूसरों को संदेश दें यंगस्टर की वो इन सारी चीजों से दूर रहे, क्योंकि उन्हें ही एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे आना है और आगे चल के उन्हें ही इस देश को, सोसाइटी को संभालना।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं ये थी डॉक्टर सोनिया तिवारी, जो कि प्रयागराज की प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, और सुना आपने कि किस तरह से इन्होंने तंबाकू की भयावहता के बारे में बताया, उससे होने वाले रोगों की भयावहता के बारे में बताया। तो कोशिश हम ये करें कि अव्वल तो हम लती बने ही ना, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कोशिश ये करें कि हमको लत ही ना हो। मान लीजिए कहीं से थोड़ी बहुत हो जाती है, तो अपने अंदर इतना आत्मानुशासन, इतनी इच्छा शक्ति पैदा करें कि नहीं, कोई भी लत हमसे बड़ी नहीं हो सकती, जो हम चाहेंगे वो होगा, कोई लत हमको नहीं चला सकती। और जैसा कि कहा भी जाता है कि तंबाकू की जो खुद की फसल है, वो जहां पर बोई जाती है, वो उस मिट्टी को भी एक तरह से बंजर बना जाती है। न सिर्फ मिट्टी को बंजर बनाती है श्रोताओं, वो एक पूरी की पूरी हवा को बंजर बनाती है, एक पूरी नस्ल को बंजर बनाती है और एक पूरे समाज को बंजर बना देती है। कोशिश कीजिए कि तंबाकू से दूर रहिए, खुद तो दूर रहिए ही,
0: प्रण लीजिए बिल्कुल कि हम तंबाकू का प्रयोग नहीं करेंगे, और जो ये तंबाकू की इंडस्ट्री का भ्रम जाल है समाज में, उसमें फंसने से बचें। और अपने युवाओं को भी, यंगस्टर को ये बताएं कि जो ये इतना सुंदर सुंदर आकर्षक लगता है, जो इनकी लुभावनी टेक्निक है, टेक्टिक्स है, उसमें ना फंसे हमारा युवा वर्ग, जिससे कि इस आदत में ना पड़ के अपने जीवन को खराब ना करें।
1: अपना दिमाग लगाएं, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें कि कौन सी चीज आपके फायदे के लिए है, कौन सी चीज आपके और आपके समाज के नुकसान के लिए है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर सोनिया तिवारी को कि वो इस अवसर पर हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं के फोन कॉल्स और हमारे सवालों का जवाब दिया। अगली बार फिर किसी विशेष हस्ती के साथ आपके साथ आपकी सेवा में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: Velocity Cure and Care Pharmaceuticals, expert in oncology supportive care. Velocity Cure and Care Pharmaceuticals, expert in oncology supportive care. Velocity Cure and Care Pharmaceuticals, expert in oncology supportive care. Velocity Cure and Care Pharmaceuticals, expert in oncology supportive care. Velocity Cure and Care Pharmaceuticals, expert in oncology supportive care. Velocity Cure and Care Pharmaceuticals, expert in oncology supportive care.
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थी वेलोसिटी क्योर एंड केयर फार्मास्यूटिकल्स प्रयागराज। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज के इस कार्यक्रम में विषय था तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियां, उपचार, भ्रांतियां और समाधान विषय पर सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी से अभिनव प्रज्ञा पांडे की ये विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी प्रयागराज से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
5: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु यर्रय्य एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु यर्रय्य इज ए रिनाउंड सैक्सोफोन आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री जी वेंकटरमण। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर श्री कल्लूरी मल्लय्य and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadapa. He has

0: has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
1: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
0: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इज एकंपनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। श्री वीएन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
1: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
0: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सुरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वाला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने

0: के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing.